ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। आइए आपको अवगत करा दें आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:02 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें आज आपके साथ रहेंगी नुपुर कुरुक्षेत्र। 7:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 7:02 पर आप जुड़ेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली से। जी हाँ, ये रहेगा आज का कार्यक्रम 7:02 पर। 8:00 हिंदी में मुख्य समाचार प्रसारित किए जाएंगे और 8:02 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे लेटेस्ट हैपनिंग, जो भी आपके हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली के कार्यक्रम। 9:00 आप फिर से हिंदी के समाचारों से जुड़ेंगे। इसी के साथ साथ 9:02 का वक्त रहेगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, इस कार्यक्रम से आप जुड़ेंगे। 10:00 आप अंग्रेजी में समाचारों से जुड़ेंगे।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो से और हम बातचीत कर रहे थे आगे के कार्यक्रमों के बारे में। जी हाँ, तो आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आप सुबह 10 बजे सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। जी हाँ, आप वेस्टर्न म्यूजिक सुन सकेंगे 10:02 पर, और 11 बजे फिर से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद समाचारों के बाद आप कार्यक्रम से जुड़ेंगे बॉलीवुड ट्रेल से। 12 बजे न्यूज़ हेडलाइंस इंग्लिश में होंगी।

आकाशवाणी रेनबो पर हम अवगत करा रहे हैं आगे के कार्यक्रमों के बारे में। दोपहर 12:02 का वक्त रहेगा वेस्टर्न म्यूज़िक का, और इसमें आप वेस्टर्न म्यूज़िक का आनंद ले सकते हैं। दोपहर 1:00 आप जुड़ेंगे हिंदी में समाचारों से, और 1:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग दो सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। भीषण जंगल की आग के कारण फ्रांस और स्पेन में लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और ऋषिकांत सिंह चानबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में तथा राजा मुथुपांटी 65 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। ये थे AIR FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर। आप सुन रहे हैं

गाते गुनगुनाते खुशी के साथ इस सफ़र का आनंद लीजिए। और ये जो सफ़र है, जिस भी सफ़र पे आप निकले हैं और लक्ष्य तक जहाँ भी आपको पहुँचना है, जो भी आपकी मंजिल है, वो सफ़र भी यूँ ही गाते गुनगुनाते मुस्कुराते हुए निकल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ये हैरान परेशान क्यों ही होना है उन बातों पर जो आपको पता है, जिन्हें आप बदल नहीं सकते, है ना। ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते, ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं बदल सकते। तो फिर वो जो क्रोध, जो पीड़ा आपके हृदय में होती है, वो ना लाएं, बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि आप वही नियंत्रित करें जो आप कर सकते हैं। और किसी को तो आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, और किसको कर सकते हैं वो सिर्फ आप हैं। तो इसलिए खुद पर ही कंट्रोल करें, अपने मन को संभालें, उम्मीदों से दूर रहें, खुद से सारी एक्सपेक्टेशंस रखें और बाकी जो है उसे जाने दें और जाने दें। क्योंकि आप अपने लिए क्या सोचते हैं, आप अपने लिए क्या चाहते हैं, ये मायने रखता है। और इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत नहीं, आपका जो संघर्ष है वही आपकी असली पहचान बनाता है। तो इस बारे में बिल्कुल आपसे बात होगी। आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आप सुन रहे हैं सुप्रभात आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्री।

राधा जले ना जले, राधा कैसे ना जले, उसको किसी बात से प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन लेकिन अगर आपके बीच कदम थिरकाते वक्त सांस फूल जाती है तो ज़रूर सोचना चाहिए। राधा के बारे में हम सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, लेकिन अपनी सेहत के बारे में भी सोचिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है और आप थोड़ी सी फुट टैपिंग करते हैं या फिर कुछ मूवमेंट्स करते हैं तो बस आपकी सांस फूलने लग जाती है, तो इस ओर ज़रा अपना ध्यान दें। ज़िंदगी के सफ़र में हम और आप निकल ही गए हैं, सुन रहे हैं सुप्रभात। गानों का साथ बिल्कुल आपके साथ बना हुआ है और साथ ही साथ बात हो रही है कुछ ऐसी जो छू जाती है हमारे और आपके जीवन को। हम सब चाहते हैं कि जीवन में हम वो लक्ष्य हासिल करें, सफलता हासिल करें जो हमने अपने लिए सोचा है, चाहा है। लोग हमें जाने पहचाने, हमारी प्रशंसा करें, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, जिस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपने जो मेहनत की है, उसके लिए आपको सम्मान मिले, उस उपलब्धि को याद रखा जाए, है ना। लेकिन एक सच्चाई जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि महानता सिर्फ सफलता से नहीं बल्कि संघर्ष से पैदा होती है। आज अगर हम किसी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ बस यहीं पर है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि असफलताओं का भी सामना किया होगा। कई बार सपने टूटे भी होंगे और लोगों ने कई बार जज भी किया होगा कि नहीं भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, और भी कई बार है ना हार का स्वाद चखना पड़ा होगा। लेकिन खुद को दूसरों से अलग बनाने वाली बात यही होती है कि अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने देना और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना। जीवन का सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं है बल्कि कोशिश करना छोड़ देना है। जब हम हार मान लेते हैं ना तभी हमारी वास्तविक हार होती है। लेकिन जो व्यक्ति गिरकर भी उठना जानता है वो देर सवेर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसलिए कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और असफलता के दौर आएंगे, मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य को याद करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो कहते हैं ना कि मज़ा केवल मंजिल तक पहुंचने में हो ये ज़रूरी नहीं है ना। अगर सफ़र सुहावना होगा तो मंजिल तक पहुंचने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो आप भी इस सफर का आनंद लेते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ नूपुर कुलश्रेष्ठ और आपकी असली पहचान आपकी जीत नहीं आपका संघर्ष है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और संघर्ष के इस सफ़र में बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम करते हैं और सबसे बड़ी जो बात हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं कि हम कुछ भी करें उससे पहले डर आ जाता है कि हम असफल तो नहीं हो जाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है और कदम तो रखना ही पड़ेगा, है ना, कूदना तो पड़ेगा। अगर सपनों को हकीकत में बदलना है तो फिर जी हाँ, समुद्र में जाकर गोते तो लगाने ही होंगे, बिना पार किए तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात जो हम करते हैं वो ये कि हम दूसरों से अपनी तुलना बहुत करते हैं और इसमें अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम सबकी यात्रा अलग अलग है, कोई तेज़ी से आगे बढ़ता है तो कोई धीरे धीरे, तो ज़रूरी ये है कि आप कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये है कि आप रुक नहीं रहे हैं।

रुक गए तो फिर दिक्कत है। तो आप क्या कर रहे हैं जरा बताइए। कोई भी चुनौती आती है उसको पार करने की बजाय क्या आप रुक जाते हैं, आपके कदम डगमगाने लगते हैं? जरा सोचिए और बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज आया है मेरे पास, मैं सोच रही हूँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ और कर ही देती हूँ। इतना सोचने से अच्छा ये है कि जो भी आपका मन करता है ना उसको आज तो बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि आज मंडे है। कैसा था बताइएगा। आकाशवाणी के रेनबो के सफ़र में नूपुर आपके साथ है।

सफल हैं आप अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ सोच गड़बड़ हो जाए ना, जहाँ विचार गलत हो जाए, तो चीज़ें संभाले नहीं संभलती हैं। आपने कितना भी अपना लक्ष्य अच्छे से केंद्रित आप कर रखा है, लेकिन विचार अगर सही नहीं है तो फिर आप भी डगमगाते हैं। और हर दिन कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप खुद से एक सवाल पूछें और पूछें कि क्या मैं कल से बेहतर हूँ। और अगर इसका उत्तर आपको हाँ में मिलता है तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं, क्योंकि छोटे छोटे सुधार ही बड़े बदलावों की नींव बनते हैं। एक दिन का अनुशासन, एक दिन की मेहनत, एक दिन की सकारात्मक सोच शायद बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन यही आदतें समय के साथ असाधारण परिणाम देती हैं।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

जी हाँ, तो संघर्ष के सफर में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, चुनौतियों का सामना ज़रूर करना है, क्योंकि चुनौतियों संघर्षों से गुजरकर ही हर इंसान मजबूत बनता है। हीरा भी तब तक मूल्यवान नहीं बनता जब तक वो उस पर अधिक दबाव ना पड़े, वो दबाव सहन ना करे, है ना। इसलिए कठिनाइयों से मत घबराइए, वो आपको तोड़ने नहीं बल्कि तराशने आई हैं। जब आप अपने डर से लड़ते हैं, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, तब आप एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण

करते हैं जिसे कोई परिस्थिति नहीं हरा सकती। और मुझे तो बस हमेशा यही पंक्तियाँ याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।

तो जो भी आपने लक्ष्य अपने लिए तय किया है, उस सफर पे, जिस सफर पे आप निकल पड़े हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चुनौतियां आए, संघर्ष आए, रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि हर दिन अपने बेहतर स्वरूप को करीब से

पहचानना है, खुद को पहचानना है, खुद को जानना है और खुद तक ही पहुंचना है। और यही सही मायने में सफलता है, यही आपकी विजय है। और अगर त्यागने के लिए कुछ है ना इस सफर में भी और मंजिल तक पहुंचने के बाद भी, तो वो है सिर्फ अभिमान, और उसको त्याग देंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। जीवन बहुत सुंदर है और जीवन किस पथ पर आप आगे बढ़ते रहें, हम भी बढ़ रहे हैं। आपके साथ कौन कौन जुड़ेंगे इस सफ़र में आकाशवाणी रेनबो के, बिल्कुल आपको बताएंगे। जुड़ रही है हमारे साथ, जी हाँ, सुप्रभात में मैं हूँ आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ।

आकाशवाणी रेनबो पर अभी कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आपके साथ जुड़ेंगी कंचन कानन और उसके दूसरे सेगमेंट में एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने, मैं इसमें भी आपके साथ होंगी कंचन कानन। उसके बाद आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक, माफ़ कीजिए मैचलेस म्यूजिकार, और इसके समय इस प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ेंगे उत्कर्ष बॉलीवुड की खबरों के साथ। आपके साथ जुड़ेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स में आकृति खंडूरी। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक के कार्यक्रम सुनेंगे आप। लेट कूल में एक बार फिर आपका साथ होंगे उत्कर्ष, और उसके बाद आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। और इस कार्यक्रम का आज का विषय रहेगा करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। आकृति खंडूरी होंगी इस कार्यक्रम में भी आपके साथ, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना। सृजन राजपूत होंगे इस कार्यक्रम में आपके साथ। रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम सुनेंगे आप रेशमा फारूखी के साथ 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, और आज का विषय है स्पेशल ऑन हेड एंड नेक कैंसर डे। इसके बाद समय रहेगा अल्फा जैन कार्यक्रम का, और आज का विषय रहेगा बुक्स इन द डिजिटल एज, व्हाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। सृजन राजपूत होंगी इस कार्यक्रम में आपके साथ, और उसके बाद सिटी की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी सिटी लाइट्स में 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रेशमा फारूखी, और उसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स नीरजा चतुर्वेदी के साथ, और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक में आपके साथ जुड़ेंगी मुक्ता। और इसके बाद समय रहेगा म्यूजिक मस्ती का, नीरजा चतुर्वेदी देंगी आपका साथ इस कार्यक्रम में भी। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आप सुनेंगे आपकी याद आती रही, ताहिर हसन होंगे आपके साथ। वेस्टर्न म्यूजिक रेनबो शोकेस प्रोफाइल्स ऑफ पॉपुलर आर्टिस्ट एंड बैंड्स, इसमें आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगी मुक्ता, और उसके बाद आप सुनेंगे रंगे महफिल ताहिर हसन के साथ। अब मैं नुपुर कुलश्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सरकार आज लोकसभा में परीक्षाओं में अनुचित तरीकों के रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी इसके अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में वर्षा जल की हर बूंद के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करेंगी। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने मुंबई और कल्याण में ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। चेन्नई से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्यवाही के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। जंगल की भीषण आग के कारण फ्रांस और स्पेन में लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकलकर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। भारत ने कल हरारे में खेले गए तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, एक प्यारी सी सुबह और हमारा आपका साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ और दिल से जुड़े होंगे एफएम रेनबो पर एक सकारात्मक सोच के साथ, उम्मीद लिए।

हम सब के टीचर, बच्चों के चहेते, विज्ञान की दुनिया का वो सितारा जो हमारे सपनों में अनगिनत रंग भरने की प्रेरणा है, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनके अनमोल विचार सपने देखना, कड़ी मेहनत करना और कभी हार ना मानना सिखाती है। आज FM रेनबो पर हम नमन करते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ

अब्दुल कलाम को। राष्ट्रपति और एक महान वैज्ञानिक, विचारक और आजीवन शिक्षक रहे एपीजे अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने विज्ञान से बच्चों को जुड़ना सिखाया, प्यार करना सिखाया विज्ञान से। दोस्तों, उनके जीवन की अगर हम बात करें तो उनके जीवन की जो राह है ना, वो कठिनाइयों से भरी थी, गरीबी थी, लेकिन विज्ञान से प्यार था, जुनून था तो अपने देश के लिए विज्ञान जगत को बुलंदी पर देखने का, और उनके सपने सच हुए सूरज की तरह तपकर, जब उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल्स का सपना सच कर दिखाया। कलाम साहब ने कहा था कि वो अलग सोच रखने वाले युवाओं का उनके लिए एक संदेश देना चाहते हैं कि जिनमें कुछ खोजने का, घूमने का, नामुमकिन को संभव करने का, समस्याओं को जीतने का दम है, वो इस रास्ते पर अनवरत चलते रहें, अपना चलने का जो प्रयास है वो जारी रखें। देश की महान विभूति को FM रेनबो पर हम शत शत नमन करते हैं।

0: FM Rainbow 102.6।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

जी बिल्कुल, आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल आप सुन रहे हैं दिल से। दोस्तों, हर दिन बहुत बहुत खास होता है क्योंकि इतिहास में दर्ज कई घटनाओं को वो समेटे हुए होता है। और आज है 27 जुलाई, और आज के दिन 1949 में, यानी आज से 73 साल पहले, दुनिया के पहले जेट विमान ने उड़ान भरी थी। और डायबिटीज़ जो है पूरी दुनिया में सबसे जो ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है, लेकिन आज के ही दिन 1921 में टोरंटो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डायबिटीज़ के इलाज के लिए इंसुलिन हार्मोन को अलग करने में सफलता पाई थी। और कोरियन युद्ध की समाप्ति भी आज के ही दिन हुआ था, जब युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। और सबसे अहम फैसला हुआ था 1994 में। आज के ही दिन भारतीय संसद ने गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग परीक्षण कराने पर रोक लगाने से जुड़ा कानून पास किया था। तो देखिए, आज का दिन जो है ना, इतिहास में कई घटनाओं को समेटे हुए है। और हर दिन को हम खास बनाते हैं अपनी सकारात्मक सोच से, अपनी उम्मीद से, अपने हौसले से। तो मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आज है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का स्थापना उसकी स्थापना दिवस है और आज 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1949 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया सीआरपीएफ। सेवा और निष्ठा, ये मोटो है सीआरपीएफ का। देश के कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ पर होती है। सीआरपीएफ की कई इकाइयां हैं, जैसे रैपिड एक्शन फोर्स, कमांडो बटालियन, रिजोल्यूशन एक्शन, वीआईपी सुरक्षा विंग और महिला बटालियन। तो आज सीआरपीएफ जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल बन गया है। आज सीआरपीएफ स्थापना दिवस के अवसर पर कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें कि आप हिस्सा ले सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्लोगन राइटिंग, फिल्म मेकिंग, क्विज, ड्राइंग, निबंध लेखन और भी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ हो रही हैं इस अवसर पर। तो सीआरपीएफ को उनकी सेवा निष्ठा के लिए सलाम करते हैं हम FM रेनबो पर।

बिल्कुल दोस्तों, लक्ष्य हर हाल में पाना है, हौसला रखना है। और दोस्तों याद है ना, बचपन में हमारी माँ एक किरदार से हमें डराया करती थी। क्या कहती थी वो? कहती थी ना कि खाना खा लो वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। आज गब्बर सिंह यानी अमजद खान की पुण्यतिथि है। वो अभिनेता जयंत के बेटे थे। खलनायक के रूप में उन्होंने घर घर में पहचान बनाई। शोले, मुकद्दर का सिकंदर, शतरंज के खिलाड़ी, कुर्बानी, उत्सव, याराना जैसी फिल्म्स में उनकी यादगार भूमिका के लिए हम उन्हें याद रखेंगे।

0: Glasgow.
1: The Commonwealth Games.
2: नमस्कार। खेल सिर्फ पसीने और पदकों का हिसाब नहीं है, खेल कहानी है उस अजेय इच्छा शक्ति की जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026, जहां खिलाड़ी पगडंडियों से निकलकर इतिहास रचने पहुंचे हैं, जहां हर एक सेकेंड, हर एक छलांग और हर एक पंच के पीछे बरसों का त्याग और अनगिनत उम्मीदें जुड़ी हैं। ग्लासगो के एरेना में जब दुनिया भर के 74 देशों के बेहतरीन खिलाड़ी उतरे हैं, तो प्रतिस्पर्धा सिर्फ प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि खुद के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से भी होती है। यहाँ गिरना हार नहीं बल्कि उठकर दोगुनी ताकत से पलटवार करने की सीख है।
3: ग्लासगो की 18 डिग्री सेल्सियस की हड्डियों को सिहरा देने वाली ठंड और इस सर्द मौसम के बीच भी राष्ट्रमंडल खेलों के मैदान पर खिलाड़ियों का पसीना लगातार बह रहा है। इस महासंग्राम में दुनिया भर के खिलाड़ी अपने हुनर और संयम के दम पर बस एक ही लक्ष्य के लिए जी जान लगा रहे हैं, देश के लिए एक अदद मेडल। पदक के लिए मचे इस रोमांचक घमासान के बीच खेलों के चौथे दिन आखिरकार भारत का स्वर्णिम खाता खुल ही गया।
4: Indeed, India's golden journey in the Glasgow Games began with the unflappable Mirabai Chanu comfortably defending her 48 kg title in weightlifting.
3: आइए जानते हैं 22वें Commonwealth Games में चौथे दिन क्या-क्या हुआ। Commonwealth Games 2026 में आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका हर खेल प्रेमी को इंतजार था। भारत के स्वर्णिम अभियान का आगाज उस नाम ने किया जिसने हर बड़े मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया। ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय भारोत्तोलन की सबसे बड़ी स्टार साई खोम मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया।
5: हमारे नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी के ही आंसू है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए।
3: जैसे ही पोडियम पर तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया, वो क्षण हर भारतीय के लिए गौरव से भर उठने वाला बन गया।
4: The legendary Mirabai began her title defense run with a failed attempt at lifting 82 kgs in the snatch before succeeding in lifting the weight. She then went on to set a Commonwealth Games record with a lift of 85 kilos, 10 kgs ahead of her nearest rival's best lift. The rift widened in the clean and jerk section as the Tokyo Olympic silver medalist succeeded in lifting 105 kilos in her second attempt to complete a total lift of 190 kgs and rise to the top of the podium as the tricolor fluttered proudly. She finished 22 kgs ahead of the silver medalist Ruth Nyong of Nigeria.
3: इस स्वर्णिम जीत के साथ साई खोम मीराबाई चानू के प्रदर्शन पर सीनियर खेल पत्रकार राकेश थपलियाल कहते हैं,
6: बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है मीराबाई चानू का और ये लगातार जो तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसकी शुरुआत उन्होंने 2018 में की थी, तब 49 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2022 में 49 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और अब 2026 में 48 किलोग्राम वर्ग में मेडल जीता है। तो मीराबाई चानू की जो कंसिस्टेंसी है वो एक बड़ी गजब की रही है कि लगातार तीन कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतना, ये गोल्ड मेडल की शुरुआत यहाँ पर हो गई है।
3: मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में मेडल के लिए अपनी प्रबल दावेदारी का परिचय भी दे दिया।
5: ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे।
2: सच कहा जाए तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का चौथा दिन वेट लिफ्टर्स के नाम रहा। मीराबाई चानू ने गोल्ड हासिल किया, लेकिन उससे पहले पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में मणिपुर के ऋषिकांता सिंह ने अपनी चुनौती रखी। मणिपुर के स्वेट लिफ्टर ने निराश नहीं किया। कुल 271 किलो वजन उठाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले ऋषिकांता ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का पहला सिल्वर मेडल दिलाया। ऋषिकांता ने तीसरा प्रयास 121 किलो का सफलतापूर्वक हासिल किया और इसके साथ ही स्नैच में अपनी वेट कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इन मलेशिया के अनीक कसदार ने भी अपने तीसरे प्रयास में इतना ही वजन उठाया। फिर बारी आई क्लीन एंड जर्क की, उन्होंने तीसरे प्रयास में 151 किलो भार उठाने की कोशिश की, लेकिन बाजुओं ने फिर साथ नहीं दिया। अनीक अपने तीसरे प्रयास में 152 किलो वजन उठाकर न सिर्फ ऋषिकांता से काफी आगे निकल गए, बल्कि गोल्ड मेडल पर अपना नाम लिखवाने के साथ साथ ओवरऑल 273 किलो वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड भी बनाने में सफल रहे। ऋषिकांता,
0: पहले मैं बहुत खुशी हूँ सभी मिल के, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर एंड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, सभी ने हम स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इंडियन मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
2: भारत को दिन का दूसरा सिल्वर मेडल भी वेटलिफ्टिंग से मिला। ऋषिकांता के बाद मुथुपांडी राजा ने मेंस 65 किलोग्राम कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। राजा और मलेशिया के मोहम्मद अजनिल बिन बिदिन के बीच तगड़ा संघर्ष हुआ। आखिरकार मलेशिया के बिदिन 299 किलो के कुल वजन के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीत गए। राजा को 286 किलो के कुल वजन के साथ सिल्वर मेडल मिला। भारतीय मुक्केबाजों का दम कल दुनिया ने देखा। महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग के राउंड ऑफ 16 में भारत की प्रीति का मालवी की मुक्केबाज देवरा मेटंजे के पास कोई जवाब ही नहीं था। पावरफुल प्रीति ने शुरुआत से ही विरोधी पर ताबड़तोड़ पंच चढ़े। इस तरह भारतीय मुक्केबाज आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गयी।
7: रियली नाइस टू हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम बिकॉज इट डज मैटर फ्रॉम व्हिच कंट्री यू बिलोंग, सो रियली नाइस।
2: पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में भी जादूमणि सिंह के मुक्कों का उनके प्रतिद्वंदी सुमामा रहमान के पास कोई जवाब नहीं था। सटीक आक्रमण और शानदार बचाव के जरिए जादूमणि ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को टिकने का मौका ही नहीं दिया। राउंड ऑफ 16 में जीत के साथ जादूमणि भी जादुई प्रदर्शन करते हुए अंतिम 8 में पहुंच गए। पुरुषों की 65 किलोग्राम वेट कैटेगरी में आदित्य प्रताप यादव को राउंड ऑफ 16 के नजदीकी मुकाबले में उगांडा के बट्टे नुहू से 3-2 से हार मिली।
3: और अब बात लॉन बॉल्स की। भारत की रूपा रानी और पिंकी को दिन में खेले गए महिला पेयर्स के पहले मुकाबले में पहली हार का सामना करना पड़ा। ग्रुप बी के रोमांचक मुकाबले में नामीबिया की जोड़ी ने भारतीय खिलाड़ियों को टाई ब्रेकर में 3-0 से मात दे दी। इस हार के बावजूद भारत की जोड़ी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई थी, लेकिन देर रात हुए दूसरे आखिरी ग्रुप मुकाबले में विमेन्स पेयर्स के सेक्शनल मुकाबले में पिंकी और रूपा की जोड़ी एक सेट से आगे होने के बावजूद टाई ब्रेक में इंग्लैंड से हार कर बाहर हो गई। वहीं पुरुषों के लॉन बॉल्स के मुकाबले में भारत के पुतुल सोनोवाल को रविवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की पुरुष एकल लॉन बॉल स्पर्धा के सेक्शनल मुकाबले में माल्टा के शॉन जेम्स पार्निस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही पुतुल का आगे बढ़ने का सपना खत्म हो गया।
4: In swimming, the men's 4x200 relay team made it to the final before coming 6th in the event. Meanwhile, Tapan Mohanty finished 15th out of 18 finalists in the men's all-round final in gymnastics with a combined score of 70.100.
2: ग्लासगो में जिन खेलों में भारत की इस बार पदक की सबसे ज्यादा दावेदारी है उसमें ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स भी शामिल हैं। आज इसकी शुरुआत होने वाली है। एथलेटिक्स में सबसे पहले ट्रैक पर गुरिंदर वीर सिंह पुरुषों की 100 मीटर दौड़ के राउंड 1 की हीट 4 में उतरेंगे। उन्होंने हाल में 100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। वे भारत के पहले ऐसे स्प्रिंटर हैं जिन्होंने 10.10 सेकंड का समय का बैरियर तोड़ा है। आज ही लॉन्ग जंप में भारत के पदक की बड़ी उम्मीद मुरली श्रीशंकर क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप ए में और लोकेश सत्यनाथन क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप बी में फील्ड पर होंगे। श्रीशंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 8.08 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता था। 110 मीटर हर्डल रेस में राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखने वाले तेजस सिरसे भी खेलों के पांचवें दिन मेडल की बड़ी उम्मीद होंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो पदक के लिए दोबारा देर रात ट्रैक पर उतरेंगे। मेंस हाई जंप में भी आज मेडल मुकाबला होगा। भारत की तरफ से सर्वेश अनिल कुशारे, आदर्श राम ज्योति शंकर और तेजस्वी शंकर की चुनौती होगी। शानदार फॉर्म में चल रहे कुशारे देश के लिए पदक की बड़ी उम्मीद है। उन्होंने इसी महीने मोनाको डायमंड लीग में 2.26 मीटर ऊंची छलांग लगाकर ऐतिहासिक तीसरा स्थान हासिल किया था। बर्मिंघम में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तेजस्वी शंकर भी इस साल पदक

0: का रंग बदलने की उम्मीद कर रहे होंगे। ज्योति शंकर की चुनौती को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पैरा एथलेटिक्स में भारत की तगड़ी चुनौती रहने वाली है। विमेन्स शॉटपुट F57 कैटेगरी में शिल्पा KS और शर्मिला पदक के लिए अपना सारा हुनर और ताकत झोंक देंगी। पुरुषों की T38 कैटेगरी की 100 मीटर रेस में राकेश भाई भट्ट और श्रेयांश त्रिवेदी पदक जीतने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाएंगे। साल 2026 भी उनके लिए खास रहा है। इस साल उन्होंने दिल्ली में वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में गोल्ड मेडल जीता।
1: Let's now take a look at what will be a busy day for Indian boxers today at the Commonwealth Games. In the 60 kg category, Sachin Sivach will take on England's Will Hewitt. The 2016 World Youth Champion and 2026 Asian Championship silver medalist uses his 5'10" frame for a sharp back foot counter punching style and is riding high on form and confidence, coming off a solid 4-1 win over former CWG medalist Canada's Al Ahmadiyya. His long reach will be key to keeping the aggressive home favourite Hewitt at bay. Meanwhile, Ankush Panghal will take on Zalan Jan of Antigua in the men's 80 kg category. The reigning 2026 national champion in the light heavyweight division is a heavy-handed front foot pressure fighter with strong inside footwork. He will be making his games debut and Ankush will look to establish control early with body shots against Zalan Jan. Meanwhile, in the women's section, Sakshi Chaudhary will be taking on Lethabo Modukanele from Botswana in the 51 kg weight division. Sakshi comes into the event as a strong medal contender. Her high volume and relentless pace makes her a strong favorite against Botswana's experienced Modukanele if she gets into a rhythm from round one. Back in the men's segment, Sumit Kundu will also be in action against John McConnell of Northern Ireland. Sumit got a bye in the round of 32 and against Northern Ireland's John McConnell, he will be facing a tough challenge. He relies on his high tempo inside game and power combinations, and this will be a matchup to look out for.
2: आज का दिन भारतीय तैराकी और पैरा तैराकी दल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। पूल में भारत के कई खिलाड़ी अलग-अलग स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे और देश को उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद भी होगी। अनुभवी तैराक सजन प्रकाश एक बार फिर पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में उतरेंगे। पहले हीट में उनका लक्ष्य फाइनल का टिकट हासिल करना होगा, जबकि क्वालिफाई करने पर देर रात होने वाले फाइनल में उनकी नज़र पदक पर रहेगी। वहीं युवा तैराक आर्यन नेहरा पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फास्टेस्ट हीट में उतरेंगे, जहां लंबी दूरी की इस चुनौतीपूर्ण रेस में उनका धैर्य और गति दोनों की परीक्षा होगी। इसके साथ ही पैरा स्विमिंग में भी भारत की उम्मीदें स्वातिक पाटिल पर टिकी होंगी। स्वातिक पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक SB9 वर्ग की हीट में हिस्सा लेंगे और शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो क्वालिफाई करने में सफल रहते हैं तो भारत के लिए पदक जीतने की चुनौती पेश करेंगे। कुल मिलाकर आज पूल में भारत के लिए हर रेस बेहद अहम होगी। सजन प्रकाश, आर्यन नेहरा और स्वातिक पाटिल के प्रदर्शन पर भारतीय खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। उम्मीद होगी कि ये खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ फाइनल में जगह बनाए बल्कि भारत के पदक अभियान को भी नई रफ्तार दे दें।
1: More medals in weightlifting will be on the cards today as the Indian lifters aim to continue the momentum. Gyaneshwari Devi will be making her debut in the Commonwealth Games and taking part in the 53 kg category. She won bronze at the Asian Championships and her personal best of 194 kilos makes her the top-ranked lifter in the Commonwealth. Meanwhile, Vindhyarani Devi, a silver medalist at Birmingham, will be looking to make it two podiums in two as she enters the stage in the 58 kg final. In the men's segment, Valluri Ajaya Babu will be the dark horse in the 79 kg category.
0: आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में वुमेन वॉल्ट में भारत की प्रतिष्ठा सामंता की चुनौती होगी।
1: Now, let's take a look at the medals tally. Australia, top with a grand total of 39 medals and England are a distant second right now. India, meanwhile, with 4 medals and 1 gold, are now at the 8th position as the action heats up.
2: आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल आपके साथ वापस जुड़ेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की ताज़ा अपडेट के साथ इसी समय पर। तब तक हमारी पूरी टीम प्रस्तुतकर्ता शौर्य चौधरी, संपादक वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मैं कविता शर्मा आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों

0: आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स।
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों। खेलों के मैदान पर हमेशा की तरह हलचलें चल रही हैं। खेलों की दुनिया में रोमांच अंतहीन अंदाज में चलता रहता है। और अभी कुछ देर पहले आप सुन रहे थे संपूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो में हो रहा है, और पहले वैसे इन खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, विक्टोरिया में। इनफैक्ट 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन एक बार हो चुका है, और राष्ट्रमंडल खेलों का ये 22वां संस्करण है। तो इतिहास अगर पलटा जाए राष्ट्रमंडल खेलों का, तो पता चलता है कि एशियाई खेलों में भी, राष्ट्रमंडल खेलों में भी, और इवन ओलंपिक खेलों में भी कई शहर ऐसे हैं जिनको मल्टीपल टाइम्स यानी एक से ज्यादा बार इन मेगा इवेंट्स की मेजबानी का सुअवसर मिला है, और अब ग्लासगो उन शहरों में शामिल हो गया है। लेकिन ग्लासगो में एक खास बात है कि भारत ने पिछली बार यानी 2022 में बर्मिंघम में 61 पदक जीते थे, और इस बार भारत का जो डिसिप्लिन है, जैसे जो पार्टिसिपेशन है यानी जो भागीदारी है, चूंकि खेलों की संख्या भी कम हुई है, तो उस लिहाज से भारत के एथलीट्स की संख्या भी कम हो गई है, और जाहिर सी बात है कि मेडल टैली में उसका असर पड़ेगा, यानी पदकों की संख्या पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय दल ने, जो भारतीय दल ग्लासगो में पहुंचा है, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में शुरुआत की है और लगातार पदक जीतने का सिलसिला शुरू कर दिया है, और आइसिंग ऑन द केक, जैसे कहते हैं सोने पर सुहागा, वो प्रदर्शन किया है मीराबाई छानू ने, जिन्होंने लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। साथियों, ये कोई सामान्य बात नहीं है। खेल के मैदान पर आपको न केवल खेल में उत्कृष्टता हासिल करनी होती है, बल्कि उससे परे भी, मैदान से परे भी तमाम ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिनका आपके ऊपर असर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी फिटनेस बनाए रखना, मेंटल और फिजिकल फिटनेस बनाए रखना, ये बहुत बड़ा एक मकाम होता है जो खिलाड़ी हासिल कर पाता है। और उस लिहाज से गोल्ड कोस्ट 2018 ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद 2022 में बर्मिंघम में, और 2026 में यहां पर ग्लासगो में जो स्वर्ण पदक हासिल किया मीराबाई चानू ने, उसको वाकई में सिर झुका करके सलाम करने को मन चाहता है। उनका जो अचीवमेंट है वो अनिर्वचनीय है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ शब्द तो देने पड़ते हैं चीजों को, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी जो उपलब्धि है वो बहुत ही बेहतरीन है। और ऐसी ही एक उपलब्धि हासिल की है स्क्वॉश में एक ऐसी बालिका ने, एक ऐसी स्पोर्ट्स पर्सन ने, जो भारत से आती हैं, जो बहुत युवा हैं, और अपना आखिरी जूनियर विश्व स्तरीय टूर्नामेंट खेल रही थी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं अनहद सिंह की। अनहद सिंह आज की तारीख में 18 साल की हैं वो सिर्फ, और आज की तारीख में सारी दुनिया में स्क्वॉश में वो अपना नाम कर चुकी हैं। और 18 साल की इस खिलाड़ी ने विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। शनिवार को खेला गया सिंगल्स फाइनल, जहां पर शीर्ष वरीयता प्राप्त थी अनहद, और उन्होंने मिस्र की, इजिप्ट की दूसरी वरीयता प्राप्त रुकिया सलेम को 11-3, 11-7, 11-9 से यानी स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी। इसके साथ ही वो वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 2005 में जोशना चिनप्पा फाइनल में पहुंची थी, तब उनको फाइनल में हार से 2-4 होना पड़ा था, लेकिन अनहत इस बार इस टूर्नामेंट का फाइनल जीतने में कामयाब रही। जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 2011 से लगातार मिस्र की खिलाड़ी ही खिताब जीत रही थी। साथियों, एक जमाना था जब पाकिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो स्क्वॉश के अनडिस्प्यूटेड किंग है, और पुरुष वर्ग में उनका बोलबाला था। जहांगीर खान, जनशेर खान जैसे खिलाड़ी बिल्कुल किंवदंती हुआ करते थे स्क्वॉश की दुनिया में, और महिला वर्ग में आज वही स्थिति कमोवेश कहा जा सकता है कि मिस्र की है, इजिप्ट की है। और 2011 से लगातार वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इजिप्ट की खिलाड़ियों ने खिताब जीता था। अनहत ने फाइनल में रुकिया सलेम को हरा करके ये सिलसिला तोड़ दिया है। बैडमिंटन में साथियों, कई बार हम लोग बात करते थे ना कि साइना नेहवाल ने

0: या पीवी सिंधु ने चीन की जो दीवार थी, वॉल ऑफ चाइना बैडमिंटन में, उसको तोड़ा है। और कुछ कुछ यही करिश्मा अनहद सिंह ने किया है स्क्वाश की दुनिया में। अनहद ने पिछले साल भी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में शिरकत की थी, तब उन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। चार बार की चैंपियन इजिप्ट की अमीना मोर्फी उम्र सीमा के कारण इस टूर्नामेंट में नहीं खेली थी और लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन को पहले दौर में हराया, दूसरे दौर में हांगकांग की यूलियन क्लोइलो को हराया और लगातार 3 शून्य से जीत दर्ज की, यानी कोई भी गेम नहीं हारी। क्वार्टर फाइनल में पहला गेम हारी, मिस्र की हबीबा रिज को 3-1 से हराया। सेमीफाइनल में मिस्र की ही बार्ब सामेह को 3-1 से हराया और फाइनल में उन्होंने 3-0 से खिताब जीता। तो बहुत ही यादगार प्रदर्शन रहा अनहद सिंह का। और आगे आने वाले एशियाई खेलों के लिए या फिर 2028 में लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं साथियों, वहां पर भी स्क्वॉश को एक मेडल इवेंट के तौर पर शामिल किया गया है। और एक मेंटोर के तौर पर अनहद के साथ जुड़े हुए हैं सौरभ घोषाल, जो कि मल्टीपल मेगा इवेंट्स में भारत के लिए मेडल जीत चुके हैं। तो बहुत ही सकारात्मक संकेत है और बहुत ही शानदार कामयाबी है अनहद सिंह की। अनहद सिंह अपनी कामयाबी को शब्द कैसे दे रही हैं, आइए उन्हीं से सुन लेते हैं।
1: Of course, it means the world. It's the biggest event a junior can play, and I've been playing for the last 4 years, and it's not gone my way. And it's always been a really tough tournament for me. But I knew coming into this event that it was my last year, and I just had to give it my 100%. And hearing that feels unreal. I knew coming into the event that I had a chance of making that happen, and everyone was just like, "You have to put in your 100% so you can make history." And fought as hard as I could, and I'm glad that I was able to push through it.
0: अनहद सिंह की आवाज साथियों आपने सुनी, उनकी आवाज में भी वही फ्लो है जो उनके खेल में है, क्योंकि बिल्कुल लगातार एकदम स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया थी उसको व्यक्त किया। और हम उम्मीद करेंगे कि ये जो खिलाड़ी हैं ये और प्रॉस्पर करें और निखरें स्क्वॉश के कोर्ट पर और भारत का मान बढ़ाएं, भारत का परचम फहराएं अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में। हमने बात की थी राष्ट्रमंडल खेलों की, उससे पहले आपको एक छोटी सी और जानकारी दे देते हैं। एशियन यूथ हॉकी चैंपियनशिप जो कि मस्कट में खेली जा रही थी, वहां पर भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा करके खिताब जीत लिया है और भारत टूर्नामेंट में अजेय रहा। भारत के लिए रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। तो भारत की यूथ हॉकी में भी, यूथ स्क्वाश के बाद यूथ हॉकी में भी बढ़िया सफलता रही। और राष्ट्रमंडल खेलों में हमने जिक्र किया था मीराबाई चानू का, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए ऋषिकांता सिंह ने सिल्वर मेडल जीता। झंडू कुमार ने भारत के लिए मेडल जीतने की राष्ट्रमंडल खेलों में शुरुआत की थी जब उन्होंने कांस्य पदक जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। तमाम जीवन की विसंगतियों को पीछे छोड़ करके झंडू कुमार आगे आए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपका संकल्प हो, अगर जिजीविषा हो, जीवट हो, डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो, तो फिर दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और झंडू कुमार ने भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में ग्लास्को में मेडल जीतने की शुरुआत की। लेकिन जैसा हमने प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया कि मीराबाई चानू की जो उपलब्धि है वो तो अनिर्वचनीय है। उन्होंने महिलाओं में 48 किलोग्राम भार वर्ग में 190 किलो वजन उठाया, 85 kg, 85 किलोग्राम स्नैच में, 105 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में, राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया, स्वर्ण पदक उन्होंने अपने नाम किया। भारत के अब 4 मेडल हो गए हैं, यानी 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। रविवार को ऋषिकांता सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम में 264 किलो वजन उठा करके सिल्वर मेडल जीता था। 121 किलो उन्होंने स्नैच और 143 किलो क्लीन एंड जर्क में उठाया था। इसके अलावा राजा मुथुपांडी ने पुरुषों में 65 किलोग्राम वर्ग में 289 किलोग्राम वजन उठा करके सिल्वर मेडल जीता था। तो बहुत ही शानदार उपलब्धि है। भारत मेडल टैली में फिलहाल 7वें पायदान पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया 12 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ टॉप पर है। मीराबाई चानू की जो उपलब्धि थी वो इसलिए भी खास है क्योंकि आगे आने वाले जो कुछ टूर्नामेंट हैं, खासतौर पर एशियाई खेल, उनको उनके परिपेक्ष में मीराबाई चानू का ये जो अचीवमेंट है वो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में है और उम्मीद करेंगे कि वो जो राष्ट्रमंडल खेलों का फॉर्म है उसको रेप्लिकेट करें एशियाई खेलों में जो कि सितंबर के महीने में होने वाले हैं। अपनी स्वर्णिम सफलता को शब्द देते हुए मीराबाई चानू क्या कह रही हैं?
2: हमारी नेशनल एंथम जो है वो जब गाते हैं, जब सुनते हैं तो अपना आप आंसू निकलते हैं, खुशी के ही आंसू है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये तीसरा गोल्ड मेडल दे पाई हूँ इंडिया के लिए। ये गेम्स में हम इतना एफर्ट नहीं लगाने वाली थी, पर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट जो फेल हुआ था, दोनों ने सोचा था कि हम दो लिफ्ट ही करेंगे, उनके आगे एशियन गेम्स आने वाले हैं तो इसी के लिए हमको फोकस करने थे।
0: आपने सुना मेरा भाई चानू ने कहा कि एशियाई खेल आने वाले

0: हैं उसके लिए भी उनको फोकस करना था। और मीरा भाई चानू का जो अचीवमेंट रहा है, 3 स्वर्ण पदक तो हमने आपको बता दिए, लेकिन 2014 में साथियों जब ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था तब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 2014 में सिल्वर, 18, 22, 26 में स्वर्ण पदक, 2017 में विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और टोक्यो ओलंपिक खेलों में 2021 में भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो क्या कमाल का अचीवमेंट का रिकॉर्ड रहा है मीराबाई चानू का। ऋषिकांता सिंह अपना दूसरा राष्ट्रमंडल खेल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बर्मिंघम में 55 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मौजूदा कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप भी उन्होंने जीती हुई है जो कि अहमदाबाद में आयोजित हुई थी पिछले साल, मणिपुर में जन्मे हैं। ऋषिकांता सिंह ने अपनी जो सिल्वर मेडल की कामयाबी थी उसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं।
1: बहुत खुशी हूँ सभी मिलके, और मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन एंड इंडियन स्पोर्ट मिनिस्टर एंड इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन सभी ने मेरे स्पोर्ट को सपोर्ट करके आज इधर मेडल लेके आने के लिए बहुत सपोर्ट किया था।
0: तो ऋषिकांता सिंह कह रहे थे कि हर तरफ से उनको सहयोग मिला है, सपोर्ट मिला है फेडरेशन से, एसोसिएशन से, और बहुत ही एक हार्टनिंग फैक्टर है कि एक खिलाड़ी जिसको सपोर्ट मिल रहा है उसे वो एक्नॉलेज कर रहा है, साथ ही उन मौकों का वो सही तरीके से फायदा भी उठा रहा है। क्रिकेट की बात करते हैं, भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20 मुकाबले में 35 रन से हरा करके, जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर यह मैच खेला गया था, श्रृंखला 3-0 से अपने नाम करी यानी क्लीन स्वीप किया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, 20 ओवर में 5 विकेट पर 192 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। भारत की जीत के हीरो रहे वैभव सूर्यवंशी, 49 गेंदों में 81 रन की उन्होंने पारी खेली। गेंदबाजी में मयंक यादव ने 3 विकेट लिए, यश ठाकुर को 2 विकेट मिले। अभिषेक शर्मा हालांकि जल्दी आउट हो गए थे लेकिन उसके बाद वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन उन्होंने 29 रन बनाए थे। ईशान किशन ने 2 विकेट के लिए 75 रन जोड़ करके पारी संभाली और श्रेयस अय्यर ने 27 रन बनाए और 50 रन की साझेदारी उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ की। वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में साथियों पिछली जो पारियां खेली हैं जरा उसकी बानगी आपके सामने पेश कर देते हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ था वहां पर उन्होंने 68 रन बनाए, फिर 175 रन की नाबाद पारी खेली, फिर 50 रन बनाए, फिर 20 रन बनाए। ये हम जिम्बाब्वे सीरीज की बात करें यानी पहले T20 मैच में 50, फिर 20 और कल 81। तो हरारे स्पोर्ट्स क्लब का जो मैदान है वो उनको बहुत सूट करता है और ईशान किशन जो कि टीम के सीनियर प्रो हैं, अगर हम वैभव सूर्यवंशी से तुलना करें तो वो वैभव के बारे में क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
2: बहुत स्मार्ट भी है वैभव, को पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको कैसे बैटिंग करनी है, उसको ऑफ द फील्ड कैसे रहना है, ऑन द फील्ड कैसे रहना है। वो जैसा प्लेयर है स्पेशली, और हम लोगों को पता है कि वो अगर पिच पे रहे, अगर वैसा प्लेयर पिच पे रहे तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है आपके टीम में, कि कोई बैट्समैन जाके फर्स्ट बॉल से मार रहा है और आप 6 ओवर में पहले पावर प्ले में एंड करते हो 80-90 रन पे। सो ऐसी चीज जब आपके पास ऐसा प्लेयर होता है और आप जानते हो कि वो बहुत ही ज्यादा यंग है तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो। हमारा काम एज अ टीममेट्स, तो हम लोग का बस यही ध्यान होता है कि खुश रहे, जो इम्पोर्टेंट चीज है उन पे ध्यान दे, जो गलतियां हमने करी है अपने स्टार्टिंग में वो ना करे।
0: ईशान किशन एक सीनियर प्रो की तरह साउंड कर रहे थे, वैभव सूर्यवंशी के बारे में बता रहे थे जिन्होंने कल 81 रन की पारी खेली, उनको मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवार्ड से भी नवाजा गया। साथियों ये जो श्रृंखला जिम्बाब्वे के साथ खेली जा रही थी इससे पहले भारत ने 5 T20 मुकाबलों की सीरीज खेली इंग्लैंड के साथ, वहां पर भारत 0-4 से हारा क्योंकि पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। उससे पहले आयरलैंड के साथ भारत ने 2 T20 मुकाबलों की श्रृंखला खेली, वहां पर भी भारत 0-2 से हारा था। वीवीएस लक्ष्मण जिम्बाब्वे में टीम के कोच का दायित्व निभा रहे थे, टीम के प्रदर्शन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, आइए सुनते हैं।
3: Right from the first practice session, morale of the team was fantastic. One day before the first match, the players who played the last one day in England, they joined us. But we had all the players who were available in India. We had a 4-day camp at the COE before we all traveled to Harare, and we had good 3 quality sessions. And on the eve of the first match, we felt that the entire team was well prepared and they were looking forward to this opportunity. And it's great to see that they capitalized on the opportunity and played to their potential.
0: वीवीएस लक्ष्मण ने संतोष जाहिर किया है टीम के प्रदर्शन पर जिसने जिम्बाब्वे को 3-0 से हराया 3 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों की श्रृंखला में। चलते चलते बात कर लें बर्थडेज की, 27 जुलाई यानी आज के दिन सीमा पूनिया भारत की एथलीट अपना बर्थडे मना रही हैं। जॉन्टी रोड्स भी आज अपना बर्थडे मनाते हैं, जाने माने क्रिकेटर। एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया से आते हैं वो भी अपना बर्थडे मनाते हैं 28 जुलाई को। हैरी केन इंग्लैंड के स्ट्राइकर उनका बर्थडे होता है। सर गारफील्ड सोबर जो कि कुछ दिन पहले विदा हुए उनका बर्थडे भी 28 जुलाई को होता है। 31 जुलाई को टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका अपना बर्थडे मनाती हैं। 1 अगस्त को अरुण लाल अपना बर्थडे मनाएंगे। श्वाइनस्टाइगर बैस्टियन श्वाइनस्टाइगर जर्मनी के खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाएंगे, लेकिन फिलहाल स्पोर्ट्स पल्स में शिवेंद्र को दे दीजिए अनुमति, अगले

0: सप्ताह फिर मिलेंगे, आप अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्पा बे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स।
4: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।

नमस्कार, एआईआर एफएम रेनबो पर सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेखनी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह। विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बलोट के तौर पर हुई। अमरीका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्धविराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्नदृष्टा थे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीता। श्रीकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक। और भारत ने हरारे में 3रे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 49 गेंद पर 81 रन बनाए। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट। और ज़रूरी है रहना आपका स्मार्ट, क्योंकि आप ही तो हैं हमारे स्टार्स, और हमारे ये स्टार्स फिट एंड फाइन, हेल्दी एंड स्मार्ट रहें, बस यही दुआ रहती है। इसी दुआ के साथ आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी रेनबो पर, और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ, और ये साथ बिल्कुल आपके साथ बना रहेगा 9 बजे तक। और आप भी सफर पर निकल चुके हैं और पूरी तैयारी में हैं, तो बिल्कुल बता देते हैं मौसम का हाल कैसा होने वाला है।

कैसे रहने वाला है मौसम आज? तो हल्की से मध्यम बारिश की आज उम्मीद है और इससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से थोड़ी राहत ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ आने वाले दिनों की बात करें तो 28 और 29 जुलाई को येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो अपना पूरा ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी जर्नी जो है उसको आप डिसाइड करें। और साथ ही साथ 30 जुलाई

डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। और आप बिल्कुल तैयार रहें, इस पूरी जानकारी के साथ सफ़र पर निकले हैं तो अपने सफ़र को सुहावना बनाने की जिम्मेदारी तो बिल्कुल आप ही की है। फिर चाहे बातें कुछ भी हो, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो,

छुक छुक रेलगाड़ी से सफर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रेन की आवाज़ और आपको मिल जाए विंडो सीट और बाहर के जो नज़ारे हैं उनका आनंद लेते हुए, बस आप एक अलग ही सफ़र में होते हैं, एक अलग ही भाव में होते हैं, खोए होते हैं, कहीं डूबे होते हैं किसी ना किसी यादों में, और वो सफ़र बड़ा ही खूबसूरत तय होता है। और अगर आप भी आई एम श्योर ट्रैवल करते होंगे रेलवे से, और अगर आप रेल से ट्रैवल करते हैं तो रेलवे ने यात्रियों को बेहतर और स्वच्छ अनुभव देने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब रेलवे ने क्या किया है, AI कैमरों और अन्य स्मार्ट डिवाइसेस का उपयोग कर ट्रेन में जो चादरें मिलती हैं, तकिए मिलते हैं, उसकी सफाई की गुणवत्ता की जांच करेगा। तो AI अब वीटोमीटर नामक डिवाइस का इस्तेमाल करेगा, और इससे क्या होगा कि ये जो डिवाइस है ये एक डिजिटल ऑप्टिकल डिवाइस है जो कपड़े से रोशनी को रिफ्लेक्ट कर उसकी सफ़ेदी का स्कोर तय करता है। तो AI जो कैमरे होंगे वो वॉशिंग और फिनिशिंग लाइन पर लगाए जाएंगे, और जब भी जो चादरें हैं, तकिए हैं, कन्वेयर बेल्ट से गुजरेंगे तो ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि कहाँ गंदगी है, दाग धब्बे हैं, तेल के निशान हैं, या वो सब कुछ पहचान लिए जाएंगे। और उसको अगर तय मानकों से कम साफ पाया जाएगा कोई भी कपड़ा, चादरें, तकिए, तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा, और इस तरीके से आपको पूरी सफाई मिलेगी। और ये जो कदम है रेलवे की सफाई व्यवस्था को और हाईटेक और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या लगती थी जब आप पहले ट्रैवल करते थे, तो फिर इसका भी एक समाधान पहुँच गया है हम तक। आप जुड़ रही है हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR के इसी सफर में। खबरों आप तक जो खबरें हैं वो पहुंचती रहेंगी, और साथ ही साथ गानों का साथ यूं ही बना रहेगा।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ मुकुल श्रेष्ठ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ। और एक अच्छी नौकरी का सपना हर कोई देखता है, अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छी नौकरी हो या जो भी आप करना चाहते हैं अच्छा अच्छा हो, ताकि आपने जिस भी फील्ड में मेहनत की है उसमें आपको अच्छा करने का मौका मिले, तो फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद सपना है एक अच्छी जॉब का, तो अभी यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन है। और ऑप्शन ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से 2200 से ज़्यादा पदों पर नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट NORCET 11 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो आप जो आधिकारिक वेबसाइट है एम्स दिल्ली की, aimsexams.ac.in पर इस को आप देख सकते हैं, इससे पूरी जुड़ी जानकारी आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो बिल्कुल भी देरी मत करें और आप जल्दी से अप्लाई कर दीजिए इसके लिए, और अप्लाई कर लीजिए और देखिए उनमें से एक जो है आप भी हो सकते हैं वो लकी पर्सन। और भी बातें होंगी और भी खबरें आप तक पहुंचेंगी जो जुड़ी हुई हैं आप ही से, आप ही के लिए हैं। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए सफर में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

0: सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

फास्ट बीट वाले जो डांस नंबर्स होते हैं ना, उन पे ज़रा थोड़ा सा डांस करके देखा कीजिए, तो पता चल जाएगा कि आप कितने हेल्दी हैं, कितने फिट एंड फाइन हैं। स्मार्ट तो आप बहुत हैं, लेकिन अपनी स्मार्टनेस को बनाए रखने के लिए आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि आप का जो रूटीन है वो कैसा है, और बात करें तो जो हमारा रात का खाना है हम किस समय पर लेते हैं वो काफ़ी मायने रखता है। तो अगर आप बहुत ही लेट खाना खाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी कुछ समस्या हो सकती है, क्योंकि स्टडी से पता चलता है कि अगर आप देर रात तक खाना खाते हैं तो अधिक कैलोरी वाला जो भोजन है वो शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा को फैट में बदल देता है और जमा करता है। तो क्या होता है कि अगर आपका यही रूटीन है, आप बहुत हर दिन आप लेट खाना खाते हैं, तो इससे वज़न बढ़ता है और आपकी जो पेट की चर्बी है वो भी बढ़ने का खतरा होता है। और इससे स्टडी में पता चला है कि मोटापा जो है वो किडनी पर दबाव डालता है और इससे किडनी की कार्यक्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम ब्लड शुगर की बात करें तो वो भी प्रभावित हो सकती है, Type 2 डायबिटीज़ विकसित हो सकती है जो किडनी पर बुरा असर कर सकती है। तो इसलिए क्या करना है आपको, जब आप बहुत लेट खाते हैं तो आपने नोटिस भी किया होगा कि आपको नींद भी नहीं आती है सही से। कई बार क्या होता है कि हमने लेट खाना खाया और हम बस बेड पे चले गए सोने, और हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो जो एक डाइजेशन का जो टाइम है वो नहीं मिला है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखें अपनी सेहत का। ज़रूरी है कि आप रात के समय पर एक तो संतुलित भोजन लें, हल्का भोजन करें, और इससे क्या होगा कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ठीक रहेगा और जो किडनी है उसकी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप रात में हल्का भोजन करें और स्वस्थ जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी हम तो हैं ही आपके साथ इस सफर में, हर तरह से आपका साथ देने के लिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ, जी हाँ, नूपुर कुलश्रेष्ठ।

आकाशवाणी रेनबो का ये सफर जारी है, लेकिन गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। आप जुड़ रही है हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने। आपके साथ होंगी कंचन कानन, उसके बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर और इसमें आपका साथ देंगे उत्कर्ष। उसके बाद बॉलीवुड की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगी आकृति खंडूरी। मैं नूपुरकुल श्रेष्ठ अब आपसे लेती हूँ इजाजत। आप जुड़ रही है हमारे साथ इस खूबसूरत से सफर में। नमस्कार।

नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षाएं, अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग

के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। दमकल कर्मी तेजी से फैलती आग को बुझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 29 घायल हुए। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बलोच के तौर पर हुई। अमेरिका और ईरान ने लगातार दूसरे दिन एक दूसरे पर हमले नहीं किए। इससे लगभग 2 सप्ताह की सैन्य कार्रवाई के बाद अस्थायी युद्ध विराम पर फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद जगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ एपीजे अब्दुल कलाम एक विकसित आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के दूरदर्शी स्वप्न दृष्टा थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक। भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराकर 3-0 से अपने नाम कर ली है। भारत ने 5 विकेट पर 192 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 गेंदों पर 81 रन बनाए। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून कर लिया है आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में आपके साथ कंचन हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे हैं आप, हमें पता है। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने। मैं आपके साथ कंचन हूँ, सुनते रहिए FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि गीत पसंद आए होंगे। जुड़े रहिए एफएम रेनबो के साथ, दिल से दिल तक। अपना ख्याल रखिए, बुजुर्गों का हाथ थामे रखिए। मैं कंचन लेती हूँ विदा। नमस्कार।

आकाशवाणी। गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू आर लिसनिंग टू मैचलेस म्यूजिक आवर विद उत्कर्ष शरण। सो लेट्स बिगिन आवर मॉर्निंग मेडली ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी हिट्स विद एनीवेयर इज बाय एनिया।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: And on that very, very delightful note, allow us to take the last short break of this hour. But don't you go away, because there is more music to come. Stay tuned and we'll be right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना, कल नहीं आना मुझे न बुलाना के मारे कताना जमाना।

प्रस्तुत है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी सांसदों से परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की है। प्रधानमंत्री का युवाओं से भारत के सीमावर्ती गांवों के साथ संबंध मजबूत करने का आग्रह, विकसित गांवों को विकसित भारत की मजबूत नींव बताया। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। फ्रांस और स्पेन के जंगल में भीषण आग के कारण लगभग 3 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। जर्मनी में बर्लिन प्राइड हमले का संदिग्ध पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत

हो गई और 29 घायल हुए थे। संदिग्ध की पहचान लेबनानी मूल के जर्मन नागरिक अब्दुल बल्लॉट के तौर पर हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार दूसरे दिन हमले नहीं होने से अस्थायी संघर्ष विराम पर बातचीत फिर शुरू होने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और भारत की भारोत्तोलन क्वीन मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में राष्ट्रमंडल खेलों का लगातार तीसरा स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह को पुरुषों के 60 किलो भार वर्ग में रजत पदक और भारत ने हरारे में तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

बॉलीवुड रील्स में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मैं आज 30 घंटे आपके साथ रहूंगी। कौन सी फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है, कौन सी फिल्म कब रिलीज होने वाली है, कास्ट फाइनल हो रही है तो फाइनली कौन सी कास्ट हुई है, सभी बताते हैं हम आपको आकाशवाणी रेनबो पर, जिसे आप सुनते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना होते हैं आप जुड़े रहते हैं आकाशवाणी रेनबो से न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से, या फिर OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के उस पर भी सुन सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो को। और इस घंटे पुराने सुनने वाले मुझे पता है तैयार बैठे होंगे, क्योंकि बॉलीवुड सरताज बनने का मौका भी हम देते हैं। प्रोग्राम में जो शेयर की जाएंगी अपडेट्स, उन्हीं में छुपा होगा आज का सवाल भी, जिसे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले सही पहुंचाकर बन सकते हैं आज के प्रोग्राम के बॉलीवुड सरताज भी। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर 9868107070। तो प्रोग्राम से जुड़े रहिए, प्रोग्राम में शेयर की गई बातों को ध्यान से सुनिए, छुपा होगा इसी में आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी।

बॉलीवुड रील्स में आज के पहली अपडेट आ रही है कहानी फ्रेंचाइजी की पार्ट 3 के बारे में, यानी कि कहानी 3 के अपडेट के बारे में। विद्या बालन की कहानी और कहानी 2 जबरदस्त रिस्पांस मिला था, दर्शकों का बहुत प्यार मिला था, दोनों ही फिल्म्स हिट हुई हैं। और अब खबर जो हम तक आई है, लेटेस्ट अपडेट हम तक आई है कि इसका पार्ट 3 जो बनने वाला है उसमें यामी गौतम लीड रोल में आ सकती हैं। जी हाँ, कहानी 1 और कहानी 2 दोनों ही सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी और विद्या बालन ने बेहद शानदार तरीके से अपने किरदार को निभाया। ट्विस्ट ने कहानी में इतना ज़बरदस्त था कि लोगों को लास्ट क्लाइमेक्स तक जो है बांध ही रखा। अब जो है कहानी 3 इसी फ्रेंचाइज में उसका नाम सामने आ रहा है, और लेकिन ये है कि इस बार विद्या बालन का नाम नहीं आ रहा है लीड एक्ट्रेस में, बल्कि यामी गौतम का नाम आ रहा है। यामी बेहतरीन एक्ट्रेस है, हाल ही में नेशनल फिल्म अवार्ड भी उनको मिला है। और फिलहाल कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये प्री प्रोडक्शन स्टेज में है और इसकी टीम जो है इसकी डेट्स टाइमिंग्स वगैरह तय करने में जुड़ी हुई है। एक बार फिर डायरेक्शन में सुजय घोष ही आएंगे, तीसरे पार्ट को भी वही डायरेक्ट करेंगे। और अगर यामी की बात करें तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 370 के लिए उनको 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड जो है उनको मिला। और इसके अलावा यामी फिल्म नई नवेली में भी नज़र आने वाली है। ये कॉमेडी हॉरर जॉनर की मूवी है और इसमें यामी एक परफेक्ट बहू के रोल में दिखाई देने वाली है। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि धुरंधर द रिवेंज में वो शाजिया बानो के छोटे से किरदार में भी नज़र आई थी। लेकिन फ़िलहाल बॉलीवुड रील्स में आज की अपडेट हमारी यही है कि यामी गौतम की एंट्री कहानी 3 में ऑलरेडी हो चुकी है। और ये फिलहाल कहानी 2 से ये ट्रैक आपके लिए।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड रील सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। आपके साथ हूं मैं आकृति और आकाशवाणी रेनबो, जिसे सुनते हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर, न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना आपके पास, देश के किसी भी कोने में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल बॉलीवुड की अगली अपडेट हम तक आई है आलिया भट्ट के बारे में, जिनकी हाल ही में जो रिलीज हुई थी फिल्म स्पाई थ्रिलर अल्फा 3 जुलाई को रिलीज हुई थी ना, अंदाज़ा ये लगा रहा था कि भाई टाइगर और पठान जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर थ्रिलर मूवी के बाद यशराज फिल्म्स के बैनर तने बनने वाली अल्फा जो है ये भी इस साल की बिगेस्ट हिट साबित होगी। लेकिन अभी तक अगर हम आंकड़े देखें तो ऑडियंसिस ने थिएटर में अल्फा को खास सक्सेस नहीं दी है। लेकिन अब जो है अल्फा की ओटीटी रिलीज की सुर्खियां जो हैं वो तेज़ हो गई। यूँ होता यह है आजकल कि मूवी जब रिलीज़ होती है सिल्वर स्क्रीन पर उसके कुछ ही महीनों के बाद ओटीटी की डील भी कर ही जाती है, लेकिन इसमें नहीं किया गया था। लेकिन अब माने तो मेकर्स ने ये बात मान ली है कि इसको जल्द ही जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया जाए और 15 अगस्त के आसपास इसको रिलीज़ करने की तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक अल्फा नहीं देखा है तो थोड़ा सा बस इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि ये जो स्पाई थ्रिलर मूवी है बहुत जल्द आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगी। इस फिल्म में आलिया के अलावा शर्वरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे कलाकारों ने अहम भूमिका जो थी वो निभाई थी। तो इंतज़ार अभी तक है। वैसे अगर मैं बात करूँ अल्फा की तो वर्ल्ड वाइड यूँ तो कहा जा रहा है, अपडेट्स ये आई हैं कि 100 करोड़ के आसपास जो इससे अधिक का इसने बिजनेस कर लिया है। लेकिन यशराज फिल्म्स की जो स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्म्स हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर जो है वो अभी तक साबित हुई है। अल्फा रिलीज़ होने वाली है बॉलीवुड रील्स में, हम आपको बता रहे हैं बहुत ही जल्द ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 15 अगस्त के आसपास।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
0: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

बॉलीवुड रील्स में अगली अपडेट आ रही है उन दो फिल्म्स के बारे में जो हाल ही में अब रिलीज होने वाली हैं, और इन फिल्म्स का नाम है, एक है टॉक्सिक और दूसरी है आवारापन 2। इस साल की दो ऐसी फिल्म्स हैं, फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म की लिस्ट में टॉक्सिक नंबर 1 पे है, और इमरान हाशमी की जो फिल्म है आवारापन 2 वो 5वें नंबर पे है। फिलहाल आपको बता दें हम कि टॉक्सिक, जो कि कन्नड़ भाषा की एक पैन इंडिया फिल्म है और एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, 26 अगस्त को सिनेमा हॉल्स में दस्तक देगी, और इसमें सुपरस्टार यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणी बसंत जैसे कलाकार

नजर आएंगे और कई बार पोस्टपोन हो चुकी है इसकी रिलीज डेट, लेकिन यश क्योंकि इसमें है तो बहुत ही खास है। इस फिल्म की बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। और आवारापन टू की बात अगर हम करें इमरान हाशमी की, तो ये फिल्म जो है 14 अगस्त को सिनेमा हॉल्स में रिलीज होगी। और इस फिल्म में इमरान हाशमी, सलील आचार्य, शबाना आज़मी, विजयंत कोहली, दिशा पाटनी और अतुल कुमार जैसे कलाकार हैं। और आवारापन टू, नितिन काकर जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, डार्क रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। और आवारापन जो ओरिजिनल फिल्म थी 2007 में रिलीज हुई थी, उसी का सीक्वल है। और बॉक्स ऑफिस में ठीक ठाक चली थी वो, लेकिन मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया था उस वक्त। और एक ख़ास जो थी उनके दर्शक थे जिन्होंने उनको पसंद किया था। फिलहाल देखते हैं ये दोनों फिल्म्स अब सिल्वर स्क्रीन पर क्या दिखाती हैं जलवा।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रिल्स, और बॉलीवुड ट्रिल्स में वो मौका हम आपको देने वाले हैं आज का बॉलीवुड सरताज बनने का, क्योंकि पेश है आपके लिए बॉलीवुड सरताज का सवाल। और इस सवाल का सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले जो पहुंचाएगा वो बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। नंबर पुराने सुनने वालों को तो मुझे पता है तैयार बैठे होंगे अपने फ़ोन्स के साथ। हमारा नंबर है 9868107070। तो इस व्हाट्सएप पे पूछे गए सवाल का सही जवाब दीजिए। और सवाल पेश है आपके लिए, और वो ये कि आलिया भट्ट की 3 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म का आपको मुझे नाम बताना है। इस फिल्म की चर्चा हमने की थी, ये फिल्म स्पाई थ्रिलर मूवी है। हिंट आपको दे रही हूँ कि शिव रवेल ने इसको डायरेक्ट किया है, और इस फिल्म में शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी हैं। बताइए आलिया भट्ट की 3 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म का नाम क्या है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में अब वो पल आ चुका है जब हम अनाउंस करने वाले हैं कि आज का बॉलीवुड सरताज बन कौन रहा है। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आलिया भट्ट की 3 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म का नाम बताइए। आप में से बहुत से लोगों ने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सही जवाब बताए हैं, कुछ ने कुछ गलत भी बताए, लेकिन सबसे पहले आज इस सवाल का सही जवाब जो कि अल्फा है, इस फिल्म का नाम था अल्फा, हम तक पहुंचाने वाले हैं कौन, आइए उनका नाम पढ़ देती हूँ और बता देती हूँ कि आज बॉलीवुड सरताज कौन बनने वाले हैं। तो बॉलीवुड सरताज बनने वाले हैं जिन्होंने बताया कि आलिया भट्ट की 3 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म का नाम था अल्फा, सलीम मलिक साहब मेरठ से जो बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। बहुत बहुत बधाई हो सलीम साहब आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने की। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था अल्फा और शिव रवेल ने इसे डायरेक्ट किया था और साथ में थे आलिया के शर्वरी, अनिल कपूर और बॉबी देओल। लेकिन सलीम साहब के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है, सबका नाम ज़रूर लेना चाहूंगी। ये थे तरुण कोहली साहब जिन्होंने सही जवाब बताया, हरीश कौर मेरठ से, कंचन सोनिया विहार से, निकिता पारेकर पुणे से हमसे जुड़ी हैं अल्फा बताने वाले, प्रवीण चौहान साहब मध्य प्रदेश से, आसिफ सैफी का मेरठ से सही जवाब आया है, मेरठ से ही बसंत तोमर, सुकुल बाला वेस्ट बंगाल से, धर्म भाटिया जी रोहतक से, मोहनीश इदरिसी उत्तर प्रदेश से, शुरू ग्रेटर नोएडा से, नीतीश कुमार रेशम नगर झारखंड से हमसे जुड़े हैं अल्फा बताने वाले हैं, ये इनका नाम है आदित्य कुमार। इसके अलावा विनोद सिंह राणा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हमसे जुड़े हैं, राजीव का मेरठ से सही जवाब आया है, और अल्फा कह रही हैं स्वर्णा पर्व कटक से, रंजीत मस्ताना रायबरेली से, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी का भी सही जवाब हम तक आया है, अंजलि का सही जवाब आया है, और इसके अलावा उमेश कुमार साहब, फुरकान साहब, इनका भी सही जवाब आया है। लेकिन सबसे बड़ी बधाई जाती है आज सलीम मलिक साहब को मेरठ से जो बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मुझे यानी आकृति को आज के बॉलीवुड ट्रेल से दीजिए विदा, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपके साथ रहेंगे उत्कर्ष प्लेट कूल लेकर। 1 बजे आपसे मुलाकात मैं ही करूंगी रेनबो हेल्पलाइन प्रोग्राम में, और आज हम बात करेंगे करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। हमारे एक्सपर्ट होंगे डॉक्टर प्रवीण सरोहा जो कि फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट हैं। 2 बजे आशियाना प्रोग्राम में सृजन राजपूत आपके साथ रहेंगे, और 3 बजे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आज बात होगी स्पेशली ऑन हेड एंड नेक कैंसर पर, क्योंकि आज हेड एंड नेक कैंसर डे है, और डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जो कि हेड एंड नेक सर्जन हैं इस प्रोग्राम में इस विषय में हमें जानकारी देंगे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड

0: नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: Colleges, unlike schools, are a melting pot of cultures and backgrounds. You get to meet people from far-flung places who bring completely new perspectives and all sorts of talents. Come to think of it, won't this turn making friends into a learning experience outside the classroom? Tell us as we play Easy Air by 5 Seconds of Summer.

0: I just want to say I love you one more time. I love you. Goodbye.
1: All the opportunities and experiences in college, of course, are incentives for a nice job to one's liking. But that kind of freedom and community rarely remains after one becomes a professional. Tell us about your memories of carefree college days at 9868107070 on WhatsApp while we take this hour's last break.
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
1: An underrated aspect of meeting so many new people is that if one is ready to make the effort, you can learn a whole bunch of languages from native speakers. After all, who hasn't secretly wanted to go somewhere and impress the locals in their own mother tongue? On that note, here's something very interesting language-wise. Dolce by Luis Fonsi.

प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलेंग जिले के नामसांग सर्कल में 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है और मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने वेटलिफ्टिंग में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि खेल का मैदान हो, खिलाड़ियों का जुनून हो और जीत का जज्बा हो तो भला कौन इससे जुड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खेलों की दुनिया में खिलाड़ी बनने के अलावा भी शानदार करियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात करेंगे कि एक ऐसे ही एक्साइटिंग फील्ड की जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। जी हाँ, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए बनाया जा सकता है, पहले तो यही कहूँ और फिर ये कहूँ कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, मेरे भी हैं और इन सभी क्वेरीज का समाधान करने के लिए हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन की स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सरोहा, जो कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रवीण सरोहा आपका रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में।
2: आप सभी लिसनर्स का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ।
1: जी, बहुत से सवाल हैं हमारे श्रोताओं के भी, मेरे भी, लेकिन नए जुड़ने वालों को बता दूं कि अगर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर के विषय में आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर हमें फ़ोन मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर जो कि है 1800111026 इस पर फ़ोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा एक और नंबर है 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और उसके बाद आप डायल कर सकते हैं 2342 1080 एंड 2342 1082। इन सभी नंबर्स के माध्यम से आपकी क्वेरीज हम तक पहुंच सकती हैं और इससे पहले कि आपके सवालों की जो सिलसिला है हम शुरू करें, सबसे पहले तो डॉक्टर सरोहा आपसे यही पूछना चाहूंगी कि ये जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होता है वो आखिर क्या होता है।
2: मैं सभी लिसनर्स को पहले स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के बारे में बताने से पहले मैं इसमें ये बताऊंगा कि कैसे इसका जो है इस फील्ड का कैसे इसका आविष्कार हुआ या कैसे ये एवेल्युएट हुआ। मैं 2010 की बात करूंगा जब हमारे राष्ट्रमंडल खेल जब हमने दिल्ली ने जब आयोजन किया तो 2010 में मैं भी उन खेलों से जुड़ा हुआ था और उन खेलों में मुझे जो है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो है मैं प्रेजेंटेशन मैनेजर था उस समय और वहाँ उस समय हमें एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि जो जितना भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो था वो हमने बाहर से दूसरे विदेशों से हमने ये सर्विसेज हायर करी तो वो सर्विसेज जो आज हम उसके परिपेक्ष में बात करें तो आज वो हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को कैटर कर रहे हैं। जहाँ तक की बात करें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है क्या, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक जो व्यक्ति या जो भी इंडिविजुअल जो स्पोर्ट्स में एंथुजियास्ट है या जब पैशनेट है वो जब अपने कैरियर को लेके इसके साथ अपने को जोड़ता है या किसी काम को जोड़ता है या अपने किसी बिजनेस को जोड़ता है तो दैट इज वी कॉल एज अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट।
1: ओके, और सवाल इसके बाद ये उठता है सर कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए क्या आपको खुद भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होना चाहिए, मतलब एक खिलाड़ी ही इस क्षेत्र में जा सकता है या जिसको शौक है वो भी जा सकता है, क्या कहेंगे?
2: जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब आपका पैशन है किसी खेल के लिए या स्पोर्ट्स के लिए तो ज़रूरी बात है या तो आप उसको एज ए खेल आपने उसको खेला या फिर आप उस खेल को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी ही हों, आप उसके लिए खेल के लिए आप उसको खेल को फॉलो कर रहे हैं तो ये जब आपके अंदर ये वाला जो पैशन है कि मुझे ये स्पोर्ट्स में जाना है और मुझे स्पोर्ट्स के ये जो मैनेजमेंट स्किल्स मुझे देखनी है या मुझे मैनेजमेंट में जाना है तो दिस इज़ द ओनली क्राइटेरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड गेट इन टू दिस फील्ड एंड इट इज़ अ वेरी अपब्रिंगिंग एंड वेरी यू इट्स न्यू एरा न्यू फील्ड एंड यू कैन एक्सप्लोर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज आई कैन से दैट।
1: जी, तो रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की। डॉक्टर प्रवीण सरोहा हमारे एक्सपर्ट हैं, आप फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आपसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, खेल के मैनेजमेंट में करियर के विषय में आप कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स हों या फिर हाल ही में हुआ फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल, स्टेडियम में हजारों की संख्या में दर्शक आपने देखे होंगे और ग्राउंड पर दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी और एक शानदार स्पोर्ट्स इवेंट जिसे सक्सेसफुल बनाने के लिए यकीन मानिए महीनों की नहीं, मुझे तो लगता है बरसों की मेहनत होती है। और इस पूरे आयोजन को कौन संभालता है, कौन प्लेयर्स को, टीम्स को, स्पॉन्सर्स को, दर्शकों को, इन सब के बीच में एक बेहतरीन तालमेल जो है वो बनाता है। और यही काम करते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोग। जी हाँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की दुनिया यही है। और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर कैसे बनाया जाए, इसी विषय पर रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सरोहा हैं, जो कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर सरोहा, आपसे अगला सवाल हमारा यही होगा कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, कैसे दाखिला लिया जाता है इन सब में?
2: जैसा कि आपने अभी बताया कि राष्ट्रमंडल खेल अभी जैसे चल भी रहे हैं और हमारी जो टीम है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही है। और मैं दर्शकों को ये भी बताऊं कि 2030 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो भारत जो है आयोजन करेगा जी। और इसी के चलते हमारे जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं या जो भी हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इसमें अपना कैरियर को देख सकती है। 2030 के बाद भी मैं बताऊं कि हमारे जो भारत ने 2036 में जो ओलंपिक्स गेम्स की मेजबानी के लिए हमने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी सबमिट कर चुके हैं जी। और आने वाले जो उसके बाद एशियाड गेम्स हैं उसके लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य जो है तेज़ी से अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि योग्यता का सवाल है कि कौन इस कोर्सेज को, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज को कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं, दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसके जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज दोनों तरह के जो कोर्सेज अभी उपलब्ध हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस चीज़ को प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ये करा रही हैं। और अगर बात करते हैं ट्वेल्थ के बाद हमारे जो ट्वेल्थ के बाद कोर्सेज़ हैं उसमें BBA कोर्सेज़ हैं और BSc इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इनके लिए आपको ट्वेल्थ क्लास में किसी भी स्ट्रीम से आपने जैसे पास किया है उसके बाद आपको जो है यू हैव टू फिल द एडमिशन फॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन विल कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, एंड समहाउ दे विल आल्सो आस्क यू सबमिट योर प्रोफाइल। तो इसमें आप जो है अपना पैशनेट स्पोर्ट्स के लिए आप हैं तो आप अपना अच्छा सा एक प्रोफाइल बनाएं और पीछे आपने जिन खेलों को फॉलो किया है या टेक्निकली जो आप जिन खेलों के बारे में जानते हैं उनको आप उसमें प्रोफाइल में आपने डाल सकते हैं जी। इसके अलावा जो है PG कोर्सेज हमारे यहाँ पर हैं, जो PG कोर्सेज में हमें एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है या फिर 2 साल की MBA प्रोग्राम है, MBA इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये दोनों कोर्सेज के लिए भी आपको जो है ग्रेजुएशन आपके पास हो किसी भी स्ट्रीम में और उसके बाद आपको कैट या GMAT के थ्रू आपको जो एक एग्ज़ामिनेशन पास करना पड़ता है जिसके बाद आपको जिस इंस्टीट्यूशन में आपने ये फॉर्म भरे है उस फॉर्म वो आपको इंस्टीट्यूशन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और शॉर्टलिस्ट करेगा और उसमें आप यू कैन परस्यू योर कैरियर, परस्यू योर स्टडीज़ इन द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट
1: जी। अमन नोएडा से सर एक सवाल पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं?
2: जैसा मैंने बताया कि एक साल का डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और ये आप अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये क्या ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो ये एक साल का डिप्लोमा, जैसे मैं बताऊं फॉर एन एग्जांपल IIM रोहतक इज़ गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर पैशनेट अबाउट स्पोर्ट्स फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट
1: जी। सिमरन का चंडीगढ़ से हम तक सवाल आया है और ये कह रही हैं कि क्या आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, कुछ खास सब्जेक्ट हमें लेने चाहिए 12वीं में, 11वीं, 12वीं में?
2: ऐसा कुछ नहीं, किसी भी स्ट्रीम में आकर आपने 12th पास किया है, आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज जो अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज को आप लोग ले सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चों में कोई ऐसा कुछ है, आप कोई भी स्ट्रीम से हैं आप ये कोर्स को अडॉप्ट कर सकते हैं।
1: जी, विवेक का भोपाल से सवाल आया है डॉक्टर सरोहा, और ये कहते हैं कि ठीक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो पता चल गई, पर आपके हिसाब से कौन कौन सी स्किल्स जो हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए खासी काम आएंगी?
2: जैसे मैंने बताया कि आप अगर किसी भी स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आप सबसे पहले तो आपको वो खेलों के लिए आप पैशनेट होना चाहिए, सबसे बड़ी स्किल्स तो मैं मानता हूँ यही है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपको स्पोर्ट्स मैनेजमेंट स्किल्स में एक्सेल करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में अगर आपका बहुत रुचि है या आपको उसकी अच्छी खासी नॉलेज है, तो आज की डेट में आज के नए इस दौर में डेटा एनालिस्ट का बहुत बड़ा रोल आ गया है, और खेलों में जो है डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि ये आने वाले समय में बहुत ज़रूरत है। दूसरा, अगर आप लॉ से अगर आपको लॉज डिफरेंट लॉज आपको नॉलेज है, तो अगर आप उस स्किल्स को अगर आप जानते हैं

0: तो इन स्किल के साथ भी आजकल लॉज का, स्पोर्ट्स के जो वेरियस लॉज हैं वो अगर आप जानते हैं या उनको आप में रुचि है तो उसमें भी आप एक्सेल कर सकते हैं। अदरवाइज और दूसरा स्किल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे इवेंट को कोई ऑर्गेनाइज करने का अगर आपको को अंदर ऐसा जज्बा है तो उस केस में भी आप जो है यू कैन एक्सप्लोर दिस फील्ड एज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट।
1: जी, करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है। डॉक्टर प्रवीण सरोहा जो कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं पूरे 2 बजे तक आपके सवालों के हर क्वेरी के जवाब देने के लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं वो है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT।

0: app now and watch for free.
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और आपसे कहना यही चाहती हूं कि हर जीत के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी का हाथ नहीं होता है, उसके पीछे होती है पूरी की पूरी टीम, कोचेस, फिजियो, ट्रेनर, ऑर्गेनाइजर्स और ऐसे ही पता नहीं कितने स्किल्ड प्रोफेशनल्स की मेहनत। खेलों की इस बहुत ही बड़ी दुनिया को ऑर्गेनाइज्ड और सक्सेसफुल बनाने में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो अगर आपके अंदर भी जुनून है खेल का, स्पोर्ट्स का और आपका हुनर है मैनेजमेंट का, तो आज की रेनबो हेल्पलाइन आप ही के लिए है, क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। डॉक्टर प्रवीण सरोहा जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं, फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में और आपके मैसेजेस हम तक आ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और फिलहाल अगला सवाल सर आपसे मैं यही करना चाहती हूँ कि इंडिया को आज स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कितनी ज़रूरत है?
3: जैसा कि हम अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि जो पिछले अगर कुछ सालों में अगर हम देखते हैं तो क्रिकेट एक ऐसा खेल था जहां पर आपको फुल जो स्टेडियम आपको पूरा फुल पैक मिला करता था। उसके बाद अब बदलते दौर में अब आप देखेंगे क्रिकेट के अलावा जो दूसरे जो खेल हैं वो अब अपने अपने पूरे स्पीड पर अपने पूरे चरम पर पहुँच चुके हैं। जैसे कि हम बात करें सॉकर लीग ISL है, वॉलीबॉल की लीग्स हैं, कबड्डी लीग्स हैं, टेबल टेनिस लीग्स हैं, तो इन सभी खेलों के आयोजन के लिए आपको कोई ना कोई ऐसे प्रोफेशनल्स की जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ने वाली है जो इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी आवश्यकता आन पड़ी है। दूसरा अगर मैं बताता हूँ कि कोई भी अब जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो भी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अब जो एक बिजनेस की तरह डील कर रही हैं, दे आर गिविंग मैक्सिमम टाइम, द मैक्सिमम रिसोर्सेज, एंड नाउ दे वुड लाइक टू इंक्रीज देयर रेवेन्यूज जनरेटेड आउट ऑफ दैम। तो कहाँ पर आपको जरूरत पड़ती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के लोगों के लिए, जो इनके जो खिलाड़ी जो खेल रहा है उसको एंडोर्समेंट, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं उनको एंडोर्स करना, उनके जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको साइन करवाना, या किसी भी इवेंट को आपको प्लान करना, उसके जितने भी जो फैंस हैं उनको एंगेज रखना, तो ये जो काम है ये आपको जो है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जो स्किल्स हैं ये आपको जब आप कोर्स करते हैं तो उसमें ये आप ये सारी चीज़ों को एक्वायर करते हैं। तो इसीलिए हमें आने वाले दौर में, आने वाले समय में इन सभी खिलाड़ियों, इन सभी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली
2: है। जी, हमारे बहुत से यूथ लिसनर्स हैं, मुझे लग रहा है उनकी दिलचस्पी जो है इस प्रोग्राम के टॉपिक पर जागृत हो रही है। तन्वी देहरादून से कह रही हैं कि अगर मैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सर कोई कोर्स कर लूँ तो इसमें सैलरी जो है एकदम बिगिनर्स की क्या क्या मिलती है?
3: ये बहुत ही ज़रूरी सवाल था, और क्योंकि हर कोई इंस्टीट्यूशन जो या कोई स्टूडेंट है वो ये ज़रूर ध्यान में रखता है कि आगे मेरे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और मेरी फ्यूचर ग्रोथ क्या होने वाली है। तो स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ, अगर आप डिपेंड करेगा कि आपके स्किल्स आपके कितने आप लोगों ने जो है एक्वायर करें हैं वाइल यू आर परसुइंग योर स्टडीज़, तो इनिशियली 5-6 लाख का आपको पैकेज इजीली आपको ऑफर कर दिया जाता है, बट बेस्ड ऑन योर वर्क एंड बेस्ड ऑन योर प्रोफेशनलिज्म यू कैन लाइक राइज अप टू लाइक 12-15 लाख पर एनम। तो इट्स ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी आई कैन से, आप इसको कोर्स को कर सकते हैं।
2: जी, राहुल का कानपुर से सवाल आया है कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में सरकारी नौकरी के भी अवसर होते हैं?
3: हाँ, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस जो ये डिग्री कोर्सेज करा रहे हैं, इसके साथ साथ आपको जो जॉब ऑफर्स हैं वो लीग्स जो हैं, जो क्योंकि वो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें तो आपको ऑफर कर ही कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, वो एज एन यंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बहुत सारी डिमांड रहती है इस चीज़ की, और वो बहुत आज की डेट में, आज के दौर में ये बहुत उन्होंने ये बहुत उनके कैरियर के लिए, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है कि ये इसमें भी जा सकते हैं।
2: जी, इंदौर से श्रुति का मैसेज आया है और वो कहती है कि अगर कोई स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कुछ इंटर्नशिप करना चाहे, मतलब पढ़ाई के साथ साथ, तो ऐसा कुछ होती है अपॉर्चुनिटी सर?
3: बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं इसको ऑफर कर रही हैं कि आपको इंटर्न्स, जैसे आफ्टर यू हैव फिनिश योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो बिफोर ज्वाइनिंग एनी बिग कंपनीज इन एज एन कैरियर यू कैन स्टार्ट विद एज ए इंटर्न, वाइल परस्यूइंग योर स्टडीज यू ऑल्सो ज्वाइन एज ए इंटर्न। लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज आर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।
2: जी, करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का सवाल है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सरोहा, जो कि फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ 2 बजे तक स्टूडियो में हैं। आपके सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। पर फिर बता दें, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या करें? पूछिए अपना सवाल व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि आज के दौर में करियर के जो एवेन्यूज़ हैं वो बहुत बदल चुके हैं। खेलों की दुनिया अब एक बहुत बड़े प्रोफेशनल इंडस्ट्री के फॉर्म में भी सामने आ रही है। क्रिकेट की बात हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, एथलेटिक्स हो, ई स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत जो है बढ़ रही है। ऐसे में करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की क्या संभावनाएं हैं, इसी विषय में बात कर रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन में। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सरोहा हमारे साथ हैं। आप फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और सर, आपसे अगला सवाल हमारा यही होगा कि करियर एवेन्यूज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में।
1: जैसा कि मैंने अपने श्रोताओं को हमने बताया कि जो सबसे जो आजकल का जो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आपको डेटा एनालिसिस वाला जो जॉब है वो बहुत ही एक प्राइमरी स्टेज पे है, मतलब अच्छी स्टेज पे है। आपके अंदर अगर कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिसमें आप स्टेटिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं तो उसमें ये एज ए स्पोर्ट्स डेटा एनालिस्ट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा जॉब है। दूसरा नंबर पे अगर हम बात करें तो आपको ऑपरेशंस का, मान लीजिए कि आप लोग कोई ऐसी स्किल्स आपके अंदर हैं जहाँ पर आप कोई टीम या इवेंट

0: मैनेजमेंट में कोई आपकी स्किल्स हैं, आप कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में आपकी क्षमता है, तो एज एन ऑर्गेनाइजर आप यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एंड दिस फील्ड एज ए कैरियर। और इसके बाद फर्दर बात करें तो आपको फैन एंगेजमेंट, या फिर आप बात कर सकते हैं ब्रॉडकास्ट में, आपको मीडिया में भी आपका जो है, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एज एन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड इन अ मीडिया। सो देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर यू कैन एक्सप्लोर, एंड टूडेज वर्ल्ड यू कैन हैव दिस एज ए न्यू न्यू स्पोर्ट्स इज कमिंग अप एज ए ई स्पोर्ट्स। सो ई स्पोर्ट्स में भी बहुत अभी चैलेंजेस हैं जो इंडिया में अभी जो हैं, और आप अगर इसको आप एडॉप्ट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें अपना कैरियर को एक्सेल कर सकते हैं।
1: जी, मनोज का जयपुर से सवाल आया है कि स्पोर्ट्स मैनेजर और टीम मैनेजर में क्या डिफरेंस होता है सर?
0: स्पोर्ट्स मैनेजर और टीम मैनेजर इट्स लाइक वन ऑन सेम थिंग। आप जब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट करके जब आप किसी टीम के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो वो आप को एक पोजीशन मिल जाती है जिसमें आपको टीम मैनेजर कहने लग दिया जाता है। मैनेजमेंट में वही है, इट्स अ बैकबोन ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी टीम, एनी क्लब। आप उसको पीछे पूरा सपोर्ट करते हैं, और उसमें आप जितनी आपके मैनेजमेंट स्किल्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गिविंग गुड स्टेडियम, गुड प्लेस टू प्ले, गुड टाइम टू प्रैक्टिस, सो ऑल दिस थिंग इट कम्स अंडर द टीम मैनेजर।
1: जी, एक सवाल आया है, मुझे लग रहा है बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा। अर्जुन है चंडीगढ़ से, सवाल पूछते हैं कि क्या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सर स्ट्रेसफुल करियर होता है? किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इसमें?
0: हाँ, जैसा मैंने पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये जिसके लिए पैशन है स्पोर्ट्स में, वो उसके लिए तो ये चैलेंजिंग हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी खेल के लिए पैशन है, पैशनेट हैं और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसमें अपना पर्सनल मैं अपना अनुभव बताऊंगा कि जिस परिवार से हम लोग मैंने मैंने मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर इस खेलों का बहुत ज़्यादा नहीं था, पर उसमें मेरा पैशन जो था, मुझे उस चीज़ को मैंने पकड़ के रखा और अपने पैशन को पकड़ के रखा, और उसी में मैंने अपने इसी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में ही मैंने अपना कैरियर को बनाया। तो आज मुझे लगता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव या कुछ नहीं, बल्कि मुझे तो समय का ही नहीं पता चलता कि कब समय पूरा हो गया, और मुझे तो अभी और बहुत सारे काम पूरे करने।
1: जी, अच्छा, अब डॉक्टर सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खेलों में आपकी रुचि थी, क्या खेलते थे आप या खेलते हैं?
0: जी, मैंने अपना जब कैरियर स्टार्ट किया स्कूल टाइम में, तो मैं 100 मीटर स्प्रिंटर था, और उसी में मैंने अपने आप को जो है प्रोफेशनली आगे बढ़ाया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कोर्सेज रहे जिसको मैंने प्रोफेशनली उसको कंप्लीट करके, और आगे अब तक भी मैं उसी चीज़ को फॉलो करते हुए, बिकॉज़ हमारी फील्ड ऐसी है और हम लोग इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में हैं, स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को फॉलो किया जाता है, तो अभी भी हम लोग उसी वर्कआउट को जो हम लोग अपने जब स्टूडेंट्स थे जब उसको रखा करते थे, उसी को हमने मेंटेन करते हुए आज भी हमने उसी को मेंटेन किया हुआ है।
1: तो मतलब अगर मैं डेली रूटीन की बात करूं तो कितना समय देते हैं आप अपनी?
0: तकरीबन आज भी हम लोग जो है तकरीबन 1 सवा घंटा या 1.5 घंटे की हम लोग जो है वर्कआउट अभी भी हम लोग करते हैं इस उम्र में आकर भी।
1: जी।
0: और जो अपनी यंग जनरेशन को है, मैं यही यही बोलूँगा कि आप अगर इसको एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को फिट एंड फाइन रखिए, ताकि आप जो है आगे जो आप जिनको ये जिस कंपनी या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे तो वो आपको देख के प्रोत्साहित हों।
1: एब्सोल्युटली, तो डॉक्टर सरोहा को देखिए मुझे लग रहा है इट फिट है एकदम। और साथ ही साथ एक नई बात जो हम जान रहे हैं कि अगर आप पैशनेट हैं खेलों के लिए तो तब स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपके लिए बहुत बढ़िया करियर होगा, क्योंकि ये आपके लिए काम नहीं है जो आपको स्ट्रेस देगा, ये तो आपका पैशन है, और पैशन जहाँ जुड़ जाता है वहाँ स्ट्रेस का कोई नामो निशान नहीं होता। करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का विषय है। डॉक्टर प्रवीण सरोहा फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे सवाल जो आपके पहुँच रहे हैं हम तक, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: रेनबो हेडलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि आपको स्पोर्ट्स से प्यार है लेकिन प्लेयर आप बनना नहीं चाहते, आप खेल को ऑर्गेनाइज करने की योजना बनाने में आपका इंटरेस्ट है या फिर टीम्स को मैनेज करने में, खिलाड़ियों के साथ काम करने में और स्पोर्ट्स इवेंट को सफल बनाने में आपका इंटरेस्ट है तो शायद स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एज अ करियर आपका लिए हो सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए करना क्या होगा, यही सवाल अगर आपके भी हैं तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिल रहे हैं डॉक्टर प्रवीण सरोहा से, जो कि आज रेनबो हेल्पलाइन में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एज एन एक्सपर्ट, और आप फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर सरोहा, सवाल हम तक ये पहुंच रहे हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का आपने कोर्स कर लिया है, उसके बाद वैरायटी ऑफ फील्ड्स क्या हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं?
1: जैसा कि हम लोग अभी चर्चा भी कर रहे थे कि हमारे क्या क्या हमारे पास एवेन्यूज़ हैं या कौन कौन कौन सी फील्ड्स में हम लोग जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आर यूजी और पीजी कोर्सेज, तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं हम तो स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जहां पर हम लोग जा सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे मैंने बताया था पहले भी। दूसरा जो है आपका स्पोर्ट्स मार्केटिंग इज अनदर फील्ड एंड स्पोर्ट्स ब्रांडिंग इज अनदर फील्ड विच इज लाइक इट्स यू कैन अडॉप्ट एज एन अ कैरियर। स्पोर्ट्स मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आप देखते हैं कि जो जो जो कपड़े पहन के जो आप जो एथलीट भागते हैं या खेल खेलते हैं उसमें कितनी वेराइटीज़ आ चुकी हैं। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी मैनेजमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट फील्ड, और जर्नलिज्म अगर किसी को है, अगर किसी के अंदर पैशन है जर्नलिज्म का तो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अनदर फील्ड। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मैनेजमेंट ये भी एक बड़ा अच्छा कैरियर एवेन्यू है जहां पर आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, ये भी आप देखेंगे कि आज की डेट में हर जगह टेक्नोलॉजी जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आपको हर जो इक्विपमेंट है वो टेक्नोलॉजी से उसको ज़रूरत है उसको अपग्रेड करने के लिए। इसके बाद आप जो है छोटे छोटे शहरों में आप देखते हैं कि रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट्स क्लब्स हैं जहां पर आपको ये मैनेजमेंट्स जो पीपल हैं जो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। स्पोर्ट्स मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फील्ड जहां पर आप अपने कैरियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स रिटेल, स्पोर्ट्स एजेंसी, स्पोर्ट्स टूरिज्म, स्पोर्ट्स मार्केटिंग एंड रिसर्च, देर आर लॉट ऑफ फील्ड्स। आप पैशनेट हैं, अगर आप काम करने में आपका जज्बा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत आने वाले समय में बहुत ही एक अच्छी फील्ड रहेगी।
0: वंडरफुल। दीक्षा का नागपुर से सर सवाल है कि क्या फिजिकल एजुकेशन में हमने डिग्री की है उसके बाद भी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाया जा सकता है?
1: जैसा मैंने बताया था कि आपको किसी स्पेसिफिक फील्ड की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए तो आप चाहे फिजिकल एजुकेशन में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री, आपका बेसिक्स जो आपको ज़रूरत है जिसमें आपको आप उस गेम को फॉलो करते हैं और उसमें पैशनेट हैं स्पोर्ट्स में और आपको मैनेजिंग स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द यूजी और पीजी कोर्सेज।
0: साक्षी दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं डॉक्टर सरोहा, और वो कहती हैं कि क्या सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी जो है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाने के लिए उपयोगी होती है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको ये एज मिलता है अगर आपके पास ये सब सोशल मीडिया और जो नेटवर्किंग के लिए आपके पास स्किल्स हैं तो आप अगर इसको कैरियर को अडॉप्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो दूसरे जो आपके जो साथी रहेंगे उनसे आपको एज रहेगी, क्योंकि आज का ज़माना आप जैसे जानते हैं कि सोशल मीडिया और नेटवर्किंग का ही है, तो यू डेफिनेटली यू विल गेट एन एज ऑन दिस।
0: प्रिया का दिल्ली से ही सवाल आया है, सर इस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान जरूरी है?
1: गुड कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से कि वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी, बट हाँ जरूरी बात है कि आज आप जानते हैं कि सभी जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं आपको जब आप एसोसिएट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको बाहर के देशों के भी खिलाड़ियों के साथ आपको मौका मिलता है काम करने का, और आप खुद भी एज एन स्पोर्ट्स मैनेजर आप बाहर जाते हैं डेफिनेटली आपको अच्छी स्किल्स आनी चाहिए और इंग्लिश का जानना और समझना तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज़रूरी है ही।
0: जी, एक और सवाल मुस्कान का आया है जयपुर से, और वो पूछना चाह रही है सर आपसे कि क्या स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स कमेंट्री एक दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र हैं?
1: नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूं, क्योंकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म जरूर हम बात कर सकते हैं कि आपको अगर आप हैं इसमें पैशनेट जैसे मैंने बताया तो यू कैन वर्क इन द दिस फील्ड, बट कमेंट्री इज़ अनदर पार्ट। आपको कमेंट्री के लिए अगर आपको वो स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर वो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट आपको वहाँ पर आपको कमेंट्री करनी है, फैन को एंगेज करके रखना है, तो वो स्किल्स आपके पास आप तभी आ पाएंगी जब आप उस गेम को फॉलो करते होंगे आप, या उसके रूल्स रेगुलेशंस के बारे में आप जानते होंगे।
0: जी, शमीम का गाजियाबाद से हम तक सवाल आया है, कहते हैं मुझे खेल तो बहुत पसंद है लेकिन पढ़ाई पसंद नहीं है, इसलिए मेरे बहुत अच्छे नंबर नहीं आते, तो क्या मुझे किसी कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको खेल में अगर इंटरेस्ट है और पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, मैं तो कहूँगा कि आप इसी को एज एन प्रोफेशन, एज ए को कैरियर आप बनाइए। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, थोड़ी सी आपकी जज्बा चाहिए काम करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको ये काम करने का अवसर जरूर मिलेगा इसमें किसी न किसी फील्ड में।
0: जी, करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट रेनबो हेल्पलाइन में आज का हमारा यही विषय है। डॉक्टर प्रवीण सरोहा, फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट, हमारे साथ उपस्थित हैं।

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आकृति। और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि आप भी मानते होंगे कि जब जुनून और प्रोफेशन एक साथ मिल जाएं तो काम सिर्फ काम नहीं होता है बल्कि ज़िंदगी का सेलिब्रेशन बन जाता है। डॉक्टर प्रवीण सरवान भी बार बार इसी बात को कह रहे हैं। और अगर आपका जुनून है स्पोर्ट्स और खेलों की दुनिया को बहुत करीब से समझने की चाहत भी आपकी है और साथ ही साथ आपके अंदर है लीडरशिप या फिर मैनेजमेंट का गुण, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग करियर हो सकता है। करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हो रही है आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण सरोहा हैं, फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्ट। डॉक्टर सरोहा, अगला सवाल आपसे मेरा यही है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में भारत में स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं?
1: जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो बहुत अच्छे जो मैनेजमेंट के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIM जो हम बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसमें रोहतक में जो है एक कोर्स है एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। बहुत अच्छा कोर्स है और आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि इसको कैसे हम लोग क्या क्या जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने जैसे डिस्कस किया, आप उसमें फर्दर डिटेल में भी जाके आप चेक करा कर सकते हैं। इसके बाद IIM मुंबई इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग दिस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट विद जॉइंटली प्रोग्राम विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोग्राम को रन कर रही हैं। तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट्स एंड चेक द वेरियस एलिजिबिलिटीज़ इन। आप किसी भी जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोर्स करने के बाद अपने खुद के स्टार्टअप्स आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है कुछ ऐसे आपको सॉफ्टवेयर्स जो हैं आपको बनाए जा रहे हैं कि जिसमें आपको खुद से जो है वो चीज़ें आप इंफॉर्मेशन फीड करते हैं कि जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको कहाँ जो आपके कस्टमर्स हैं उनको ये बताएं कि कहाँ पर खेला जा सकता है, कहाँ पर कौन सा ग्राउंड खाली अवेलेबल है। तो यू कैन गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू द योर कस्टमर्स एंड वो उसको फिर वो प्लेस ऑफ या वेन्यू ऑफ द प्ले या वेन्यू ऑफ द गेम कहाँ पर अवेलेबल हैं वो सब चीज़ें आप अपनी कोई ऐप डेवलप करा करके आप उस चीज़ में अपने कस्टमर्स को ये दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे और भी मैं बताऊँ आपको, यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टोर, जैसे कोई आपका स्पोर्ट्स का कोई स्टोर है आप उसमें आप अपने आप को डाल सकते हैं, या फिर आपके और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आप अपने स्टार्टअप्स के साथ ये काम कर सकते हैं। वेन्यू बुकिंग है, फैन एंगेजमेंट है, ये सारी काम आप खुद से अपने स्टार्टअप्स के साथ कर सकते हैं।
0: एक सवाल हम तक आया है, नाम क्या है इनका, रोशन। हाँ, रोशन कहते हैं मैं बिहार के किसी गाँव में रहता हूँ, सर क्या ये कोर्सेज किसी सरकारी कॉलेजेस में भी होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फीस नहीं दे सकता।
1: हाँ, जैसा मैंने बताया कि अभी जो है आपके जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो IIMs हैं, उनमें ये कोर्सेज चल रहे हैं। और आपके आपके अपने एरिया में भी आप देखेंगे कि कोई ना कोई ऐसे फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के छोटे छोटे जो कोर्सेज हैं ज़रूर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। आप उनको करिए, क्योंकि वहाँ पर आपको फ़ीस का ज़्यादा क्राइटेरिया मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ीस आपकी वहाँ पर होंगी। पर ज़रूरी बात है कि वहाँ पर आपके एरिया में जहाँ रह रहे हैं आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा आपको।
0: जी जी। और मोहित मेरठ से हमें पूछ रहे हैं कि सर ये इंटर्नशिप इस फील्ड में करने के लिए कहाँ करें?
1: जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज जो हैं आजकल लीग्स, जैसे मैंने बताया ISL है या फिर आपकी क्रिकेट लीग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके कबड्डी, टेबल टेनिस, ये सब, इन सभी को एज एन मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो ये ऑफर करते हैं आपको इंटर्नशिप जब आप अपना कैरियर कर, जब आपने स्टडीज़ कर रहे होते हैं या स्टडीज़ कम्प्लीट करने के बाद भी ये जो है आपको ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो आप लोग ये इनमें इंटर्न करने के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं आप जब ये कोर्स को कम्प्लीट कर लेते हैं।

0: जी, और आखिर में डॉक्टर सरोगा आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हमारे यूथ को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो खेलों से भी प्यार करते हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं। चलते चलते आखिरी बात,
1: ये मेरा सभी लोगों से, मेरा जो मेरे सारे श्रोताओं से यही मेरा वो रहेगा कि इसको, ये एक जो फील्ड है ये, इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया अभी तक। इसको एक ऐसी फील्ड माना गया कि ये सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही है, बट नहीं, अब जो है खेल एक इंस्टीट्यूशनल हो गया है और इसमें बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारे कैरियर प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। इसको मैक्सिमम एक्सप्लोर कीजिए और इसमें एज एन मैनेजमेंट आप यू कैन बी एज एट द वेरियस लेवल यू कैन ज्वाइन दिस एज एन ए कोर्स। तो मेरी ये सभी लोगों से, सभी यूथ से मेरा ये आग्रह है कि इसको मैक्सिमम इसको एक्सप्लोर करें और इसको कोर्स को ज्वाइन करें।
0: जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सरोगा फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ रेनबो हेल्पलाइन में आखिर में मैं आकृति खंडूरी भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर खेल आपका जुनून है और मैनेजमेंट आपका हुनर है तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपके लिए आपके करियर की नई इनिंग्स हो सकता है। आज के दौर में खेलों की दुनिया बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड हो रही है और इसी के साथ एक्सपैंड हो रही है इस फील्ड में करियर की अपॉर्चुनिटीज़। इसीलिए टैलेंट पर भरोसा रखिए, नई स्किल्स सीखिए और अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार करने के बजाय उन्हें तलाशिए। करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी सुन रहे हैं आप और लीजिए प्रस्तुत हैं 2 बजे के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। सिक्किम राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉ. APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड में मानसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलैंग जिले में नामसंग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुरुआत की गई। कनाडा के ओंटारियो में आयोजित स्क्वैश विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील और नीदरलैंड को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और मैं हूँ दिल्ली की चाशनी कुरी सृजन, लेकर आई हूँ कार्यक्रम आशियाना। आज बात करेंगे कामकाजी माता पिता और बच्चों के लिए समय की कमी। देखिए, हम सभी जो हैं आज के इस समय में कामकाजी हैं, पेरेंट्स जो हैं वो ऑफिस जा रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या घर पर मस्ती कर रहे हैं? हमेशा तो नहीं, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में माता पिता अपने परिवार के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की माने अक्सर उनकी शिकायत होती है कि बच्चों के साथ उनका समय कम पड़ जाता है, और जब वो अपने कामकाज से, अपने ऑफिस से घर वापस आते हैं तो बच्चों पर चिल्लाना झल्लाना, उनके साथ कुछ ऐसा कि पढ़ लो, या फिर बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है बातचीत होती है, लेकिन क्या वो बातचीत सकारात्मक है? वो कौन सी दिशा में जा रही है? कैसे इस रिश्ते में वो मिठास वापस आ सकती है? क्या क्या किया जा सकता है, इस पर आज बात करते हैं। तो आप क्या कहते हैं? यदि आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की फ्रिक्वेंसी से। न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब जैसे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमसे जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है आशियाना और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली के चाशनी गुड़ सृजन। जी हाँ, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में माता पिता अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अक्सर सबसे कीमती चीज जी हाँ टाइम, समय ही कम पड़ जाता है। क्या कम समय का मतलब है कम प्यार? क्या कुछ छोटे छोटे पल रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। चलिए देखिए, सुबह की शुरुआत होती है जल्दी ऑफिस भागने से, ट्रैफिक, आपको स्कूल पहुंचाना है, अपने ऑफिस पहुंचना है, ऐसे में बच्चों के साथ बैठकर काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब देखिए ना, आपको क्या लगता है कि मम्मी पापा जब ऑफिस से वापस आएंगे तो मोबाइल मिल जाएगा? लेकिन वहाँ अगर मोबाइल को साइड कर दिया जाए, 20 से 30 मिनट तो अगर आप मोबाइल देख रहे हैं उसे साइड कर दीजिए और अपने बच्चों के साथ बिताइए क्वालिटी टाइम। और शुरुआत कैसे की जा सकती है? आप एक स्माइल दीजिए रोज़ के पलों में जब मिल रहे हैं, मुस्कान देकर बाय कीजिए, हंसी के साथ वेलकम कीजिए, आईज़ के साथ इंटरेक्शन कीजिए, गले लगाना, प्यार से छूना, जैसे पॉजिटिव जो संदेश हैं, जो पॉजिटिव हम फीलिंग्स कहते हैं, उनके साथ अपने बच्चों के रिलेशनशिप को और बेहतर बनाया जा सकता है। छोटे बच्चों को जब भी नहलाते हैं तो कई बार गुदगुदा देते हैं ना, वही बात उनके जहन में बस जाती है कि मम्मी पापा प्यार तो करते हैं। और देखिए, अगर पेरेंट्स की भी बात करें, जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो उन्हें होता है कि भाई बहुत से काम हैं, डिनर भी बनाना है, कल की भी तैयारी है, लेकिन इस बीच बच्चों का होमवर्क, बच्चों ने आज क्या किया, उस पर भी ध्यान देना है। लेकिन बच्चे तो फुल ऑन मस्ती में रहते हैं और शिकायतें तो तौबा, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी उधेड़ बुन में सबसे ज़्यादा जो थक जाती है वो पता है कौन है? आपकी मम्मा। सुबह से शाम तक ऑफिस में, सुबह भी तो खाना बनाकर गई है और शाम को आकर भी करना है, पापा भी वहाँ हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, पेरेंट्स सभी से कि देखिए ये रिश्ता आपका है, छोटे छोटे बदलाव करके देखिए आपको बड़ा फर्क नज़र आएगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आप सुन रहे हैं FM रेनबो आकाशवाणी 102.6 की फ्रीक्वेंसी से, कार्यक्रम है आशियाना। देखिए, बात कर रहे हैं जिस रिलेशनशिप की, ये बड़ा ही नाजुक है, वर्किंग पेरेंट्स और किड्स, बच्चे। तो देखिए, अब इस रिश्ते में जो चीज़ें करनी है वो ये है कि कभी तो आपको प्यार दिखाना है, लेकिन कभी आपको जो

नहीं कर कहना है, आपको कहना है यस यू कैन डू इट, हाँ आप कर सकते हो। तो चलिए कुछ शुरुआत करते हैं। दिन में एक टाइम तो साथ में खाना खाएंगे, मींस बच्चों के साथ आपको एक टाइम का तो डिनर, चाहे आप अगर लंच में, मॉर्निंग में ही सही, एक टाइम साथ खाने का नियम बनाइए और बच्चों की बातों को ध्यान से सुनिए। और बच्चे भी अगर समझ सकते हैं, अब वे बड़े हो गए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप भी पेरेंट्स की सिचुएशंस को समझिए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए। सोने से पहले जब हम अपने अपने मोबाइल लेकर बेड्स पर होते हैं, तो कोशिश कीजिए बेड को रख दीजिए साइड में और वो क्वालिटी टाइम जो आपके पास हाफ आवर है, 1 घंटा है, उसे अपनी फैमिली के साथ बिताइए। और छुट्टी के दिन क्या करना है, जब होगा वीकेंड, अपनी फैमिली के साथ एक्टिविटी कीजिए। हमेशा कहीं घूमने नहीं जाना है तो भी सही, एक्टिविटी कीजिए, कैरम खेलिए, इंडोर गेम्स बहुत सारे हैं जो हम अपने टाइम पर भी खेला करते थे, तो शुरुआत कीजिए उनसे। और ऐसा करते हैं, एक रूम बना लेते हैं जहाँ पर नो मोबाइल जोन है, जी हाँ उसके बाहर ही लिख दीजिए नो मोबाइल जोन। वहाँ पर ना बच्चे ना पेरेंट्स, कोई भी मोबाइल लेकर नहीं जा सकता है। वो आपका बेडरूम भी हो सकता है, वो आपका डिनर टेबल भी हो सकता है। तो शुरुआत कीजिए, देखिए रिजल्ट मिलेगा।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना दिल्ली की चाशनी कुरे सृजन के साथ। और अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे 3 से 4 रेडियो डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर कुलदीप ठाकुर, जो कि हेड एंड नेक सर्जन है। बात करेंगे स्पेशल ऑन हेड एंड नेक कैंसर डे पर। इसके बाद समय रहेगा 4:02 पर आपके लिए अल्फा जिन प्रस्तुत करने का। इस कार्यक्रम को मैं लेकर आऊंगी और मेरे साथ होंगी एक यूथ स्पीकर आकांक्षा। बात करेंगे बुक्स इन द डिजिटल एज, व्हाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। सिटी लाइट्स लेकर आएंगी 5:02 पर रेशमा, और नीरजा आपके लिए करने वाली है मैसेज मसाला मिक्स। तो सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो। और देखिए ये जो रिश्ता है जिस पर आज हमने बात की है, पेरेंट्स का, वर्किंग पेरेंट्स का और बच्चों का, इसमें जगह है तो प्रेम की, प्यार की और एक दूसरे के प्रति संवेदना रखने की। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स आइडल हैं और पेरेंट्स के लिए तो उनका, उनके बच्चे ही उनका पूरा जहां है। बच्चों को चीज़ें चाहिए, महंगे महंगे खिलौने नहीं चाहिए, वो जो चीज़ चाहिए ना वो आपके पास है, आपका प्यार, आपका टाइम, आपकी बातचीत। तो प्रयास कीजिए और सकारात्मक दिशा में अपने इस खूबसूरत रिश्ते को ले जाइए।

देखिए बच्चों, ऐसे ही नहीं पेरेंट्स को आपका फर्स्ट टीचर कहा जाता है। जो भी ये सिखा रहे हैं ना, वो आपके भले के लिए ही है, तो सीख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर तो सभी का है। और माना जाता है ना, हम मिलेनियंस जो है वो बेस्ट पेरेंट्स प्ले कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आपका ये रिश्ता ऐसे ही मजबूती से खिलता रहे, ऐसी मैं सबके लिए विश करती हूँ। और अब आप सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए कि अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी, हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है, इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी, ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न, हमने पूछा था आपसे कि मोरुंग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर है, मोरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं की बहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
2: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
3: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमने पूछा था कैल पौध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैल पौध शब्द का क्या अर्थ है।
2: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पौध का अर्थ होता है उत्सव यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है।
3: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
3: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
3: जी तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
2: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीत में प्रस्तुति है, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: तुमसे कह रहा हूँ, देखिए, रखो, मुझे छोड़ दो। हाथ वाले कहने भी उतारो, मुझे छोड़।
2: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
5: नाथ,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
6: महात्मा,
5: प्रभु,
7: प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
6: वहाँ अंगुलीमाल है।
7: हाँ प्रभु।
6: वो बहुत बड़ा डाकू है।
8: हाँ, प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
6: जाएं।
8: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
6: हाँ प्रभु, ना जाएं, खतरा है। ना जाएं प्रभु, ना जाएं,
7: ना जाएं प्रभु।
9: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत?
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: जहाँ से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
3: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
4: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
3: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
4: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
3: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
2: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
3: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
2: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगतीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु।
3: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
5: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
3: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
5: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना

0: गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
1: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
0: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
0: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
0: जी अवश्य।
1: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
0: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
1: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुलके ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
2: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुलके चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
1: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुलके ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
0: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुलके। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
0: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
0: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
0: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही रामकथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
0: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं रामकथा और तुलसी की आत्मा के

0: विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
1: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर पुलके।
0: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
2: जी, उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
0: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
3: उनके शोध की विशेषता ये है कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
2: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुलके को जानने लगी।
3: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुलके का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
0: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
3: फादर कामिल बुलके ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डीफिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
2: डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं,
4: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
3: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
2: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुलके ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
3: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुलके बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे। इन भाषाओं के ज्ञान के कारण ही उन्हें शब्दकोश बनाने में बहुत सहायता मिली। कामिल बुलके की हिंदी सेवाओं के लिए 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में इस अद्भुत शोध शिल्पी, राम कथा अनुरागी, बहुभाषाविद और हिंदी भाषा के अनन्य सेवक का निधन हो गया। उनके मृत्यु शैया पर मात्र 2 पुस्तकें थीं, बाइबल और गोस्वामी तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। उन्हें दिल्ली में ही दफनाया गया।

0: 36 साल बाद वर्ष 2018 में पद्म भूषण फादर कामिल बुल्के का पार्थिव अवशेष दिल्ली से उनकी कर्मभूमि रांची लाया गया। उनके अवशेष को पूरे सम्मान के साथ रांची सेंट जेवियर कॉलेज में दफनाया गया।
1: महान शब्द शिल्पी और हिंदी साहित्य के इस पुरोधा फादर कामिल बुल्के बाबा को हमारा आभार सहित शत शत नमन।
2: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
3: जगबंधु,
2: चेतना
3: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर सुन रहे सभी श्रोताओं को अनुराधा का नमस्कार। मित्रों, कुछ रोग ऐसे हैं जिससे प्रभावित कुछ लोग ही होते थे, लेकिन जैसे जैसे रहन सहन खान पान बदला, वो बीमारियां आम हो गई हैं जिनका शिकार कुछ लोग ही हुआ करते थे। एक ऐसा ही रोग है कैंसर। आज है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे, तो आज इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। आज के विषय से जुड़ा अगर आपका भी है कोई सवाल तो आप हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर हैं 0112342108 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए। इधर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है उसे जुड़ा मेरा पहला सवाल है कि क्यों होता है हेड और नेक कैंसर? क्या वजह है कि हेड और नेक जो कैंसर है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है?
2: हमारे देश में हर साल जो नए कैंसर डायग्नोस्ड होते हैं उसमें से तकरीबन 22% जो नए कैंसर है वो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं।
1: जी।
2: तो काफी सारे हमारे कलीग्स हैं, हमारे सहपाठी लोग हैं, वो सब ये हमें पूछते हैं कि हेड एंड नेक कैंसर में आप कौन से कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हेड एंड नेक कैंसर से हमारा जो एक सिंपल वे में जो मतलब है वो है ईएनटी कैंसर।
1: जी।
2: तो ईएनटी कैंसर हमारे देश में इनफैक्ट मेल्स में सबसे कॉमन कैंसर है, लिप एंड ओरल कैविटी कैंसर। और जो 95% जो ईएनटी कैंसर होते हैं
1: जी,
2: वो तकरीबन एक तो तंबाकू, वो हो सकता है स्मोकिंग की फॉर्म में हो या फिर च्यूइंग की फॉर्म में, जैसे पान मसाला, जर्दा, सुपारी, ये सब जो लोग यूज कंज्यूम करते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अल्कोहल। सो ये दो जो अल्कोहल एंड टोबैको है 95% जो ईएनटी कैंसर है, पर्टिकुलरली माउथ कैंसर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
1: जी।
2: उसके अलावा माउथ कैंसर के लिए जैसे तीखे दांत है जो बार बार जीभ में लग रहे हों और उसकी वजह से जो जख्म बन रहा है जो तकरीबन 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण है। एडवांस एज में जब मैक्सिमम काफी लोग डेंचर यूज करते हैं, अगर वो डेंचर प्रॉपरली फिट मुंह में नहीं हो रहा है उसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन होती है।
1: जी।
2: सो वो भी एक इम्पोर्टेंट कारण है पर्टिकुलरली मुंह के कैंसर में।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत आपने जो शॉर्ट में बताया वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आगे आपसे विस्तार पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओं, हमारे जो अपने होते हैं जिनसे रात और दिन हमारे जुड़े होते हैं, हम चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। और आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए नंबर है 01123421082। व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए अपना शुभ नाम।
1: मेरा नाम है मैम अमित त्यागी, सभी को मेरा प्यार भर नमस्कार।
0: जी नमस्कार अमित जी, क्या सवाल है आपका?
1: जी मेरा सवाल ये है कि हेड और नेक कैंसर से बचने के लिए हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, जो एडवाइस है उसको फॉलो करें।
2: जी ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया
0: जी,
2: कि हमारे जो 95% जो हेड एंड नेक कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है, और उसका सिंपल और सिंपल और सिंपल कारण है टोबैको और अल्कोहल।
0: जी।
2: अगर हम टोबैको और अल्कोहल को अपनी जिंदगी से निकाल दें, इसके लिए कोई जगह ना रखें, तो हमारे जो कैंसर है वो अपने आप उनके होने के जो चांसेस है ना के बराबर है। इसके साथ ही आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो डाइट इम्पोर्टेंट है
0: जी,
2: कि डाइट में फ्रेश फ्रूट्स ज्यादा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा लें, या कलरफुल वेजिटेबल ज्यादा लें। इन सब में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कैंसर बनने में उसको रोक लेते हैं, कैंसर बनने को रोक लेते हैं
0: जी।
2: जो खाना है वो सिंपल खाना खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे होल व्हीट ग्रेन लेना चाहिए, ओट लेना चाहिए, नट्स लेने चाहिए, और दालें ज्यादा खाएं क्योंकि उनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है
0: जी।
2: और साथ में ही सफिशेंट पानी पिए, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और एक्सरसाइज करें। अगर इन सब का हम अपनी जिंदगी में पालन करते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से हेड एंड नेक कैंसर से बच सकते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम अपने खान पान को व्यवस्थित रखें, अगर वो संतुलित रहेगा तो जो हमारे अंदर कैंसर के डेवलप होते हैं बैक्टीरिया वो कम होंगे, मतलब गुंजाइश कम हो जाएगी,
2: कम होगी
0: जी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मैसेज आया हुआ है प्रकाश जी का, दिल्ली से लिख रहे हैं कि मुंह में अगर छाले ठीक नहीं हो रहे हैं तो कैंसर की जांच करवानी चाहिए क्या, ये जानना चाहते हैं।
2: बिल्कुल, जितने भी मुंह के अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं वो हमेशा एक छाले के रूप में ही बनते हैं, और शुरुआत जो स्टेज होती है उसमें पेशेंट को दर्द नहीं होती है। हमारे पास पेशेंट कब आता है, जब उसको छाले में दर्द होने शुरू हो जाए, दैट मीन्स वो ऑलरेडी काफी एडवांस्ड है
0: जी।
2: कोई भी मुंह का छाला जो तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा रह रहा हो और जो नहीं भर रहा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उनको इमिडिएटली जो भी उनके नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट है उनको दिखाना चाहिए। वो एक सिंपल ऑफिस बेस्ड जिसमें हम बैठ के हेडलाइट से देखते हैं और उसको ग्लव्ड फिंगर से फील करते हैं, तो जो कैंसर वाले छाले हैं वो फील करने में उंगली से जब हम फील करते हैं वो थोड़े हल्के से सख्त होते हैं एज कम्पेयर टू जो दूसरा नॉर्मल मुंह की चमड़ी होती है। और उसकी जो हम बायोप्सी लेते हैं वो एक सिंपल ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, इसको 2 मिनट लगते हैं, तो बायोप्सी से हमें 100% ये पता चल जाता है कि ये कैंसर है या नॉन कैंसर है
0: जी। तो बहुत सारी यहाँ पे चर्चा चल रही है श्रोताओं, आपको जागरूक करने के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई शिकायत है तो आप हमसे जुड़ चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ विशाल जी हैं मेरठ से, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विशाल जी। जी विशाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
3: यस मैम, नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को, नमस्कार
0: जी डॉक्टर साहब।
3: मैम आज बहुत दिन बाद कॉल लगी है।
0: अच्छा देखिए, सभी श्रोता लाइन पर होते हैं ना, तो ये सौभाग्य की बात होती है कि किसका कॉल लग जाए। बताइए क्या सवाल है।
3: हाँ जी मैम, मेरे जो है वो हुआ था, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हुआ था मेरे, तो उससे मैं मतलब लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया पैर और हाथ।
0: ओहो जी जी जी।
3: और उसमें जो है मेरे ब्रेन स्ट्रोक, मतलब कि हाथ भी काम नहीं कर रहा प्रॉपर वे से, और पैर भी तिरछा पड़ता है
0: जी।
3: सुन पा रहे हो डॉक्टर साहब?
0: जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, बताएं आप।
2: जी बताएं जी।
3: हाँ जी, तो सर अब जो है उसी बीच में तो मतलब दौरे वोरे से पड़े थे जब मेरा ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ था
0: जी,
3: तो उससे ही मतलब फिर ऑपरेशन हुआ मेरा। वो उन्होंने सिर की हड्डी निकाल के मेरी वो वहीं रख ली, सर्वोदय अस्पताल में हुआ था मेरा ऑपरेशन
0: जी,
3: हिसार में, तो वहीं पे उन्होंने वो हड्डी वड्डी रख ली सिर की, और फिर ये लगी मेरे में 2 महीने बाद लगाई, मतलब अक्टूबर में हुआ था 2021 में। और उसके बाद मैं मतलब डॉक्टर साहब मेरी जो है आंखों की रोशनी भी चली गई, अब मुझे दिख नहीं पाता कुछ भी।
0: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: जी आई थिंक देखो जो भी डॉक्टर ने इलाज किया होगा वो तो इनकी जो भी स्थिति भी उसको देख के किया होगा, जो भी इनके लिए अच्छा था। ये जरूर है कि ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं, हड्डी निकाल देते हैं ताकि जो दिमाग है उसमें जब सूजिश आए उसको एक्सपेंड करने के लिए रास्ता मिल जाए।

0: इसलिए वो ऑपरेशन करना जरूरी रहता है। अभी जो आपकी आंख की रोशनी गई है, इसके लिए आपको अपने जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन है उनको इमिडिएटली कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें काफी ज्यादा लंबे टाइम तक आप ऐसे रखोगे फिर वो ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन जो भी आपका इलाज करें उससे इमिडिएटली कंसल्ट करें।
1: जी, तो इनको आपने मार्गदर्शन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, कितने प्रकार के होते हैं कैंसर?
0: देखिए, जो हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करते हैं, इसमें मुख्यतः जो हमारी कंट्री में सबसे कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर। तकरीबन आप ये कह सकते हो पुरुषों में तकरीबन हर लगभग 20% जो नए कैंसर होते हैं वो सिर्फ मुंह के कैंसर होते हैं। मुंह के कैंसर के अलावा जैसे गले का कैंसर है, थ्रोट कैंसर जिसको हम बोलते हैं, लैरिंजियल कैंसर, फिर थायराइड कैंसर, सलाइवरी ग्लैंड कैंसर जैसे पैरोटिड ट्यूमर्स होते हैं, नोज एंड साइनस कैंसर, वो सारे जो कैंसर हैं ये हेड एंड नेक रीजन में ही आते हैं। और इन सब का एक अपना एक तरीका होता है ये जो किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर कोई भी, जैसे मैं आपको बताया मुंह में छाला है जो 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रहा हूँ, सिमिलरली जैसे थ्रोट कैंसर है, थ्रोट कैंसर मोस्टली जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है
1: जी,
0: या फिर आवाज खराब है जो तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया ठीक नहीं हो रही हो, या गले में दर्द हो रही है निगलते हुए स्वेलो करते हुए और वो कान में भी जा रही है, प्लस अगर किसी को कोई भी पेनलेस लंप है गले में, गांठ है जिसमें दर्द नहीं है और 2 हफ्ते से ज्यादा है, उन लोगों को इमिडिएटली अपने जो भी नियरेस्ट ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाके कंसल्ट करना चाहिए।
1: जी, क्योंकि डॉक्टर साहब जो शुरुआती दौर होता है उसमें तो लोग समझ ही नहीं पाते किस तरह से क्या लक्षण होते हैं इसके, जो ये डायग्नोज होने के बाद स्टेज भी अचानक से बढ़ जाती है, तो क्या लक्षण होते हैं जिस समय इसको समझ के तुरंत इलाज लिया जाए?
0: सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ENT कैंसर की है वो ये कि जो इनिशियल स्टेज में जब कैंसर आता है, ENT नहीं बल्कि सारे शरीर के जो कैंसर है अर्ली स्टेज में उनके जो सिम्टम्स है वो ज्यादा नहीं होते हैं
1: जी,
0: तो इसलिए पेशेंट हमारे पास आते भी नहीं क्योंकि पेशेंट को ज्यादा तंग भी नहीं करते हैं। और जो खासियत ENT कैंसर की है वो ये है कि जब भी हमारे पास पेशेंट को कुछ भी, जिनको जैसे मुंह में छाला ठीक नहीं हो रहा, आवाज खराब है 2 हफ्ते से ठीक नहीं हो रही हो, या गले में कोई गांठ है, फेस में गांठ है, ENT कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं होती है, जस्ट 5 मिनट का एक क्लिनिकल रिव्यू और क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्लस लैरिंगोस्कोपी, उसी से ही ऑलमोस्ट हमें ये पता चल जाता है कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन है ये सस्पिशियस है कि नहीं है
1: जी।
0: ENT कैंसर डायग्नोज करने के लिए आपको बहुत बड़े टेस्ट की जरूरत नहीं होती है,
1: मतलब शुरुआती जो दौर है उसी समय अगर जागरूक हो जाए हमारे श्रोता तो इतनी स्थिति खराब नहीं होती है जो आगे चलकर हो जाती है। आपसे हमारे एक श्रोता बात करना चाह रहे हैं, लाइन पर हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नाम बताएं अपना।
2: जी नमस्कार, हम पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
1: जी गौतम जी, बताएं क्या सवाल है आपका?
2: मेरा पूछना है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लोग जो हैं दांत में आर्टिफिशियल दांत लगा लेते हैं
1: जी,
2: उसके बहुत सारे कारण होते होंगे, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह, गाँव में डॉक्टर बैठे हैं वो लग चिपका देते हैं
1: जी,
2: तो मैंने सुना है कि वो जो चिपकाने वाली चीज है उससे भी कैंसर होता है, कृपया इस बारे में विस्तार से बताएं कि सच है या मिथक है।
0: जी देखिए, ऐसा अभी तक हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये बताया गया हो कि इस पदार्थ से कैंसर होने का रिस्क रहता है, पर जैसे कि हमने पहले भी बताया कि जो डेंचर यूज करते हैं लोग, अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं हो रहे हो और वो लूज हो, उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर जो चमड़ी है वहां की मैकोसा है उसमें इरिटेशन होती है, तो इवेंचुअली आफ्टर यू नो तकरीबन 6-8 महीने के बाद जब वो क्रॉनिक इरिटेशन रहती है उससे कैंसर बनने का रिस्क रहता है। तो इसलिए मेरे पास जो भी मरीज जो भी एल्डरली लोग आते हैं उनको मैं ये जरूर बोलता हूँ कि अगर जो डेंचर यूज कर रहे हैं 6-8 महीने या साल बाद रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को बोलें कि एक बार क्लोजली चेक करें उसके नीचे कोई घाव तो नहीं बन रहा है, सो उसमें कैंसर हो सकता है, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि पदार्थ से, इस तरह के पदार्थ से कैंसर होता हो।
1: जी तो ये जो मिथक है वो आपने दूर कर दिया, जो भ्रम की स्थिति लोगों की होती है। और डॉक्टर साहब लगातार हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि कार्यक्रम बहुत अच्छा है। हितेंद्र दास जी का है आसाम से हमारे पास, उनको कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हितेंद्र दास जी अगर आपका कोई सवाल होता तो आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और इस तरह के बहुत सारे मैसेज हैं जिनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। डॉक्टर साहब, किस तरह के कौन कौन से टेस्ट आवश्यक होते हैं कैंसर की स्थिति में?
0: देखिए, जब हम, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो ENT कैंसर है वो बहुत इजीली हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं जस्ट एक सिंपल 5 मिनट के एग्जामिनेशन के लिए
1: जी।
0: जब भी हमें कोई भी सस्पिशियस चीज

दिखती है। तो जैसे सपोज कोई गले में गांठ हो, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक सुई की जांच करते हैं, जिसको हम एफएनएसी बोलते हैं, वो करते हैं, क्योंकि एक बहुत बेसिक टेस्ट है, इजीली ओपीडी में हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे अगर किसी को घाव है, मुंह पे घाव है, अल्सर है, या गले में छाला है, तो उसकी हम बायोप्सी करते हैं, जिसको हम ऑफिस बेस्ड बायोप्सी करते हैं, जो कि आजकल हम लोग मोस्टली बिना बेहोश किए सुन करके ही ओपीडी में कर पाते हैं।

0: ट्यूमर फैल गया है।
1: जी
0: सो हमारे पास अभी तक ऐसे कोई भी साक्ष्य या एविडेंसेस नहीं है जिससे ये प्रूव हुआ हो कि बायोप्सी करने से या एफएनएसी करने से ट्यूमर फैलता है। बल्कि जितनी जल्दी हम बायोप्सी और एफएनएसी से डायग्नोसिस बना सकते हैं उतनी जल्दी हम उसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी ये एडवाइस करता है कि आप बायोप्सी करवाएं या एफएनए कराएं तो वो तुरंत इमिडिएटली करना चाहिए ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके।
1: जी डॉक्टर साहब, ये किस तरह से तय होता है कि स्टेज कौन सी है? क्योंकि देखा जाता है कि बहुत जो एक्सट्रीम की स्थिति हो जाती है अगर उस स्टेज पर डायग्नोज होता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
0: तो जब हम लोग पेशेंट को एग्जामिन करते हैं अपने ओपीडी में देखते हैं तो हमें काफी हद तक ये पता चल जाता है कि जो ट्यूमर है उसका साइज क्या है और कौन कौन सी जगह को ये इन्वॉल्व कर रहा हो, प्लस नेक में जो गांठें होती है गले में जिसको लिम्फ नोड बोलते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है।
1: जी
0: तो ये मोस्टली हमें क्लिनिकली पता चल जाता है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद मोस्टली आपने देखा होगा डॉक्टर बोलते हैं या सीटी स्कैन कराओ या एमआरआई कराओ या पेट स्कैन कराओ। सो उससे हमें ये मालूम पता चलता है कि जैसे कोई भी जैसे मुंह में कोई छाला है तो हमें दिख रहा है कि छाला यहाँ पे है, लेकिन वो कितना डीप अंदर तक गया है वो हमें सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन के माध्यम से पता चलता है।
1: जी।
0: तो मैं आपकी एक और यहाँ पे हमारे समाज में जो भ्रांति फैलाई गई है कि पेट स्कैन नहीं करना चाहिए, पेट स्कैन से ट्यूमर बढ़ता है, तो ये प्योरली एक तरह की कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। पेट स्कैन से हमें ये मालूम चलता है, पेट स्कैन से हम डायग्नोज नहीं करते हैं ट्यूमर। पेट स्कैन से हमें ये बताता है कि कहाँ पे जो सेल्स हैं शरीर के वो बहुत ज्यादा ग्रो करे, जैसे कैंसर सेल्स है वो बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं इसलिए वो पेट स्कैन पे चमक जाते हैं।
1: जी
0: है ना, अगर ऐसे कोई और स्पॉट्स इन्फेक्शन की वजह से भी मतलब वहां पे वो ग्लो करता है। तो पेट स्कैन हम इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि अगर कोई मुंह का ट्यूमर है वो गले में फैला है या शरीर में कहीं और जगह फैला हो, या कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा ट्यूमर भी शरीर में कहीं पे होता है।
1: जी
0: ठीक है, तो वो डायग्नोज करने के लिए उसे हमें अल्टीमेटली ये स्टेज का पता चलता है कि जो ट्यूमर है और गले में गांठ और शरीर में कहीं और फैला है उस हिसाब से हम फर्दर स्टेजिंग करते हैं, जिसको स्टेज वन से लेके हम स्टेज फोर सी तक जो है ना इसको फर्दर स्टेजिंग करते हैं। तो जो भी अर्ली स्टेज जो कैंसर्स होते हैं वो जनरली सिंगल मोडलिटी ट्रीटमेंट से हम लोग ट्रीट करते हैं या सर्जरी या रेडिएशन के माध्यम से। जो एडवांस स्टेज होते हैं जैसे स्टेज थ्री, स्टेज फोर या स्टेज फोर बी होता है उसके हम कंबाइंड मोडलिटी करते हैं जिसमें या तो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देते हैं या सर्जरी उसके बाद कीमो और रेडिएशन देते हैं। जो स्टेज फोर सी होता है उसका मतलब है कि जो ट्यूमर है वो ऑलरेडी शरीर में कहीं और जगह फैल चुका है।
1: जी।
0: तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें सिर्फ हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। पैलिएटिव मींस कि उनको हम ठीक नहीं कर पाते हैं उन पेशेंट्स को, उनकी जितनी जिंदगी बची होती है उसको हम कैसे बेहतर बनाए।
1: राइट जी।
0: तो उसमें जैसे अच्छा न्यूट्रिशन, पेन मैनेजमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इम्प्रूव करें उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के अलावा मेडिसिन से भी इलाज संभव होता है?
0: जो ईएनटी कैंसर्स होते हैं उसमें जो कीमोथेरेपी होते हैं वो ज्यादा असर नहीं करता है। सो कीमोथेरेपी हम लोग बहुत सिलेक्टेड केसेस में देते हैं। तो मोस्टली जो हेड एंड नेक कैंसर या वो सर्जरी से ठीक होते हैं या रेडिएशन ठीक होते हैं, कई बार हमें कीमोथेरेपी रेडिएशन के साथ ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज सिर्फ कीमोथेरेपी जो है ना वो सिर्फ हम पैलिएटिव में देते हैं। पैलिएटिव में जो स्टेज फोर सी होता है जिसमें हम ठीक नहीं कर पाते हैं, जस्ट उसकी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं। जी
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, 102.6 FM रेनबो पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे पर। तो आज हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी। यदि आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुँचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर है 01123421082, और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए नंबर है 9868107070। तो आप नंबर डायल करिए और बहुत सारे जो हमारे सवाल हैं हम तक आते रहते हैं आपके सवाल, और उनका जवाब हम देते हैं। बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, तो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका नाम क्या है। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
2: हेलो
1: जी सर, स्वागत है कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
2: 48 वर्ष मेरी उम्र है
1: जी।
2: तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर सर दोनों को गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून सर
2: जी। मेरे दो सीधे साधे सवाल हैं
1: जी।
2: कि एक तो ना मेरी नेक में जो है वो कुष्ठ रोग की गांठ है, और ये काफी पुरानी गांठ है। अब जानना मैं चाह रहा हूँ कि यंग स्टेज में जो फेस पे पिंपल्स होते हैं ना, तो उस दौरान ये गांठ जो है मेरे को नेक में आ गई थी। अब वो कुष्ठ रोग की गांठ है, मैंने जांच पड़ताल उसकी करवाई थी। अब होता ये है कि मेरे को नेक में और पीछे फोरहेड के पीछे जो है वो

0: में काफी दर्द रहता है और हैवीनेस रहती है, और खासतौर से गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यदि मैं पिलो इस्तेमाल करूं तो मुझे चक्कर से आते हैं, और अगर मैं शीर्षासन करूं तो भी मुझे चक्कर आते हैं। तो अब मैं जानना चाह रहा हूं क्या ये हेड नेक कैंसर है, पहला सवाल मेरा ये। और दूसरा सवाल ये है कि बोन कैंसर और ये वेन जो कैंसर होते हैं इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, जरा ये बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज गाइड करें।
1: जी, तो जो पहला आपका सवाल था, आई थिंक उसके लिए जो भी आपके गले में जो गर्दन में जो दर्द होती है और उसकी वजह से जो साथ में सिरदर्द भी रहते हैं, इसके लिए आपको जो भी आपके नियरेस्ट स्पाइन सर्जन होते हैं जो रीढ़ की हड्डी को देखते हैं, आप उनको एक बार उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। होता क्या है कि कई बार जो जो रीढ़ की हड्डी से जो नसें बाहर निकलती है वो कई बार दब जाती है, उसकी वजह से इस तरह की पेन होती है जिसमें गर्दन में दर्द होती है या सिर में भी दर्द होती है। तो आपको उचित परामर्श उनसे आप ले सकते हो। दूसरा, आपने जो बताया कि जो बोन कैंसर होते हैं उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, बोन कैंसर जो शुरुआत स्टेज में नॉन स्पेसिफिक दर्द होती है, जिस पर्टिकुलर बोन में जो कैंसर है वहां पे दर्द होती है। इवेंचुअली लेटर स्टेज में जब वो बहुत एडवांस्ड हो जाता है तो उस केस में फिर फ्रैक्चर होने का रिस्क रहता है, या फिर आपके दूसरे जो शरीर के दूसरे जो बोन वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, बोन मैरो इन्वॉल्वमेंट उसको बोलते हैं। उस केस में जो सेल्स होते हैं, सेल्स बनने जो है ना अफेक्ट हो जाते हैं।
2: जी, तो इनको जवाब मिल गया है और डॉक्टर साहब से जो परामर्श आप चाह रहे हैं वो आपको मिल चुका है। आगे हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। जीवन शर्मा जी उज्जैन एमपी से लिख रहे हैं कि इनके गले में बार बार छाले हो जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या ये भी कैंसर का लक्षण है?
1: नहीं, देखो गले में छाले या तो मुंह में छाले हो सकते हैं, गले में छाले उसके कुछ और कारण है। आजकल की जो व्यस्त जिंदगी है उसमें रिफ्लक्स, जो एसिड रिफ्लक्स होता है जिसको हम लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, वो एक कॉमन कारण रहता है गले में छाले होने का, या गले में किसी भी तरीके की अनइजीनेस या कुछ गले में फंसा हुआ महसूस करना या गले में लंप टाइप सेंसेशन फील करना, तो उसका जो एक इम्पोर्टेंट कारण है आजकल वो ये देखा गया कि रिफ्लक्स। हम लोग दिन को व्यस्त व्यस्त जिंदगी से काम करके थक के आते हैं, इमिडिएटली खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो ऐसे में कोशिश करें कि रात को खाना थोड़ा कम खाएं और खाना खाने के तकरीबन 2-3 घंटे के बाद सोएं, ताकि जो रिफ्लक्स होने का कम चांस रहे। सेकेंडली, अगर आप सोचते हैं कि खाने में इसके साथ छालों के साथ खाने में भी दिक्कत हो रही है या खाना निगलने में दर्द हो रही है, तो फिर आपको नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और है लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, डॉक्टर साहब को और मैम साहब को भी।
2: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: मेरा नाम लल्लू सिंह है।
2: जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मेरा ग्राम पाठक डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश।
2: अच्छा बताइए क्या सवाल है आपका।
3: सवाल मैम जी मेरा ये है, 1990 में मेरा एक टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस
2: जी जी
3: प्रसारण जिसे हिंदी में प्रसारण कहते हैं, उसमें से बाएं तरफ वाली एक गोली ऊपर चढ़ गई थी।
2: अच्छा,
3: और तब से वो आज तक नीचे नहीं आई अपनी जगह, और मुझे तब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मेरा फैमिली भी कंप्लीट हो चुका है और मेरी उम्र इस समय 55+ है। ठीक है, अभी मैंने 4 महीने पहले उसका TSIC हॉस्पिटल में नोएडा में
2: जी
3: अल्ट्रासाउंड कराया और वो टेस्ट कराया, तो डॉक्टर साहब बोले ये 9x15 सेंटीमीटर की एक गांठ बन गया है।
2: ओ, जी जी जी।
3: हाँ, मतलब 9x15 सेंटीमीटर की एक गांठ बन गई है और इसका आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा।
2: जी,
3: तो मेरी कुछ प्रॉब्लम रही, मेरी वाइफ को ज्यादा परेशानी हो गई थी, 2 जनवरी को मैंने एडमिट करा और उनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ क्या मुझे इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, तो मुझे इससे कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं है क्या, आगे चल के कहीं ये कैंसर वैंसर वाली इस तरह की कोई समस्या तो नहीं बनेगी?
2: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
1: जी देखिए, इसके लिए अगर आपको उचित परामर्श होगा या जो ओपिनियन होगी तो उसके लिए आपको जनरल सर्जन से मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जो आपके टेस्टिस है अगर वो अब नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में नहीं है, तो काफी सारे साक्ष्य ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया कि उसमें कैंसर बनने का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अगर उन्होंने आपको अल्ट्रासाउंड किया है, उसमें अगर उनको लग रहा है कुछ डाउट है, तो मुझे लगता है आपको सर्जरी करवाना चाहिए और अतिशीघ्र करवा लेना चाहिए।
2: जी, क्योंकि रिस्क डॉक्टर साहब जैसा जैसा इस केस में सुनने में आता है कि हम अवॉइड करते जाते हैं, उतना कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती जाती हैं।

0: डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि कुछ व्यसन होते हैं जिनकी वजह से ये रोग हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो रूटीन होती है, कुछ लोग जो गर्म पेय का सेवन ज़्यादा करते हैं या लिक्विड, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पीने से भी दिक्कत हो सकती है, तो क्या ये भी वजह होती है कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर की?
1: नहीं, ऐसे कोई अभी तक हमारे पास साक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ ये स्टडीज भी पाई गई है जिसमें ये बताया गया कि जैसे हम लोग जो स्मोक्ड फूड खाते हैं, स्मोक्ड मीट खाते हैं, उससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है,
0: ज्यादा होता है।
1: सिमिलरली जैसे सॉल्टेड फिश खाते हैं उससे भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। अदरवाइज हमारे पास कोई बहुत अच्छे साक्ष्य नहीं है जिससे इसकी पुष्टि हो, बट हाँ ये देखा गया है कि स्मोक्ड फूड, सॉल्टेड फिश का सेवन नहीं करना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब, क्या सर्जरी के बाद नॉर्मल स्थिति होती है, मतलब खाने पीने में या बोलने में, इस तरीके की कोई समस्या तो नहीं होती पेशेंट को?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से ऑर्गन का कैंसर है। जैसे सपोज अगर किसी को जीभ का कैंसर है, तो अगर हम उसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर पाते हैं तो उससे जो उनकी जो बोलने की और जो खाना खाने की जो क्षमता होती है वो तकरीबन ठीक रहती है।
0: जी,
1: तकरीबन ठीक का मतलब ये कि जो लोग उनको पहली बार मिलते हैं उनको ये मालूम नहीं चलता है कि इनकी सर्जरी हुई है। ऑब्वियसली जो घर वाले हैं उनको तो पता चल जाता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जितना जल्दी आप डॉक्टर के पास जाओगे उससे क्या कि अर्ली स्टेज पे ट्यूमर डायग्नोज होगा, उसका ओवरऑल सर्वाइवल भी अच्छा रहेगा, प्लस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रहेगी।
0: जी जी,
1: जैसे जैसे कैंसर एडवांस होता जाएगा उसमें जो सर्जरी है बहुत रेडिकल सर्जरी होती है, तो उससे स्पीच, स्वादो और अपीयरेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है।
0: जी डॉक्टर साहब, ये बीमारी ऐसी है जिसको सुनते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लोगों को लगता है कि अब जीवन खतरे में है, लेकिन कोई ऐसा केस आपको याद पड़ रहा है जहां पे मरीज एकदम हिम्मत हार चुका हो लेकिन वो केस पूरी तरह से ठीक हो के मरीज घर गया हो?
1: जी, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास काफी सारे आते हैं। जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो ये एक तरह का एक मेंटल ट्रॉमा होता है पेशेंट के ऊपर, और कैंसर सिर्फ एक मरीज की बीमारी नहीं है
0: जी।
1: ये बेसिकली उसकी पूरा परिवार, उसका पूरा जो फैमिली मेंबर्स, रिलेशंस है, उन सबको ये बीमारी चपेट में ले लेती है। उसका कारण ये कि सिर्फ शरीर को तंग नहीं करती है, फाइनेंशियली और मेंटली हर तरफ से ये परेशान करती है। तो हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं, इसलिए हम लोग ये भी बोलते हैं कि जितना जल्दी आप किसी भी, जो भी हमने आपके लक्षण अभी गिनवाए हैं, चाहे छाले हो, आवाज का चेंज होना हो, जितना जल्दी इसको हम अपने मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे उतना जल्दी ठीक होने की बहुत अच्छी होती है। और काफी पेशेंट्स हमारे ऐसे, हम लोग तकरीबन जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में काम करते थे, वहां पढ़ते थे, तो हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते थे जिनका 25-25 साल पहले कैंसर के इलाज हुए हैं और वो अभी भी फॉलोअप में हमारे पास आ रहे हैं दिखाने, 4-5 साल में एक बार। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सो कैंसर अगर किसी को डायग्नोज होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म होगी, इसका मतलब ये है कि अगर हम उनका उचित
0: तो समय पर उपचार, समय पर, अगर वो
1: समय पर।
0: जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर बात आपने कही है डॉक्टर साहब। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद करेंगे आगे की चर्चा।

0: साथ रे है।
1: जी हाँ श्रोताओं, मुश्किलें तो बहुत सारी आती हैं, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, तो उससे उबर जाना ही हमारे लिए बेहतर होता है। और कैसे हम उबर सकते हैं, अगर आपको कैंसर जैसा रोग घेर रहा है तो, या आपको अंदेशा हो रहा है कि आपको हेड एंड नेक कैंसर हो सकता है, या आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो कैसे आप सजग हो जाएं, ये जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन। तो यदि आपका भी है कोई सवाल तो हमसे संपर्क करें। स्टूडियो का नंबर है 01 1 2 3 4 2 1 0 8 2। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे पास नरदेव सिंह चौहान जी का कोट द्वार उत्तराखंड से मैसेज आया हुआ है। इन्होंने नमस्कार लिखा है कि अनुराधा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। इनका सवाल है कि कैंसर में आर्थिक पक्ष पर परिवार को जूझना पड़ता है, तो सामाजिक संस्थाएं और सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है?
2: देखिए, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, जैसे आप दिल्ली एम्स की बात करें, तो जितने भी हेड नेक कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका जो इलाज होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है
1: जी।
2: तो सिमिलरली दूसरे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे पीजीआई है या दूसरे स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे मोस्टली कैंसर का इलाज फ्री होता है। इवन जब हिमाचल जैसी जगह जहाँ पे कैंसर का इलाज भी फ्री होता है
1: जी।
2: प्लस जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके साथ एक अटेंडेंट है, उनको जो वहाँ की जो बस सर्विसेज है सरकार की, उस पे यात्रा करना भी फ्री रहता है हॉस्पिटल से लेके घर तक उसका पास बनता है। तो गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स है जिसमें कैंसर पेशेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का सुपर फ्री

0: उससे एक जो है ना गवर्नमेंट ने स्कीमें इख्तियार की हुई है
1: जी। तो ये जो सुविधाएं हैं उनको किस तरह से लोग ले सकते हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर या कुछ आप बताना चाहेंगे?
0: नहीं, ये तो जब हम किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करने जाते हैं तो हॉस्पिटल का अपना एक इंक्वायरी नंबर होता है। तो वहाँ पे आप उस नंबर पे फोन करके किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे आप ये उत्तराखंड किया तो वहाँ पे जैसे एम्स ऋषिकेश है तो वहाँ पे उनका फोन नंबर होता है, आप उस पे ये फोन करके जो है ना उनसे उचित कंसल्टेशन ले सकते हैं कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं। पर ऑलमोस्ट हर स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे कैंसर का फ्री इलाज होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी वजह होती हैं जो आपने बताया, एक समस्या ये भी आती है जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है, तो क्या उनको भी नेक कैंसर होने का खतरा होता है?
0: नहीं, ये चीजें बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। हेड एंड नेक कैंसर अलग है, जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम अलग है। सर्वाइकल की प्रॉब्लम मोस्टली जो नसें होती है, जब वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलती है वो दब जाती है, तो उसके लिए आप किसी भी स्पाइन स्पेशलिस्ट का कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसका कैंसर के साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि जब भी हेड एंड नेक कैंसर में रेडिएशन देते हैं तो उन पेशेंट्स को ये सर्वाइकल की दिक्कत लेटर ऑन हो जाती है, क्योंकि जो नसें हैं वो रेडिएशन की वजह से ट्रैप हो जाती हैं। तो वो जो सूजी सुहा होती है रेडिएशन इंड्यूस्ड, उससे ट्रैप होती है, तो उसको न्यूरोपैथी बोलते हैं, रेडिएशन इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, तो उसका भी इलाज संभव होता है। जी
1: हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्कार सर, आपको भी, डॉक्टर साहब को भी।
1: जी नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना।
2: मेरा नाम सर राजेंद्र है, एज मेरी 75 है।
1: जी
2: ये सर, ये जी जब मैं कोई गर्म चीज, नमक मिर्ची सब लेता हूँ तो एकदम जीभ पर लग जाती है, जैसे ज्यादा गर्म भी हो तो एकदम बाहर फेंकना पड़ जाता है, क्या कारण है? कई साल से हो रहा है इसे।
1: जी
0: तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहता है कि हमें जो, क्या आप इसका स्मोकिंग करते हैं आप?
2: बहुत पहले करते थे सर, 15-16 साल पहले, अभी छोड़ दिया। मेरा हार्ट का भी एक स्टंट डला हुआ, तब से छोड़ दिया 2011 में।
0: जी, और कुछ तंबाकू का सेवन तो नहीं करते?
2: कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, अब कुछ नहीं। जैसे मिर्ची लग जाना, ये गर्म पानी लग जाना, नमक लग जाना एकदम से, कभी कभी उस पर जीभ पर दरार सी भी दिख जाती है।
0: देखिए, कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्री मैलिग्नेंट चीजें कुछ होती हैं, कैंसर से जो पहले वाली स्टेज होती है, पर्टिकुलरली जो स्मोकर्स होते हैं या जो एल्कोहलिक होते हैं, तो उनमें जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स है उनमें भी ये दिक्कत होती है। तो आपको देखने में कोई, अगर आप मुंह शीशे के सामने देखते हो तो आपको लगता तो नहीं कुछ खराबी है, कुछ सफेद दाग बने हुए या पैचेस बने या कोई अल्सर बने?
2: कभी कभी छाले हो जाते, फिर ठीक से हो जाते जैसे वो, और फिर मैंने दिखाया कि ENT, वो कह रहे कुछ नहीं, साफ सफाई रखो बस, ऐसे कुछ।
0: जी ठीक है। सो अगर कोई भी अल्सर है जो परसिस्ट कर रहा हो तब तो उसमें कैंसर का रिस्क रहता है, लेकिन जो छाले अपने आप ठीक हो जाए उसमें जनरली कैंसर का रिस्क नहीं रहता है। तो ऐसे में आप अपने नियरेस्ट जो ENT स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके उचित जो भी दवाइयाँ इसमें यूज हो सकती हैं वो।
2: कोई दवाई नहीं सर, वो बोलते हैं सफाई रखो बस और कुछ नहीं।
0: ये जरूर देखा गया है कि अगर ओरल हाइजीन अच्छी नहीं है उनमें भी कैंसर का रिस्क रहता है, तो ओरल हाइजीन हमें मेंटेन करना चाहिए सर
1: जी।
0: और पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेटेड रहे, जितना पानी हो सकता उतना पिए।
1: जी, तो इनका मार्गदर्शन आपने कर दिया है डॉक्टर साहब। हमारे पास मैसेज आया हुआ है सुमन गुप्ता जी का, इनकी एज 37 ईयर है। सरिता विहार नई दिल्ली से इन्होंने लिखा है कि इनके राइट आर्म में एक गांठ है, 4 साल से दर्द नहीं है, छोटी सी गांठ है, क्या ये कैंसर हो सकती है, ये जानना चाहती है।
0: अगर इसमें जो गांठ है उसका कोई रिसेंट ऐसे जो बिहेवियर या नेचर उसमें कोई चेंज नहीं है, तो मुझे लगता है कि बहुत अनलाइकली कि उसमें कैंसर का कोई रिस्क रहे। बट मोस्टली लाइपोमास होते हैं, जो ये फैट की जो कलेक्शन होती है वो होते हैं, जो इस तरह के शरीर में कहीं और जगह भी हो सकते हैं। बट अगर इनको लगता है कि किसी भी तरीके की उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो रही हो या रिसेंटली कुछ साइज बढ़ गया हो, तो उनको फिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, ऐसे और भी कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसा कि इन्होंने गांठ तो एक अमूमन मान लिया जाता है कि हाँ ये कैंसर की स्थिति हो सकती है शुरुआती दौर, लेकिन क्या कोई और भी लक्षण होते हैं? जैसे मैंने सुना है कि तिल की संख्या अगर बढ़ती जा रही है, तो क्या ये भी कहीं एक सिम्टम है?
0: देखिए, अगर जैसे किसी को अगर गांठ है, अगर उसमें रिसेंटली कुछ उसके बिहेवियर या नेचर में कुछ चेंज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल गांठ 3-4 साल से अभी उनको लग रहा है कि 2-3 महीने से गांठ बढ़ रही है साइज में, या उसमें कुछ नए लक्षण आए जैसे उसमें पेन होना शुरू हो गया है, या फिर जो गांठ पहले अच्छे से हिलाने पे हिलती थी अब वो हिल नहीं रही है, या उसको हिलाने से उसमें दर्द हो रहा हो, तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसमें हमें अगर ये सब चीजें आती है तो दैट मीन्स कैंसर का रिस्क हो सकता है या उसमें रिसेंट मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसका नेचर कैंसर की तरफ किया हो, तो ऐसे केसेस में जरूरी रहता है कि जो भी अपने पास के डॉक्टर हैं जो भी हैं उनसे जाके मिलके एक उचित परामर्श लें। दूसरा ये रहता है कि जो आप बोल रहे हैं कि जो नंबर बढ़ जाता है या जो सन एक्सपोज एरिया में पिगमेंटेड स्पॉट्स बढ़ जाते हैं, तो स्पेशली जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो ई एन टी जो स्किन कैंसर है उसका इंसिडेंस काफी ज्यादा है, तो अगर उन्हें लगता है कि ये पिगमेंटेड स्पॉट साइज में बढ़ रहे हैं और उसमें अल्सरेशन शुरू हो गई, अल्सर बनने शुरू हो गए, छाले पड़ने शुरू हो गए हैं, तो फिर उनको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जो जिनका इलाज हो चुका है तो क्या उनकी ताउम्र मेडिसिन चलती है या फिर वो स्वस्थ हो चुके हैं तो जरूरत नहीं होती है उसकी?
0: नहीं, ईएनटी कैंसर में अगर हमने एक बार ट्रीटमेंट पूरा कर लिया, चाहे वो रेडिएशन हो, कीमो रेडिएशन हो, या सर्जरी किया हो या सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन दिया हो, जब एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके 3 मंथ्स के बाद हम लोग रूटीनली पेट स्कैन करते हैं ये देखने के लिए कि जो हमने ट्रीटमेंट इनको दिया है उससे पेशेंट डिजीज फ्री हो चुका है या नहीं हुआ है।
1: जी,
0: अगर वो डिजीज फ्री हो जाते हैं 3 महीने के पेट स्कैन के बाद, उसके बाद पेशेंट को हम बोलते हैं कि हर 2-3 महीने में एक बार दिखाना है, और उसका रीजन ये रहता है कि ट्यूमर के वापस आने का रिस्क काफी ज्यादा होता है।
1: जी,
0: तो अगर हम पेशेंट को हर 2-3 महीने में देखेंगे उससे हम एक तो जो कैंसर है उसको अगर वो वापस आता है तो उसको बहुत अर्लीस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं और इमीडिएटली ट्रीटमेंट दे सकते हैं।
1: जी,
0: अगर उसको एडवांस स्टेज पे रिकरेंस पकड़ते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको सैल्वेज करना, तो ऐसे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, ईएनटी कैंसर ट्रीटमेंट के बाद अपने डॉक्टर को 2-3 महीने में दिखाते हैं, जैसे पहले साल आप 2-3 महीने में दिखाएं, दूसरे साल 3-4 महीने में दिखाएं, वैसे 5 साल के बाद साल में एक बार दिखाएं, सो दैट जो रिकरेंस का जो रिस्क है उसको हम जल्दी पकड़ लें और उसको कम कर दें।
1: मतलब आगे भी संभावना होती है कि अगर सर्जरी एक बार हो चुकी है तो सर्जरी के बाद भी ये समस्या हो सकती है, आपका ये कहना है?
0: बिल्कुल जी
1: जी। तो श्रोताओं, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप सर्जरी करा चुके हैं तो बिल्कुल निश्चिंत ना हो जाएं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि समय समय पर आप परामर्श लेते रहें अपने डॉक्टर से। डॉक्टर साहब, अब समस्या होती है कि जो नेक है, खाने पीने के लिए ज़रूरी है कि जो ऑपरेशन हो चुका है उसके बाद किस तरह की एहतियात होनी चाहिए खान पान में?
0: देखिए, जैसे हम किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, सर्जरी करते हैं, सर्जरी के माध्यम से जैसे जीभ का ऑपरेशन करते हैं, नई जीभ बनाते हैं, या मुंह में कोई और एरिया होता है जिसको हम रिसेक्ट करते हैं, उसको वैसे उसी सेम तरीके के उससे जो है ना मैं रिप्लेस करना है, कोई फ्लैप लगाना है, तो उसके बाद हमें पेशेंट को बेसिकली रिहेबिलिटेट करना होता है कि अगर नई जीभ बनी उस नई जीभ से काम कैसे करवाएं, तो एक रिहेबिलिटेशन होता है। तो जब भी सर्जरी करते हैं, सर्जरी के बाद हम रिहेबिलिटेट करते हैं सो दैट पेशेंट नॉर्मल लाइफ जिए। वैसे ही जब हम रेडिएशन देते हैं, रेडिएशन के बाद भी हम कुछ स्वालो एक्सरसाइजेस देते हैं पेशेंट को
1: जी,
0: जिससे कि क्योंकि रेडिएशन से भी काफी डैमेज होता है नेक में, सो उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से उसको स्वालो रिहेबिलिटेशन करते हैं तो उसको हम नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके जा सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक चीज और देखने में आती है कि जो सर के बाल होते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है, तो कैसे, मतलब ये किस वजह से होता है और किस तरह से प्रॉपर तरीके से फिर से इंसान जीवन में लौट सके, कैसे क्या किया जाए?
0: मोस्टली जो हेयर लॉस होता है वो कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट से रहता है, और जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो कीमोथेरेपी इंड्यूस जो एलोपेशिया है वो धीरे धीरे करके बाल वापस आ जाते हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। जो फेस के बाल होते हैं, दाढ़ियां जिसको हम बोलते हैं, वो भी रेडिएशन के दौरान चले जाते हैं, बट हमें ये देखा गया है कि तकरीबन 1.5 साल से 2 साल के बीच में उनके जो बाल है वो वापस आ जाते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल,
1: तो ये इतनी बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वैज्ञानिक इतनी तरक्की कर चुका है। तो हम अपने श्रोताओं को यही जो है जागरूक कर रहे हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और लगातार रेडियो डॉक्टर आपको सलाह देता रहता है और आपको परामर्श देता है कि किस तरह से आप स्वस्थ हो सकते हैं और आपका आगे का जीवन कैसे स्वस्थ रह के गुजर सकता है खुशी से। तो डॉक्टर साहब, समय बहुत कम है और चलते चलते आप और क्या कहना चाहेंगे कि ताकि इस स्थिति तक इंसान पहुंचे ही ना?
0: जी, सबसे पहले तो क्योंकि मेजॉरिटी जो ईएनटी कैंसर है वो तंबाकू से होते हैं, जिसमें तंबाकू चबाना या फिर स्मोकिंग और अल्कोहल, तो इस चीज को अपनी जिंदगी से त्याग दें। इसके साथ ही अगर इस तरीके के लक्षण जैसे मुंह में छाला जो 2 वीक से ठीक नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉइस है, या कोई लंप है, पेनलेस लंप है जो 2 वीक से ठीक नहीं हो रहा है,

0: नाक बंद है, उससे खून आ रहा है, तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने डॉक्टर्स को इमीडिएटली दिखाना चाहिए. इमीडिएटली दिखाना चाहिए कि पेशेंट की जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाता है और उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छे से होता है, लेस इनवेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, तो आउटकम जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है. और सेकेंडली, आजकल काफी सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं कि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके दो रीजन है. एक तो ये कि हमारा जो डिटेक्शन रेट है वो बहुत अच्छा हो गया है, और सेकेंडली काफी सारे लोग जो एडिक्शन हैबिट्स हैं, पान पराग या तंबाकू का जो सेवन करते हैं वो बहुत ज्यादा लोग सेवन करते हैं, जो कि ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कैंसर के लिए. तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है प्रिवेंशन के लिए कि लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, लीफी वेजिटेबल्स खाएं, हाइड्रेटेड रहें. ठीक है जी. सो अगर इन सब चीजों का हम अपनी जिंदगी में अमल करते हैं इन सब चीजों के ऊपर, तो कैंसर से काफी हद तक बचा जा सकता है
1: जी. यानी उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे जिसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं. तो श्रोताओं, आज हमने चर्चा की, आज है वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे, तो आज हमने बहुत ही विशेष चर्चा की है. हमारे आज के विशेषज्ञ रहे डॉक्टर कुलदीप ठाकुर जी, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन. तो उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. डॉक्टर साहब, चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई. तो श्रोताओं, उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा. अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी विषय पर डॉक्टरी परामर्श लेना, तो अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं. तो लगातार हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपने सुझाव, प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए. उसके लिए नंबर्स लगातार हम आपको बताते रहते हैं. फिलहाल आज के लिए बस इतना ही. रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम से अब अनुराधा को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की दिल्ली केंद्र से लीजिए प्रस्तुत हैं 4 बजे के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी 5:15 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्य बल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोप में याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। न्यायालय ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिस कर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। भारत हेपेटाइटिस से निपटने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास कर रहा है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करना है। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। कनाडा के ओंटारियो में आयोजित स्क्वैश विश्व जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने ब्राजील और नीदरलैंड को 3-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हंगाचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू ने ग्लासांगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से प्रोग्राम अल्फा जेन। जी हाँ, आज मंडे है, यूथ स्पीक सेगमेंट लेकर मैं हूँ आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरेश सृजन, और मेरे साथ हैं स्टूडियो में, पहले विषय बता देती हूँ, बात करेंगे आज बुक्स इन द डिजिटल एज, व्हाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। जी हाँ, कितनी ज़रूरी बात है कि किताबों को तो हमने दरकिनार कर दिया है और मोबाइल की स्क्रीन को अपनी आंखों के सामने चिपका लिया है, पर कितना ज़रूरी है कि 2026 में भी इस दूरी को कम किया जाए, किताबों से एक बार फिर हमारा जुड़ाव हो। डिजिटल एज होते हुए भी हमें किताबों से प्यार को कम नहीं होने देना है। क्या सोचती हैं इस बारे में हमारी गेस्ट, मिलते हैं आकांक्षा से। आकांक्षा, स्वागत है स्टूडियो में।
2: थैंक यू मैम।
1: आकांक्षा, सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताओ, और ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, और मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है।
2: तो मैम, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ।

0: और बुक्स पढ़ने में मेरी रुचि बहुत टाइम से है,
1: ठीक है.
0: तो मुझे लगता है कि और लोगों को भी इस जो टर्म है जेंजी, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा जा रहे हैं और बुक्स, जो ओरिजिनल बुक्स मतलब बुक्स पेपर बुक,
1: जी
0: उनमें कम रुचि लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बुक्स को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वही हमारी ट्रेडिशनलिटी को आगे बढ़ाते हैं।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा. किताबों को जब भी खोले तो वो सौंधी सी खुशबू और वो जो बातें उसमें लिखी हैं वो कहीं ना कहीं दिल में उतर जाती हैं, दिल में घर कर जाती हैं. तो ये सारी बातें अब हम आकांक्षा से सुनते हैं. आकांक्षा के विचार आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं अल्फा जेन यू स्पीक, आकांक्षा के से सुनते हैं.
0: ये 2026 का दौर है, यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ईमेल्स लिख रहा है, चैटबॉट्स हमारे सवालों के जवाब दे रहा है, 1 मिनट में हम 50 रील्स देख लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हर 10 मिनट में बदल जाती है। लेकिन एक सवाल है, इन्फॉर्मेशन तो बदल रही है पर क्या हम नॉलेज भी गेन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम पढ़ना छोड़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे रीडिंग की पावर की, बुक्स के मैजिक की, और एआई के ज़माने में भी बुक्स की इम्पोर्टेंस की, जो लोगों को लगता है कि कम हो रही है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, ऑफिस से घर जा रहे हैं, या सिर्फ चाय लेकर रिलैक्स कर रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट्स सिर्फ हमारे साथ।
1: बिल्कुल
0: चलिए आज एक नई किताब का पहला पन्ना खोलते हैं। तो पहला सॉन्ग इस पहले सॉन्ग के साथ शुरू करते हैं।

0: श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इस बच्चे को ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार फिर सुन ले, 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: इस एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ मेरा अगला सवाल है, किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं क्या? बचपन में हम चंपक, नंदन, पंचतंत्र, अकबर, बीरबल सिर्फ एक स्टोरी समझकर पढ़ते थे, लेकिन आज साइंस कहती है कि यही स्टोरीज हमारी मॉरेलिटी को शेप करती हैं। रिसर्च बताती है कि रेगुलर रीडर्स की मेमोरी इम्प्रूव होती है, स्ट्रेस कम होता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है और इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है। लेकिन मुझे लगता है बुक्स की सबसे बड़ी पावर कुछ और है। जब आप एक किताब खोलते हैं, आप सिर्फ पढ़ते नहीं, उसे जीते हैं। एक दिन आप एस्ट्रोनॉट बनते हैं, दूसरे दिन फ्रीडम फाइटर, कभी डिटेक्टिव, कभी एंटरप्रेन्योर, कभी सोल्जर, तो कभी खुद को ही दोबारा डिस्कवर करने लगते हैं। स्क्रीन आपको बताती है क्या हुआ, बुक सिखाती है क्यों हुआ और इससे हमें क्या सीखने को मिला। इसीलिए बुक सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती, ट्रांसफॉर्म करती हैं। स्टीफन किंग का एक कोट है, बुक्स आर यूनिकली पोर्टेबल मैजिक, और सच ही तो है। इससे बेहतर डेफिनेशन बुक्स की कुछ और हो ही नहीं सकती। तो आइए हमारा अगला सॉन्ग सुनते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से। मैं हूं आपके साथ दिल्ली की चाशनी कुरिसजन और आज है हमारे साथ युद्ध गेस्ट आकांक्षा। बातें सुनेंगे उनकी, क्या कहती हैं उनके विचार किताबों के बारे में। किताबें खुद चुप रहती हैं लेकिन जिसने इन्हें पढ़ लिया उसे ये ज़रूर बोलना सिखा देती हैं। तो आप भी अपनी रीडिंग हैबिट्स को यानी अपनी बुक्स के साथ नज़दीकियों को यूं ही बढ़ाकर रखिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर आकांक्षा के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आप सुन रहे हैं FM रेनबो पे अल्फा यूथ स्पीक और मैं हूँ आकांक्षा, आपकी आज की गेस्ट। तो आज हम बात कर

कब आखिरी बार आपने अपने फोन का लॉक खोला था? कितनी बार आपने रील देखी थी और आपने कितने पेज पढ़े थे? शायद तीसरा जवाब आपको अनकंफर्टेबल करे। हमारी दुनिया में नोटिफिकेशन बहुत सारी हैं। नोटिफिकेशंस के साथ हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, AI, ईमेल्स, ब्रेकिंग न्यूज़ हर सेकंड बदलते हुए पढ़ रहे हैं और हमारी अटेंशन हमेशा उनकी तरफ ही रहती है। इसी सवाल को एक्सपर्ट्स ने जब एनालाइज किया तो पाया कि ये हमें एक ऐसे टर्म की तरफ ले जाता है जो है डीप रीडिंग। डीप रीडिंग मतलब सिर्फ वर्ड्स को पढ़ना नहीं, उन्हें महसूस करना, समझना, क्वेश्चन करना और अपनी लाइफ में उसे कनेक्ट करना। रिसर्च ये भी बताता है कि लोग रेगुलरली लॉन्ग फॉर्म रीड करते हैं, उनका फोकस एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, डिसीजन मेकिंग वो ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं और एनालिटिकल थिंकिंग जनरली स्ट्रांग होती है। फ्यूचर सिर्फ AI का नहीं है, फ्यूचर उन लोगों का है जो इन्फॉर्मेशन को समझ सकें, और अंडरस्टैंडिंग किताबों से आती है। तो एक फन फैक्ट की बात करते हैं। एक एवरेज सोशल मीडिया यूज़र रोज़ कई घंटे स्क्रॉल करता है लेकिन उसे उससे कुछ गेन नहीं होता। अगर उसमें से हम 20 मिनट भी रीडिंग को दें तो एक साल में हम बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना अगला गाना सुनते हैं।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों, रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपया करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार दोबारा सुन ले, 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और लाइव स्ट्रीमिंग जैसे अन्य कई माध्यमों से भी हमारे श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम है अल्फा जेन और हमारे साथ हैं हमारी यूथ स्पीकर आकांक्षा, जो बात कर रही हैं बुक्स इन द डिजिटल एज, वाई रीडिंग स्टिल मैटर्स इन 2026। तो बात बिल्कुल क्लियर है, किताबों से प्यार तो बनता है। सुनते हैं आकांक्षा क्या कहती है।
2: तो जो अभी हमने गाना सुना सफ़रनामा, वो भी हमारी बुक्स से ही रिलेटेड है, क्योंकि सफ़रनामा की तरह जैसे हम सफ़र में निकल जाते हैं, बुक्स पढ़ के भी हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ हमें लर्निंग, क्रिएटिविटी, नॉलेज, अलग अलग तरह के लोगों की माइंडसेट सब देखने को मिलता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटा सा गाँव था, उसमें एक लड़का रहता था। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, ना एक्सपेंसिव कोचिंग, बस एक लाइब्रेरी और उसमें भी पुरानी किताबें। रोज स्कूल के बाद वो वहाँ पर पढ़ने जाता था, कभी साइंस पढ़ता, कभी हिस्ट्री। सालों साल बीत गए, आज वो एक साइंटिस्ट है। ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं हमारे पास। इन्हीं कहानियों से इंस्पायर होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं, बुक्स हमारी साइलेंट मेंटर्स होती हैं। उन्होंने कहा है, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। रीडिंग सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, रीडिंग माइंडसेट बदलती है, और जब माइंडसेट बदलता है तब फ्यूचर भी बदलता है। तो आइए हमारा अगला सॉन्ग सुनते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6। प्रोग्राम है अल्फा जैन और मैं हूँ आकांक्षा, आपकी आज की होस्ट। तो आज हम इस टाइम हम इस फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग इज अ सुपर पावर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स, इंटरव्यूज, कॉरपोरेट जॉब्स, स्टार्टअप्स, हर जगह एक चीज़ कॉमन है, कम्युनिकेशन। रीडिंग से वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, इंटरव्यू आंसर्स पावरफुल बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होती है और कॉन्फिडेंस तो नेचुरली बन ही जाता है। कंपनीज आज सिर्फ CGPA नहीं देखती, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, आइडिया एक्सप्लेन कर सकें और लॉजिकली सोच सकें। ये सब एक हैबिट से डेवलप होता है एंड दैट इज़ रीडिंग। रीडिंग हैबिट बिल्ड करना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं रीडिंग के हैबिट को शुरू करना, तो आइए कुछ स्टेप्स में इन्हें बांट लेते हैं। स्टेप 1, रोज़ सिर्फ 10 मिनट बस। स्टेप 2, अपनी पसंदीदा बुक पढ़िए, कंपल्शन नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। स्टेप 3, रीडिंग के वक्त नोटिफिकेशन बंद रखिए और फ़ोन को आप खुद से दूर रखिए। स्टेप 4, एक कोजी रीडिंग कॉर्नर बनाइए। स्टेप 5, जो सीखा उसे लिखिए, एक नोटबुक रखिए या फ़ोन में नोट्स बनाइए। रीडिंग की पावर एक सुपर पावर बन सकती है जब वो रिफ्लेक्शन में बदल जाती है। और याद रखिए, रीडिंग रेस नहीं, रीडिंग एक जर्नी है जो हर पेज आपको हर पल एक बेटर बनने के लिए मोटिवेट करता है। सिर्फ 20 पेजेस रोज, 1 साल में 7,000 पेजेस और लगभग 20 से 25 बुक्स। सोचिए सिर्फ 1 साल में कितनी नई टीचर्स, कितनी नई जर्नीज और कितनी जिंदगियां। आइए अपने अगले सॉन्ग को सुनते हैं।
4: क्या खूब कहा आकांक्षा तुमने, और बिल्कुल अगर आप आकांक्षा के आंकड़ों के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो आप इतनी किताबें यकीनन पढ़ सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, किताबों में इतना खजाना छुपा है जितना कोई लुटेरा कभी लूट नहीं सकता। तो पढ़िए, खूब पढ़िए और अपने आप को हमेशा आगे रखने के लिए जो है मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो हम चलते हैं लक्ष्य की ओर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं श्रोताओं, एक जरूरी सूचना की तरफ ध्यान दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्तदानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए नंबर एक बार फिर सुन लें 9633।

0: 8544-2662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। आकाशवाणी FM रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है अल्फा जेन और हमारे साथ है हमारी यूथ स्पीकर आकांक्षा। कितनी अच्छी बात आकांक्षा से हमें जानने को सुनने को मिली है कि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले पढ़ो। तो चलते हैं आकांक्षा की बातों पर, उन बातों पर जिनसे हमें बहुत ज़रूरी अपने लाइफ के लिए लर्निंग्स भी मिल रही हैं। तो आकांक्षा, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: एक वक्त था जब हम किताबों की खुशबू के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, नई किताबें देखकर मार्केट में जाते ही स्टेशनरी शॉप पे अटक जाते थे कि हमें यही चाहिए। लेकिन आज हाथ में फ़ोन है, नोटिफिकेशन का शोर है और हज़ारों काम हमारे फ़ोन पर ही हो जाते हैं या फिर डिजिटल स्क्रीन्स पर। हम ऐसी स्पीड में जा चुके हैं कि हम जब रुकते भी हैं तो किताबों को देखकर हमें लगता है कि हम डिजिटल बुक्स पढ़ लेंगे, PDF पढ़ लेंगे या फिर ई बुक्स की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान जा चुका है। सोचिए, हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसका जवाब सिर्फ क्लिक्स पर मिलता है। गूगल है, ChatGPT है और AI है, सब कुछ इंस्टेंट है। पर क्या इस इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के ज़माने में हमने अपने आप के ठहराव को छीन लिया है जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है? आज की इस फास्ट पीस दुनिया में जहाँ हर सेकेंड एक नया ऐप लॉन्च हो जाता है और हर नोटिफिकेशन हमें ये भटका देती है हमारी एकाग्रता को कि हम कुछ सोच कुछ और रहे होते हैं और कहीं किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं एक क्लिक पर। तो जब हम अपने फोकस को खो देते हैं तो उसे वापस लाना हमारे लिए एक करेंसी बन गया है। हम स्पीड के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमने खुद की सोच को आगे बढ़ाना छोड़ दिया है और अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या इन्फॉर्मेशन और विजडम में कोई फ़र्क होता है? इन्फॉर्मेशन आपको एक सेकेंड में मिल जाती है, पर समझ, पर्सपेक्टिव, वो सिर्फ गहराई से आता है और गहराई हमें हमेशा पन्ने पलट कर ही मिलती है। तो आइए हमारे अगले सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6। प्रोग्राम है अल्फा जैन और मैं हूँ आकांक्षा, आज की स्पीकर। तो हम बात कर रहे थे डिजिटल एज में बुक्स पढ़ने की। तो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट होगी, एआई और इंटेलिजेंट होगा, रोबोट्स और कैपेबल होंगे, लेकिन एक क्वालिटी जो कभी आउटडेटेड नहीं होगी और वो है सीखने की भूख। बुक्स हमें आंसर देती हैं, बुक्स हमें सिर्फ आंसर ही नहीं समझाती, वो हमें बताती हैं कि हम बेटर क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हैं और हमारे पेशेंस को भी और इम्प्रूव करती हैं। एम्पथी सिखाती हैं हमें, प्रस्पेक्टिव देती हैं और शायद खुद से मिलना भी सिखाती हैं। तो आज एक प्रॉमिस कीजिए, आप रोज़ एक बुक तो ज़रूर पढ़ेंगे, चाहे कुछ पेजेस ही पढ़ें, चाहे 10 मिनट से शुरुआत करें, लेकिन बुक्स ज़रूर पढ़िए। आज एक किताब हमारे नाम पढ़िए। हो सकता है उसके लिए आपको आज एक पेज लगे, कल 2 पेज, लेकिन धीरे धीरे करके आप एक साल में कुछ अलग ही इंसान बन जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। आपको अपनी लाइफ में एक न्यू आइडिया भी मिल सकता है इससे, क्योंकि हर बुक एक न्यू मॉरलिटी हमें सिखाती है और एक न्यू पर्सपेक्टिव देती है। तो मैं हूँ आकांक्षा, आपसे इजाज़त लेती हूँ इसी एक खूबसूरत कोट के साथ। अ रीडर लिव्स 1,000 lives बिफोर ही डाई, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली 1। खुश रहिए, क्यूरियस रहिए और सीखते रहिए, और किताबों का साथ कभी मत छोड़िए। नमस्कार।
1: बहुत खूब कहा आकांक्षा, और आज का ये सफर आपके साथ कब निकल गया पता ही नहीं चला। और किताबें भी तो यही करती हैं, हमें वो सफर कराती हैं जो हम कदमों से नहीं कर सकते। कदमों से कभी मुमकिन नहीं होता कि इतना लंबा चौड़ा हम चल दें या फिर पहुंच जाए कहीं तक, लेकिन जब हम किताबों के जरिए कहीं से कहीं अपनी सोच को ले जाते हैं तो यकीनन पहुंच जाते हैं। आप भी इस बात को मानते हैं ना? तो आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, आपके विचारों को सुनकर, और आपने किताबों के बारे में हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को जो भी कहा, आई एम श्योर वो इस बात को समझेंगे और प्रयास करेंगे कि आज से नहीं, अभी से शुरुआत करें और एक पन्ना रोज पढ़ें। तो चलिए, आकांक्षा ने यहां हमसे टाटा बाय बाय कह दिए, लेकिन आपका और हमारा सफर यूं ही जारी रहेगा। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे सैटेलाइट्स 5:02 पर रेशमा फारूकी के साथ, और उसके बाद 6:02 पर नीरजा चतुर्वेदी लेकर आएंगे आपके लिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम कंट्री कार्निवल लेकर मुक्ता आएंगी 7:02 पर, और एक बार फिर म्यूजिक और मस्ती नीरजा के साथ कीजिएगा 8:02 पर, और 9:02 पर न्यूज के बाद आपकी याद आती रही लेकर ताहिर हसन आएंगे, और वेस्टर्न म्यूजिक एक और रेनबो शोकेस प्रोग्राम लेकर मुक्ता जुड़ेंगी आपके साथ 10:02 पर। तो ताहिर के साथ रंगे महफिल सजाना मत भूलिएगा, 11:02 पर ताहिर आएंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 की मैजिकल फ्रिक्वेंसी से, और जी आपको इसे सुनते रहना है, क्योंकि यहां सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इंफोटेनमेंट है, यानी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों है। तो तब तक के लिए अपनी दोस्त सृजन को दीजिए अनुमति, यूं ही सुनते रहिए, अपना अपना और अपनों का रखिए बहुत बहुत ख्याल। नमस्कार।

और लीजिए अब सुनिए अभी तक के AIR FM रेनबो पर मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई भी सवा 5 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्चस्तरीय कार्य बल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पॉलिश्चुक को तलब किया। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत के ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर कार्यक्रम सिटी लाइट्स, जहां पर शहर की रफ्तार की बात होती है। शाम की रौनक और संगीत का खूबसूरत साथ आपका इंतजार करता है। तो चलिए जरा दिल्ली के मौसम को देखते हुए आपको एक ऐसा ही गीत सुनवाते हैं, जहां यकीनन सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि दिल्ली का मौसम इस वक्त कैसा है।

आपके शहर में बरसात हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन भाई इस वक्त दिल्ली का मौसम बहुत सुहाना हो गया है। बात करेंगे आपके साथ मौसम की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहती हूँ कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया अर्थात ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्त दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हों, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। मोबाइल नंबर है 9635442662। संपर्क करने के लिए एक बार फिर मैं ये नंबर आप तक पहुंचा देती हूँ, 9635442662। 9635442662। आपका रक्तदान किसी का जीवन बचा सकता है। तो ये एक अनाउंसमेंट थी, एक सूचना थी जो आप तक पहुंचानी थी। तो चलिए सिटी लाइट्स में ऐसा करते हैं, एक अच्छा सा प्यारा सा गीत सुन लेते हैं और उसके बाद

बेशक खूबसूरत मौसम हो तो कोई भी दीवाना हो सकता है, और मौसम का जादू है जनाब। और जब मौसम का जादू चलता है तो समझ लीजिए कि राजधानी में जितने भी लोग रहते हैं वो अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि दिल्ली का जो मौसम है इस वक्त वो क्या कहता है। राजधानी में आज दिन भर आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी रही थी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना थी। और देखिए इस वक्त कह सकते हैं जो बौछारें हैं वो कुछ इसी तरह का संकेत दे रही हैं। वैसे कुछ उमस भरा दिन जरूर रहा, लेकिन इस वक्त थोड़ा मौसम साफ है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो छाता या फिर रेन कोट रखना ना भूलिएगा। बारिश की वजह से कुछ मार्गों पर ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो सकती है। मौसम का आनंद आप लीजिए, लेकिन साहब थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि आप रहते हैं दिल्ली में और आप जानते हैं कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो ट्रैफिक का हाल क्या होता है।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम चल रहा है सिटेलाइट्स। और सिटेलाइट्स में हम आपके साथ बात कर रहे थे मौसम की, और साथ ही साथ आपको कुछ और जानकारी भी हम जरूर देना चाहते हैं। जी हाँ, डेबिट कार्ड की तरह भी काम करेगा पिंक स्मार्ट कार्ड। जी हाँ, DTC की बसों में फ्री सफर के साथ साथ कार्ड धारक महिलाएं मॉल और दुकानों से खरीदारी भी कर सकेंगी। तो बताइए भाई, कैसी लगी आपको ये जानकारी? जी हाँ, जिनके पास इस वक्त पिंक कार्ड है, खासतौर से जो महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं, उनके लिए हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि DTC की बसों में फ्री सफ़र के साथ साथ पिंक स्मार्ट कार्ड डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल हो सकेगा, और साथ ही कार्ड धारक महिलाएं इसे मॉल और दुकानों से ख़रीदारी भी कर सकेंगी। इसके लिए DTC की ओर से अधिकृत किए गए बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा। तो छोटा सा काम है भाई, ये तो आप कर ही सकते हैं। और DTC के मुताबिक डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल होने वाला पिंक स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए अधिकृत बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पर आप बिल्कुल आवेदन ज़रूर करें। अब बात ये आती है कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो बता दें आपको कि फुल KYC पिंक स्मार्ट कार्ड से सभी बसों में निःशुल्क टिकट मिलेगा। अगर मेट्रो, नमो भारत और इसके अलावा ट्रेनों में इस कार्ड से सफ़र करना है या शॉपिंग करनी है तो इसे आपको रिचार्ज भी कराना होगा। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पिंक स्मार्ट कार्ड अब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, और साथ ही साथ ये भी हम कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं उन्हें ये बात सुनकर बहुत ही खुशी हुई होगी। तो खुशी हुई है, तो क्यों ना हम इस वक्त एक और गीत सुन लें, कुछ और खुशी हासिल।

0: पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

बिल्कुल, ये है आकाशवाणी का रेनबो चैनल और बात हो रही है आपके साथ सिटी लाइट्स में ढेर सारी। जी हाँ, मौसम की बात हुई और पिंक कार्ड की बात हमने आपके साथ कर ली। अब जब बात आ ही गई है दिल्ली की, तो भाई ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली की में अगर बात मेट्रो की ना हो तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। तो भाई दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि रोज लाखों लोगों की जिंदगी का एक हिस्सा है। हर दिन लाखों यात्री इसमें सफर करते हैं और कई लोगों की तो खास बात यह है कि इसमें दोस्तियां हो जाती हैं, मुलाकातें हो जाती हैं और यादें भी इसी सफर से जुड़ जाती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि मेट्रो सिर्फ हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचाती, बल्कि बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात भी करा देती है, है ना। और अगर हम दिल्ली के स्वाद की बात करें तो दिल्ली की खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ ही किलोमीटर पर खाने का स्वाद भी बदल जाता है। चांदनी चौक की पराठे वाली गली से लेकर लाजपत नगर की चाट, है ना कमाल की बात। और भी बहुत कुछ है दिल्ली में, अगर आप चाहें तो भाई दिल्ली के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। दिल्ली के बारे में आप चाहें तो कुछ और जानते हैं अगर आप, तो आप हमें भी बता सकते हैं। और भाई दिल्ली की अगर शामों का जिक्र किया जाए तो इसकी जो शामें हैं, दिल्ली शहर की जो शामें हैं, इसका अपना एक अलग ही रंग है। बारिश के बाद, जैसे कि अब की अगर हम बात करें, तो भाई बारिश के बाद इंडिया गेट की ठंडी हवा हो या फिर क्रॉन प्लेस की जगमगाती रोशनी, शहर हर शाम हमें एक नई कहानी सुनाता है। तो चलिए इन्हीं कहानियों के साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत, और उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम है सिटी लाइट्स।

सिटी लाइट्स आप सुन रहे हैं और सिटी लाइट्स में हम बात करते हैं कला प्रेमियों की भी। जी हाँ, यानी कि कला को हम करीब से कहाँ कहाँ देख सकते हैं। भाई, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक बहुत ही चर्चित जगह है जिसका चर्चा भी अक्सर होता है, बीकानेर हाउस। जी हाँ, बीकानेर हाउस एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ विरासत देखने को मिलती है, परंपरा देखने को मिलती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप कला को बहुत करीब से देख सकते हैं, क्योंकि कला प्रदर्शनियाँ वहाँ लगाई जाती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर जो कला प्रेमी हैं उनको वहाँ जाकर काफ़ी अच्छा एहसास होता है। और बीकानेर हाउस में आप यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। अगर मैं आजकल की बात करूं तो मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स, आपको बता दें कि ये जो प्रदर्शनी है 23 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 29 जुलाई तक ये जारी रहेगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप दिल्ली के बीकानेर हाउस जा सकते हैं। और आर्टिस्ट हैं शाना सूद और यूलांडो पेरी मोजानू, यानी कि ये अमेरिका के हैं। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं रूट्स से जुड़े हुए हैं, भारत के रूट्स से जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से ये अपनी बात कहना जानते हैं रंगों के ज़रिए। तो अगर आप इस आर्ट को देखना चाहते हैं और रंगों से बातें करना चाहते हैं, रंगों के बारे में जानना चाहते हैं, कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये प्रदर्शनी ज़रूर देखनी चाहिए, मिरर्स डिस्टेंस बिटवीन वर्ल्ड्स। जी हाँ।

29 जुलाई तक ये प्रदर्शनी लगाई गई है दिल्ली के बीकानेर हाउस में। तो आप ये बीकानेर हाउस जाकर ज़रूर प्रदर्शनी देखिएगा, क्योंकि ये प्रदर्शनी सिर्फ और सिर्फ कला प्रेमियों के लिए ही है। तो फिर ऐसा करते हैं, आप इस प्रदर्शनी के बारे में जानिए और बीकानेर हाउस ज़रूर जाइए। फिलहाल मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनवाती हूँ, क्योंकि यह है सिटी लाइट्स, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर।

और साथ ही दिल्ली वालों के लिए एक और बहुत ही अच्छी खबर जो मुझे आप तक जरूर जरूर पहुंचानी चाहिए। जी हाँ, मयूर विहार से एम्स तक सिग्नल मुक्त होगा आपका सफर और आपका वक्त भी बचेगा। आपको बता दें कि बारापुला फेज 3 अगले महीने शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। जी हाँ, पूर्वी से दक्षिण दिल्ली तक जाना बेहद आसान हो जाएगा। बारापुला के इस हिस्से को खोलने से पूर्वी दिल्ली से दक्षिणी दिल्ली तक जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, सिग्नल फ्री हो जाएगा। सराय काले खां की बात करें, आश्रम, लाजपत नगर, साउथ एक्स और जितने भी उस साइड जितने भी स्थान पड़ते हैं, जगह पड़ती हैं, वहां पर वाहनों का दबाव कम होगा और जाम से भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये हुई ना एक अच्छी खबर। तो भाई, अच्छी खबरों के लिए तो हम हैं ही, और साथ ही साथ हम सबको चाहिए कि जितना हो सके अपनी ओर से सबकी मदद भी करें, क्योंकि मदद करना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है। आपको बता दें कि नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती एक 6 साल के बच्चे को अति शीघ्र ब्लड की आवश्यकता है। बच्चे को ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है और इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। इच्छुक रक्त दानकर्ता जो किसी भी ब्लड ग्रुप के हों और रक्तदान करने में सक्षम हो, कृपया मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कृपा करें। और आपको बता दें कि मोबाइल नंबर है 9635442662। एक बार फिर से ये नंबर आप सुन लीजिए। अगर आप रक्तदान करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9635442662। एक बार फिर मैं आपको नंबर बता देती हूँ, 9635442662। आपका रक्तदान, हमेशा याद रखिए, किसी का जीवन बचा सकता है और इससे बड़ा पुण्य कोई हो ही नहीं सकता। तो चलिए, बातें आपके साथ और भी करना चाहती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल ऐसा करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए सिटी लाइट्स।

जी हाँ, अक्सर लोग याद रह जाते हैं, अक्सर हमें लोग रास्ते में मिल जाते हैं, मेट्रो में मिल जाते हैं और इंडिया गेट पर भी मिल जाते हैं, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है जनाब। और ऐसे मौसम में क्या कहने इस दिल्ली के। तो वही भागती दौड़ती दिल्ली के बीच अगर हम बात करें लोधी गार्डन की, संजीवन और नेहरू पार्क जैसे हरे भरे ठिकाने इस शहर को, यानी दिल्ली शहर को सुकून की सांसें भी देते हैं। जी हाँ, भागती दौड़ती दिल्ली ज़रूर है, लेकिन कुछ पल सुकून के भी आप यहाँ गुजार सकते हैं। और साथ ही साथ किताबों के शौकीनों की भी ये एक पसंदीदा जगह है। जी हाँ, दरियागंज का संडे बुक मार्केट आज भी किताब प्रेमियों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो भाई, ये खूबसूरत शामी दिल्ली के नाम, ये खूबसूरत दिन दिल्ली के नाम, सिटी लाइट्स के नाम। और सिटी लाइट्स में आज हमने दिल्ली की ढेर सारी बातें आपको बता दी और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा दिल्ली के बारे में जानकर। और साथ ही साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मैक्स, जिसे लेकर आ रही है नीरजा। जी हाँ, आपकी साथी, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट। फिलहाल मैं आपसे यही अनुमति चाहती हूँ, बहुत जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, जो हम अक्सर कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आप क्या जो मोहब्बत का चिराग है उसे ऐसे ही जलाए रखिएगा, क्योंकि मिलते मिलाते रहिएगा दोस्त, क्योंकि मिलने मिलाने से ही बहुत कुछ अच्छा होता है, बेहतर होता है। फिलहाल मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।

नमस्कार। शाम के 6 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा

पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री केशव चंद्र ने आज खान मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलेशचुक को तलब किया। अमेरिका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दक्षिण पश्चिम हिस्से में अनियंत्रित जंगल की आग से निपटने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आग के कारण फ्रांस में 2,50,000 से अधिक लोग घर छोड़ने पर मजबूर। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचू में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए FM रेनबो पर। यूं ही।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं नीरजा के साथ और प्रोग्राम है मैसेज मसाला मिक्स, यानी दिन भर का वो शो जिसे श्रोता अपने मैसेजेस के माध्यम से खास बनाते हैं और हर बार हम इसे किसी न किसी विषय के साथ जोड़ देते हैं ताकि ये कार्यक्रम जो है सच में मसाले के साथ तैयार हो जाए। और जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, दोस्तों जुड़े रहना, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनके लिए ज़रूर बता दूँ कि हमारा नंबर है 9868107070। ये वो नंबर है जिस पर आप जब संदेश भेजेंगे ना तो सीधे वो हम तक ही पहुंचेंगे। और आज है मंडे, मन का डे, यानी किसी के लिए एक नई शुरुआत तो किसी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान। लेकिन ज़रा सोचिए ना, अब तो शाम हो गई है लेकिन दिन तो वही है, फर्क सिर्फ मन का ही तो है। अगर मन मुस्कुरा दे तो मंडे भी फन डे बन सकता है। अब तो बारिश ने भी इशारा कर दिया है, आपका क्या कहना है बताइए हमें 9868107070 पर। आपकी दोस्त नीरजा आप ही का इंतजार कर रही है, आप ही का इंतजार कर रही है।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा है आपके साथ, और बारिश की फुहार लेकर मैं भी उसका लुत्फ़ उठाते हुए आई हूँ, और ज़रूर आप भी इसका लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और बहुत दूर तक ये मौसम बना हुआ है और बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, लेकिन दोस्तों एक बार फिर से मैं विषय आपके साथ साझा कर देती हूँ ताकि जब मैसेजेस आएँ तो इसी विषय पर हम आगे बढ़ें। और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि जो भी श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जुड़े रहना है दोस्त, क्योंकि हमारी संस्कृति जुड़े रहना सिखाती है, बिखरना और अलग होना नहीं सिखाती। और जो श्रोता हमें मैसेज करने वाले हैं, हमारा नंबर है 9868107070। बिल्कुल यही वो नंबर है जहाँ जब आप मैसेज भेजेंगे ना तो सीधे आपकी नीरजा पर ये मैसेज आ जाएगा, और बिल्कुल जितने मैसेजेस आएंगे सभी पढ़े जाएंगे। और आज हम बात कर रहे थे कि हम कैलेंडर का दिन तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन का दिन ज़रूर बदल सकते हैं। आज का सवाल यही है, आपका मन आज कौन सा दिन मना रहा है, यही बताना है। और बड़ी दूर से पंकज अमरावती महाराष्ट्र में बैठे हैं, और देखिए कितना प्यारा मैसेज भेजा है, लिखते हैं कि मंडे यानी कि सोमवार का नया दिन, नए सप्ताह की शुरुआत का दिन, और अपने काम और सपने पूरे करने का नया मौका मौका मनाने का दिन। मंडे का दिन अच्छा गया तो पूरे सप्ताह उत्साह से भरा ही रहेगा, बिल्कुल। और अगर हर दिन हम ऐसा ही सोचें तो मुझे लगता है कि जीवन का आनंद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खास होता ही रहता है। डियर नीरजा जी, मेरे लिए तो डेली मंडे ही होता है। सदा खुश रहो, सदा खुश ही रहती हूँ, और अपने अपने मन की ही करती हूँ, पॉजिटिव सोच है, और कभी किसी बात पे परेशान नहीं होती। और नीरजा, मन का करना अच्छा होता है, किसी दूसरे की बात पसंद आए या फिर ना आए, जो मन चाहे वो ही करना चाहिए, ऐसा मिसेस धर्म भाटिया हमें समझा रही हैं। बिल्कुल हम समझ रहे हैं, और आगे बढ़ती हूँ अगले मैसेज के साथ। हमारे पास अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से मैसेज आया है, बेटी नीरजा दिन तो हर दिन एक नया होता है, मन नहीं एक जैसा कभी होता है। मधुमेह रोगी तो को चीनी लेना मना है, पर मन खाने को उकसाने को मानता है, मानता ही नहीं है। प्रस्तुति और ये जो इनको आज का टॉपिक है ये बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत अच्छा लगा कि आप इस विषय से इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अगला मैसेज हमारे पास आया है दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, अरे नाम बहुत अच्छा है आपके गांव का, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता है कोई भी दुल्हन लेके आएगा ना तो मैं उसे यही बता दूंगी, है ना, अच्छा लगता है सुन के हमारा देश कितना खूबसूरत है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, अब सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं यहीं से दुल्हापुर से। और कहते हैं कि हमारा पूरा प्रोग्राम ये जो चल रहा है पूरा परिवार सुन रहा है, और मंडे की खुशनुमा बात यही है, सच कह रहे हैं आप, अगर हम सब साथ रहे ना तो हर दिन सावन है दोस्त।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और मैं हूं नीरजा चतुर्वेदी आपके साथ, आपके संदेशों के साथ। और प्रेरणा का मैसेज आया है, कहती हैं, गुड इवनिंग नीरजा, मेरा मन मोस्ट मार्वलस ऑन मंडे। और मन तो क्या कर रहा है, अरे मन तो भाई बिल्कुल सबसे ऊपर जाके बैठ गया है। बहुत ही अच्छी बात है कि इतना अच्छा दिन आपका रहा कि आपने बहुत ही खूबसूरत से शब्द के साथ इसे जोड़ दिया। गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही ने तो एक छोटी सी रचना ही लिख कर दे दी है, बिल्कुल ज़रूर पढ़ी जाएगी। लिखा है, मन अपना बदलने से बदलता भी कहाँ है, सूरज तेरी यादों का ढलता भी कहाँ है। ओ हो, बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं आप। एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, शायद समझ आ जाए। मन अपना बदलने से बदलता भी कहाँ है, सूरज तेरी यादों का ढलता भी कहाँ है। मन एक बार जो भी फैसला कर लेता है, फिर उससे पीछे हटना उसके बारे में नहीं होता, क्योंकि ये फैसला जो दिल करता है। और इस वक्त हम आज रेनी डे मना रहे हैं, इसलिए गर्मा गर्म चाय के साथ पकौड़े भी हैं। आप भी आज जाइए, बिल्कुल मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ चाय और पकौड़ों का। और ज़रूर इच्छा यही

है कि बस बाहर निकलूं और ये दोनों चीजें मेरे लिए भी तैयार हो। चलिए देखते हैं कि मेरे हिस्से में क्या आता है। फिलहाल मैसेज आया है कुमार गौरव इंदुरकर नेशनल पार्क तालुका चिमूर डिस्ट्रिक्ट चंद्रापुर से। लिखा है कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। गाने सुन रहा हूँ और मंडे मना रहा हूँ। क्या बात है जी, बिल्कुल मंडे मनाइए और आपको अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी जो हमारी अचीवमेंट है ना वो यही है कि आपको अच्छा लग रहा है। मनीष शर्मा, संदीप कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहा है शुभ संध्या। आपने बिल्कुल सही कहा कि मन की स्थिति है वही हमें सब महसूस होता है हमारे आसपास। और बहुत सारी कहावतें हैं इस पर, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और जो मन को हमेशा खुश रखिए ना फिर, क्योंकि आपकी मन की स्थिति आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही और इसे हम सबको याद रखना चाहिए। और यह भी कहते हैं कि आप दूसरों को जो भी दोगे वही आपके पास फिर से आ जाएगा, इसलिए खुशियां बांटते रहो और खुशियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद मनीष जी। इसलिए मनीष और संदीप जी की इतना खूबसूरत सा मैसेज भेजा है और मुझे लगता है कि चाय पकौड़ों के साथ एक अच्छा सा ट्रैक हो जाए तो कितना मजा आएगा, है ना। हमारे साथ जुड़े हैं अकोला महाराष्ट्र से प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से, और लिखा है कि दीदी चाय और पकोड़े हमको भिजवा दीजिए ना। बिल्कुल भिजवाती हूँ। आज चाय मिल रही है।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
4: आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ नीरजा चतुर्वेदी आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहाँ बात हो रही है आज के दिन से जुड़ी हुई। और मैं कह रही थी कि कभी कभी पूरा सप्ताह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोमवार को किस सोच के साथ शुरू किया, शिकायतों के साथ या फिर संभावनाओं के साथ मेरी तरह। और बड़ा ही प्यारा मैसेज आया है राजेश भल्ला मेरठ से, हमें लिखते हैं, कहते हैं, प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते हैं और परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और कहते हैं, भाई मुझे तो ऐसा लगता है आपको कभी गुस्सा नहीं आता। ऐसी बात नहीं है, सच में पहले नहीं आता था, अब थोड़ा थोड़ा आने लगा है लेकिन लगता है कि अगर आता है तो ये कमज़ोरी है, आना नहीं चाहिए, है ना, मुझे ये लगता है। विपुल गौर शक्तिनगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि पहले बाबा के भजन से और फिर आपने तो मौसम ही बदल दिया, ऊपर से घर जाते वक्त ये बारिश की बूंदें, ओहो सारी थकान ही उतर गई। मन से मंडे और मन से ही हर दिन बनते हैं, मन हर दिन के हिसाब से मन जाता है। क्या बात है विपुल, बहुत ही पोएटिक अंदाज में आपने बात कह दी। मैं नवलू वर्क फ्रॉम गाँव मलपण जिला उत्तर गोवा से, और कहते हैं मेरा हर दिन मंडे है क्योंकि हर दिन मैं मेरा मन की तो सुनता हूँ और रेडियो सुनता रहता हूँ। क्या बात है दोस्त, आप तो बहुत ही बढ़िया और गजब हैं कि आप मन की सुन लेते हैं और मन की मान लेते हैं। आदाब बहन। और ऐसा कस्मा बलराम से इरशाद अहमद शाह जहां बेगम हमारे साथ जुड़े हैं और गाने की बात कर रहे हैं और कहते हैं, आज मंडे सारे गम भुला दो और पूरे हफ्ते के लिए संडे हो या मंडे, रोज़ खुश रहो। बिल्कुल रोज़ खुश ही रहेंगे, सबसे बढ़िया बात आपने यही कही है। और आगे बढ़ती हूँ, अगला मैसेज लेती हूँ। हमारे मैसेजेस भी पढ़ लो ना दीदी, गाने तो हम सुन रहे हैं और पसंद भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। सोयाबीन फसल की जो आपने बताया है कि बहुत अच्छी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे ये कह रही थी कि हाँ, इन्होंने ये लिखा है, ऋचा बोल रही, ये ऋचा ने मैसेज लिखा है और कहते हैं, हमारे अकोला में बारिश नहीं है आज। और चलो ऋचा, तो मैं गानों की बारिश से कोशिश करूंगी कि कुछ काम बन जाए और शायद जब आपका मन अच्छा हो जाए तो बारिश भी हो जाए। रूप और रुपए

का कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि गरीबी और अमीरी दरवाज़ा पूछ कर नहीं आती। मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंदशहर से हमें ये लिख रहे हैं। बात तो बढ़िया है, लेकिन मंडे के कॉन्टेक्स्ट में आपने हम सबको आगाह किया शायद नीजा जी। अरे बाप रे मैम, मन से भेज रहा हूँ एंजॉय द रेनी इवनिंग। रवि जोशी मेरठ से, इन्होंने पकौड़ों के साथ मुझे ये संदेश भेजा है। जी बिल्कुल, बस पकौड़े नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि उसकी सिर्फ फ़ोटो है, इसलिए उम्मीद करती हूँ बाहर जाके मुझे चाय और पकौड़े पिलाए खिलाए पिलाए जाएंगे। सनी काम्बोश विलेज सोलार पटियाला से कहते हैं, पटियाला में एक बारिश का टुकड़ा भी नहीं हुआ है, और बारिश तो दूर की बात है, यहाँ तो तरस गए हम बारिश के लिए, इधर भी तो भेज दीजिए ना। हाय, काश ऐसा होता ना, हम कितना अच्छा करते ना कि यहाँ से वहाँ बारिश ही भेज देते, जैसे हम संदेश भेजते रहते हैं। काश ऐसा हो जाता, बस मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने ना हम सब कभी ना कभी देखते रहते हैं कि काश ऐसा अपने आप हो जाए, है ना। हम सबको भी तो करना है ना, ग्लोबल वार्मिंग का ये दौर हम ही लेकर आए हैं, दूर भी हमें ही करना है। मोहम्मद सईद अब्बासी बुलंदशहर से कहते हैं, अगर बात ज़रूरी है तो इंसान को भूल जाओ, और अगर इंसान ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ। अरे वाह दोस्त, बिल्कुल, मैं तो कहूँगी बात को भूल जाओ, इंसान बहुत ज़रूरी है। हैदराबाद से नेहा हमारे साथ जुड़ी हैं और कह रही हैं, प्रोग्राम सुन रही हैं और अपने घर की सफाई भी कर रही हूँ, इसलिए काम करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बस ऐसा ही मेरा मंडे मन रहा है। टू गुड नेहा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
4: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
5: ठीक है,
4: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
3: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
3: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
3: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
3: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
3: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर आरजे नीरजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जहां बातें आप ही की हो रही हैं और जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं भाई जल्दी से मैसेज कर दीजिए 9868107070 पर। और बात कर रही हूं कि अगर आप ऑफिस से घर जा रहे हो या हमारी तरह ऑफिस आ रहे हो या फिर आप अपने जिम जा रहे हो या घर में खाना बना रहे हो तो मन हल्का ज़रूर कर लीजिए।

क्योंकि घर हो या सफर, अगर मन हल्का है ना तो हर काम आसानी से हो जाता है। इसलिए आज काम से पहले अपने मन को गुड इवनिंग कह दीजिएगा, और इवनिंग अगर गुड हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली हमें कहते हैं कि मंडे, मन में प्यार हो, मन में मोहब्बत हो, मन निडर हो, मेहनत बरकरार हो, तभी मंडे का दिन साकार हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जर्मनी से हमारे साथ कौन जुड़ा है, ये सनी लिखा है, लिखा है, हेलो मैम, मैं मंडे को मधु और मैडम से मिलता हूँ, मधु और मैडम से मिलता हूँ, या मधु मैडम से मिलता हूँ। चलिए आप जो भी कहना चाहते हैं सनी, फिर से लिखेगा तो मैं ज़रूर और अच्छे से पढ़ पाऊँगी। विनय सिन्हा बांके बिहार से, बहुत उन्हें अच्छा लग रहा है और मंडे की शाम बहुत ख़ास है उनके लिए, ये बहुत अच्छा लगा। और आगे मैसेज आया है, बहुत सारे लोग धन्यवाद कह रहे हैं, भाई आप ही का प्रोग्राम है, आप ही ने खूबसूरत इसे बनाया है। बारिश वाली गुड इवनिंग में हम तो 6 बजने का इंतज़ार करते हैं और FM रेनबो इंडिया के इस शो का, ओहो सॉन्ग्स बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरे मन की बात हो रही है। नियाज अहमद, आतिफ बाबू, आफिया, आशिफा, रामपुरा, त्रिनगर, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नवलू वकर हमें फिर से कह रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, जी हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। नियमित श्रोता हर्षवर्धन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और लिखा है, टॉपिक मन पर केंद्रित है और नीजा जी मेरा मन कहता है FM रेनबो न्यू दिल्ली के मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम सुनता रहूं और मस्त रहूं, और ये कार्यक्रम आपके मन को सदैव प्रसन्न रखेगा, कृपया इस कार्यक्रम के साथ बने रहिए, और ये मेरा आइडिया है। बिल्कुल आइडिया बहुत अच्छा है, बिल्कुल 7 बजे तक मैं बनी रहूँगी और उसके बाद अगले कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। उदित नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, ऑफिस से ना मैं घर जा रहा हूँ और मंडे इवनिंग ट्रैफिक बहुत हो गया है, लेकिन ये गाने सुनते सुनते ना बहुत अच्छा लग रहा है। और उदित सच में आपने हमारे मन में भी एक नई सी उमंग जगा दी है और लगता है कि आपका सफ़र बहुत खूबसूरत हो। कैलाश शर्मा हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं और कहते हैं, भोर की शांत सुंदरता शांत मन के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा मरहम है, प्रत्येक सूर्योदय के एक नई शुरुआत है जो आपके जीवन में नया अध्याय लिखती है। और सूर्योदय यानी आगे लिखते हैं, सूर्यास्त के समय रात के सभी संदेहों का त्याग करें और एक नए मूल्यवान दिन का स्वागत करें। हर सूर्योदय दुनिया के एक नए निर्माण की तरह है जो आपको आपके सपनों का स्वागत करने का मौका देता है। ओके कैलाश जी, आपने सब कुछ सूर्योदय के बारे में ही लिखा है, लेकिन क्या करें, दिल ही तो है, मुझे लगा संध्या समय हो रहा है, कुछ शाम की बात भी ज़रूर होगी। और अंशी, आपका मैसेज अभी लेती हूँ, दिल ही तो है, मन नहीं मान रहा, लगता है कि आपको ये ट्रैक सुनवा दूँ।

और दिल ही तो है, इतने मैसेजेस आ गए हैं, लगता है पढ़ देने चाहिए। अंशी हमें लिखती हैं कि मंडे का दिन तो एक नई शुरुआत लेकर आता है, लेकिन अपने मन की भी सुन लेनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसा कर जाते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को ही मिल जाता है और न्यू एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने के लिए सक्सेसफुल हो भी जाती है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो मन करे ना वो करके देख ही लेना चाहिए, और समझ कर पेशेंस रखते हुए सब अच्छा और अच्छे से ही हो जाता है। बिल्कुल अंशी, ज़रूर। और आपने मैसेज किया है, देखो दोस्त, ज़रूर पढ़ा जाएगा। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से जुड़ी हैं और कहती हैं, आपका तन मन स्वस्थ और खुश है तो हर पल हर दिन आपका आपके लिए अच्छा ही होता है। आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। कोटि कोटि धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरह से अपने आशीर्वाद के साथ अपना संदेश हमें भेजा। मेरा नाम काजल है, उत्तराखंड से हूँ। अगर मन अच्छा है तो हर दिन फिर फंडे ही है। बिल्कुल, मंडे से फंडे पर हम पहुंच गए हैं। और मोहम्मद सरफराज ने एक बड़ी अच्छी सी रचना लिखी है, कहते हैं, यादों की बारिश में भीगा है आज फिर से ये शहर, तेरे जाने के बाद कितना बदल गया ये शहर, भीगी हुई हवाओं में तेरी खुशबू घुली हुई, हर सांस के साथ तुझे पुकारता ये शहर, बादल भी तेरे नाम की चिट्ठी लिए हुए, रिमझिम की हर बूंद में तुझे ढूंढता ये शहर, हर एक गली हर एक मोड़ हर राह खामोश है, तेरे बिना उदास सा नजर आता ये शहर, शामों की चाय बरगद की छांव वो बातें अनकहीं बीते हुए लम्हों को फिर जीता ये शहर, चांदनी भी पूछती है तेरे कदमों का निशान, रात भर जाकर तेरा इंतजार करता ये शहर, लौट आओ तो फिर से बहारें उतर आए यहाँ सूखे हुए गुलशन सा, यूं लगता है ये शहर सरफराज अशकों से लिखता रहा मोहम्मद मोहब्बत की दास्तां, अपनी ही धड़कनों में तुझे सुनता ये शहर। बहुत ही खूबसूरत रचना लिखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा है आपने, गजब का मंडे बना दिया। गुड्डू धाकर मध्य प्रदेश उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि अपनी दुकान पर आया हूँ, जलेबी बना रहा हूँ, साथ में रेनबो तो परमानेंटली सुनता ही हूँ, और दोस्तों का नाम रेडियो पर आता है तो सुनकर बहुत खुश हो जाता हूँ। कितने अच्छे हैं ना गुड्डू जी आप, सच में इसे कहते हैं असली धाकड़ होना, सच में सबको लेके चलने की हिम्मत सभी के पास कहाँ है। और मोहम्मद फुरकान हमें कहते हैं कि गज़ब का टॉपिक लिया है, लाजवाब है, और एक लाजवाब तो आपका जवाब होना चाहिए था, आप मैसेज भेजते तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। और खरगोन से प्रवीण कहते हैं, आज सुबह से बहुत बिजी हूँ, कुछ खाया भी नहीं है, अभी बहन को पढ़ा रहा हूँ और रेडियो सुन रहा हूँ। चलिए अब सब काम अच्छा अच्छा हो जाएगा। और फिलहाल मैं बता दूँ कि 8 बजे से पहले तो 7 बजेंगे बिल्कुल, और 7 बजे कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक का, मुक्ता लाल चंदानी हमारे साथ रहेंगी। 8 बजे होगा कार्यक्रम म्यूजिक मस्ती, जिसमें एक बार फिर से मैं आ जाऊंगी आपके बीच, और 9 बजे से ताहिर हसन हमारे बीच

रहेंगे और कार्यक्रम होगा, आपकी याद आती रही। और फिलहाल मैं लेना चाह रही हूँ आपसे इजाज़त इसी बात के साथ कि हम फिर जल्दी से मिलेंगे। और भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, आज का दिन तो मेरे लिए फन डे था, रेनी डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ और दिल को हैप्पी रखना है, सो हैप्पी हो जाएगा पॉजिटिव रहने के साथ। नमस्कार।

0: शिवानी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, अ वार्म वेलकम टू कंट्री कार्निवल, योर वन आवर म्यूजिकल पासपोर्ट टू द हार्ट ऑफ कंट्री म्यूजिक। एंड आई एम योर होस्ट मुक्ता लाल चंदानी, एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव योर कंपनी दिस इवनिंग ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। Well, over the next hour, we'll be enjoying some timeless country favorites, discover a few contemporary hits, share some interesting stories behind the music, and of course, celebrate the spirit of country. So settle in, because the carnival begins now.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: You're listening to Country Carnival with me, Mukta Laljanani, on the Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Well, country songs often remind us that life's greatest treasures aren't expensive. They are family, friendships, memories and simple moments. Here's a beautiful number that celebrates exactly that.

0: All right. Thank you very much.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
6: Welcome back. Well, the answer to our trivia is Dolly Parton, who is fondly known as the undisputed queen of country music. Besides being a singer, songwriter, she is also an actress, philanthropist, and author whose influence stretches far beyond music. So here we go with another modern favorite country song. And this is from the Dolly Parton right now for you.

8 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को प्रदान धनराशि के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद NCVET ने आज नई दिल्ली में कौशल विश्वविद्यालयों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें बेहतर सहयोग, गुणवत्ता आश्वासन और नीतिगत समन्वय के माध्यम से देश के व्यावसायिक शिक्षा तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। सिक्किम में नाथूला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर से शुरू हो जाएगा। इसे कोविड-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन की हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और अंत में मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए FM रेनबो पर। यूं ही

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी पर अब पेश है म्यूजिक मस्ती आपके लिए। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि म्यूजिक मेरे पास है और मस्ती वो तो भर भर के आपके पास है। कहते हैं अगर दिल की बैटरी लो है ना तो बस प्ले दबाइए, क्योंकि म्यूजिक से बेहतर चार्जर अभी तक तो नहीं बनाए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ।

0: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना, 24 घंटे सुनिए।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर नीरजा चतुर्वेदी है आपके साथ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर। और कहते हैं जिंदगी जब स्लो मोशन में लगने लगे तो बस एक ऐसा उत्साह से भरा गाना लगा लीजिए जो म्यूजिक के साथ साथ आपको भी सातवें आसमान पर ले जाए। आइए फिर रुकें क्यों, चलते हैं साथ साथ। क्या किया आपने, कुछ किया क्या?

0: है बबल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती नीरजा चतुर्वेदी के साथ। और कहते हैं भाई, सुरों की दुनिया में टेंशन की एंट्री बिल्कुल नहीं होती, यहाँ तो सिर्फ है मस्ती, ऊर्जा और मुस्कान, जहाँ हर बार आपका स्वागत करेंगे हम किसी ना किसी ऐसे ट्रैक से तो जो आपके अंदर ऊर्जा भर देगा। अपने पार्टनर को साथ रखिएगा दोस्त।

आप खो जाएं उससे पहले मैं बता दूं कि 9 बजे आप सुनेंगे समाचार ताहिर हसन के साथ, और फिर प्रोग्राम होगा आपकी याद आती रही। 10 बजे 10:02 पर मुक्ता लाल चंदानी होंगे हमारे साथ वेस्टर्न म्यूजिक के साथ, और फिर एक बार ताहिर हसन रंगे महफिल लेकर हमारे बीच आ जाएंगे 11:02 पर। और फिलहाल सुरों की ये महफिल जिसमें बीट है एक के बाद एक, तो वो यही कहती है कि मुस्कुराइए झूमिए, क्योंकि आज म्यूजिक और मस्ती का मूड है, बाहर का मौसम भी ऐसा ही है दोस्त।

और दोस्तों नखरे नहीं है, बस यही कहना है कि कम सोचिए, ज्यादा गुनगुनाइए। और हाँ, म्यूजिक से खूबसूरत तो थेरेपी कोई नहीं है, इसलिए म्यूजिक मस्ती सुनते जाइए। और अब ये आज की पार्टी का, आज की म्यूजिक मस्ती का लास्ट ट्रैक है, और उसके बाद ताहिर होंगे हमारे साथ। मैं लेना चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

पेश है आकाशवाणी एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव है। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के बाद संसद के दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन की घोषणा की है, जिसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकानी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक प्रयोग के आरोपों से याचिकाओं पर कल सुनवाई करने की सहमति व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और परीक्षण परिषद NCVIT ने आज नई दिल्ली में कौशल विश्वविद्यालयों के साथ एक बैठक आयोजित की। इसमें बेहतर सहयोग, गुणवत्ता आश्वासन और नीतिगत समन्वय के माध्यम से देश की व्यावसायिक शिक्षा तंत्र को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की पहली तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार शुरू हो जाएगा। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोफ्री पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे

दबाव के कारण उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की जारी है। मौसम विभाग ने तेज बारिश के लिए उड़ीसा में रेड अलर्ट और उत्तर भारत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। और मैं हूँ आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका अपना पसंदीदा, जिसे हम कहते हैं आपकी याद आती रही।

जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात शायद यही है कि कुछ लम्हे कभी पुराने नहीं होते, वक्त आगे बढ़ता रहता है, लेकिन कुछ मुस्कुराहटें, कुछ लहजे और कुछ साथ दिल के किसी कोने में वैसे ही ठहरे रहते हैं। उन तक पहुंचने के लिए ना कोई तस्वीर चाहिए, ना कोई डायरी, कभी एक गीत ही काफ़ी होता है। मैं हूं आपके साथ ताहिर, और आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जो कि है दिल से दिल तक।

आकाशवाणी एफ एम रेनबो दिल से दिल तक, मैं है ताहिर आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। कुछ लोगों की एक आदत होती है, वो सामने ना भी हो तो उनकी बातें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक हिस्सा बन जाती हैं। कभी चाय पे, कभी सफ़र में, और कभी यूं ही मुस्कुराते हुए। शायद रिश्तों की असली पहचान ये है, असली में यही है।

0: बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही और गाने तो खैर अच्छे लग ही रहे होंगे, क्योंकि जो अच्छे गाने होते हैं वो दिल को बहुत करीब आ जाके बैठ जाते हैं। हर घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होता है, हर घर में एक कोना ऐसा ज़रूर होता है जहां बैठते ही दिल को अजीब सा सुकून मिलता है। ना वहाँ कोई शोर होता है, ना कोई वजह, बस अपनापन होता है, और अपनापन ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।

पुरानी घड़ी की टिक टिक कभी गौर से सुनी है? उसकी आवाज बदलती नहीं, बस सुनने वाले बदलते रहते हैं, बिल्कुल कुछ रिश्तों की तरह जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक ताहिर आपको के बीच में प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

बढ़िया आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के बीच में है और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना आपकी याद आती रही। कभी किसी पुरानी गली से गुजरना हो तो जल्दी मत कीजिए, हर मोड़ हर दीवार और हर दरख्त अपनी खामोश कहानी सुनाता है, बस सुनने वाला चाहिए। सुन रहे हैं ना, सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए।

जनाब, हर मुलाकात एक तस्वीर नहीं होती, कुछ मुलाकातें सिर्फ एहसास बनकर रहती हैं, ना उनका कोई सबूत होता है ना कोई निशान, मगर दिल उन्हें कभी गुम नहीं होने देता।

0: श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक ताहिर आप लोगों के बीच में हैं और ये वो वक्त है जब जाना होगा मुझे। एक गीत की खूबसूरती सिर्फ उसकी धुन में नहीं होती, कभी कभी वो हमें वहाँ ले जाती है जहाँ हम खुद से बहुत अरसे के बाद मिलते हैं और शायद वहीं उसकी असली जीत होती है। बहरहाल ये तो जीत मेरी है कि हाँ ये प्रोग्राम आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल मुझे जाना होगा, लेकिन इसी वादे के साथ 11 बजे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: Bella, she was born on 22nd August 1995 in London to Kosovo Albanian parents, and Dua Lipa grew up in a family that loved music. Interestingly, Dua means love in Albanian and she doesn't have a middle name. She became uploading cover songs online as a teenager, and those early performances eventually led to her record deal. Well, before becoming a singer, she also worked as a model. But just at 15 years of age, she returned to London to pursue her dream for making music professionally. Up next is another chart buster that ruled playlist.

0: शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: You're listening to Rainbow Showcase on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. One of the most interesting facts that Dua is that she constantly reinvented herself. After receiving criticism about her dancing early in her career, she worked tirelessly on choreography and stage performance. Today, she is admired not only for her vocals but also for her spectacular live shows. Her second album, Future Nostalgia, beautifully blended disco, funk and contemporary pop, earning widespread acclaim and several awards. Well, she won a Grammy Award for the Best Pop Vocal Album and became one of the defining pop releases of the decade.

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

Thank you.

विषय आकाशवाणी एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्यवाही का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्यवाही को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने के निर्देश दिए। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। भारत ने वाणिज्य पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण उड़ीसा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। ताहिर आप लोगों के बीच में फिर से आ गया है। 11 बजे तक के इंतजार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम है रंगे महफिल, और इसमें महफिल में क्या है, क्या है, क्या क्या खजाने आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सुनिए, पहला खजाना आपके सामने है।

की सबसे बड़ी खूबसूरती ये नहीं कि वो हमेशा मिल जाए, बल्कि ये है कि वो इंसान को बदल देती है। कभी उसे सब्र सिखा देती है उसे, कभी इंतज़ार और कभी ये एहसास भी करा देती है चाहत के अंजाम एक है, एक जैसा नहीं होता। फिर भी दिल हार मा नहीं मानता, है ना, नहीं मानता, हार कभी भी नहीं मानता। वो हर बार नए हौसले के साथ धड़कता है, शायद इसीलिए कि गजल का रिश्ता मोहब्बत से इतना पुराना है कि दोनों में उम्मीद, तकलीफ और वफा एक जैसी है।

शफक कहते हैं किरणों को रेस, और धनु रेनबो, महताब चंद्रमा, घटाएं तो आपको मालूम है। शफक धनुक महताब घटाएं तारे नगमे बिजली फूल।

मोहब्बत को अक्सर लोग सिर्फ एक एहसास समझते हैं, लेकिन अदब की दुनिया बताती है कि इश्क सिर्फ दिल का मामला नहीं है, नज़रिए का भी नाम है। जिस दिल में सच्चा शौक जागता है, उसके लिए हर मंजिल एक नई तलाश बन जाती है। शायद इसीलिए बड़े शायरों ने मोहब्बत को कभी आसान सफ़र नहीं कहा। मिर्ज़ा गालिब की शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर बार पढ़ने पर या सुनने पर उसका एक नया पहलू सामने आता है। उनके अल्फाज सिर्फ अपने दौर की बात नहीं करते, बल्कि हर उस इंसान की बात करते हैं जो उनके लिए कहानी बन जाता है, जिसने कभी चाहत, बेचैनी, इंतज़ार या अपनी तलाश का सफ़र तय किया हो। रंगे महफिल आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ताहिर, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूची

करण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। आगे बढ़ते हैं। आजमाइश सिर्फ मोहब्बत की नहीं, कभी अपने हौसले की भी होती है। वक्त कभी इतने सवाल पूछता है कि इंसान के पास जवाब कम पड़ जाते हैं, मगर जो लोग हर मुश्किल से के बाद भी अपनी फितरत नहीं बदलते, वो असल में मजबूत होते हैं। गजल भी हमें यही सिखाती है, दर्द को छुपाना नहीं, उसे अल्फाजों की रोशनी देना है।

आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक रंगे महफिल प्रोग्राम चल रहा है। सबसे गहरा दर्द अक्सर वो होता है जिसका वो शोर नहीं होता, ना आंसू दिखते हैं ना शिकायत सुनाई देती है, बस इंसान पहले से थोड़ा कम बोलने लगता है और थोड़ा ज्यादा सोचने लगता है। मगर वक्त की एक अच्छी बात होती है, वो जख्म भरना जानता है, बस जल्दी नहीं करता। इसलिए हर मुश्किल के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। इसी बात पे हमें यकीन रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बस ये वो टाइम होता है जो थोड़ा सा दिल को अजीब महसूस होता है, क्योंकि हमें कहना होता है कि हम जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि बहुत जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक तो ख्याल रखिए अपना, खास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई। नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्य विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्य बल के गठन की घोषणा की। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% की गिरावट आई। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है, आइए अब सुनते हैं जीरो आठ शो।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारत में मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: नमस्कार, शुभ रात्रि। आप जुड़े हैं हमारे रात्रिकालीन प्रसारणों में आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और प्रोग्राम जो इस वक्त आपके साथ तारुफ का इंतज़ार कर रहा है वो है सुहानी रात। और सुहानी रात के इस पल में, इस खूबसूरत पल कहना चाहिए, जब हल्की हल्की बदली है आसमानों पर, इस स्याह अंधेरी रात में चांद भी कहीं बादलों से झांकता हो मिलता हो, तो हम क्यों ना यादों के झरोखे से झांकें। थोड़ा सा वक्त मिलता है, यही 3-4-5 घंटे, जब हम अतीत की गहराइयों में जाने की फुर्सत निकाल पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, कुछ याद कर पाते हैं, और कुछ अलग दिन के लिए भी एक तैयारी का जो हमारा कहना चाहिए जो स्पेस है वो हम कहीं ना कहीं इसमें से इंतज़ाम कर पाते हैं। रात के पलों को सिर्फ सोना ही, खैर नींद अगर आ रही है तो सोना ही प्राथमिकता होनी चाहिए रात में, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन आप अगर कहीं यादों में खोए हैं और उस वक्त कहीं फिर आप इस आसमान और बादल और चांद वाले फेर में भी फंसे हैं, या इसको एक संजीदगी के साथ देख रहे हैं, तो फिर फौरन जुड़ जाइए हमारे साथ, ठान लीजिए हमारा हाथ, क्योंकि अब है सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम हैं जुड़े आपके साथ। तो आपका स्वागत तहे दिल, बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए और शुभकामनाएं पूरी रात के लिए। लेकिन अगर सफर में हमारे साथ चल पड़े हैं तो जुड़े रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। Good morning, Delhi NCR. Always wherever you are. 102.6 आपके लिए।
5: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का

मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
10: हम आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz पर आपसे हम होता मुखातिब, और फिलहाल अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहानी रात मेरे यानी रजत के साथ। अब वक्त हो चला है अब तक के मुख्य समाचारों का। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को

देने, और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोदिमिर जेलेंस्की ने आज रात नवनिर्वाचित ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से मुलाकात की। श्री बर्नहम के एक सप्ताह पहले पदभार संभालने के बाद यूक्रेन की यात्रा करने वाले वे पहले विदेशी नेता हैं। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी आज ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आप जुड़े हमारे साथ, कुछ ही देर में हाजिर होगा प्रोग्राम भुलाए ना बने आरती शर्मा के साथ। जुड़े रहें आकाशवाणी रेनबो 102.6 और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई निट मुद्दे पर। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुँचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारतोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 3:13 आकाशवाणी रेनबो ट्यून किया हुआ आपने 102.6 102.6 पर। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हम हैं आपके साथ उपलब्ध। और बस चलता जा रहा है ये सफ़र, और एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है अभी 3 बजे से। और ये सफ़र कहलाता है क्या, आप समझते भी होंगे, वैसे मैं बता भी दूँ, मिडनाइट मेलोडीज़ आपका चहेता प्रोग्राम एक बार फिर से हाजिर, जिसमें कि प्रोग्राम शुरू होते होते इतने मैसेजेस हमें मिल चुके हैं व्हाट्सएप पे, यानी इस वक्त भी लोग हमसे जुड़े हैं, सुन रहे हैं। तो आपकी जज्बे और जज्बात दोनों को सलाम, और इसी तरह आपकी मोहब्बत, आपकी ये जो फराख दिली है हमारे लिए, और ये मोहब्बत और ये जो स्नेह हमारे लिए है, ये हमेशा बना रहे, ये ज़रूर हम चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपसे निवेदन करेंगे कि इस मोहब्बत का 1 इंच भी कम ना होने पाए। आप जुड़े हमारे साथ मिडनाइट मेलोडीज़ में, मेरे यानी रजत के साथ, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। खूबसूरत गानों का एक और कारवां हमारे साथ, आपके साथ और मेरे साथ बस शुरू हो चुका है।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप, और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली,
4: हाय
3: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक खूबसूरत गाने के साथ कर रहे हैं हम समाप्ति इस कार्यक्रम की, जिसे आपने सुना मिडनाइट मेलोडीज के नाम से। मैं रजत, आप जुड़े हैं इस समय हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। सुबह के ठीक 4 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए एक कार्यबल के गठन की घोषणा की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में आयोजित महिला शॉटपुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। इस जीत के साथ 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर इस घंटे के मुख्य समाचार। थोड़ी देर में हाजिर होते हैं आकाशवाणी रेनबो पर ही लेकर अगला कार्यक्रम सारेगामा, और आपके साथ होंगी आरती।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था।

आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी, जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी। कभी हमने नहीं सोचा था।

0: है बम्बई। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए, देखो वो गोरी गोरी राए, हमको इशारों से बुलाए।

पे जिंदगानी, नाचे हर मोड़ पे जवानी।

मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश। पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव रखा गया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई। नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और पूरे उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच, अंकुश और साक्षी चौधरी ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए और भारतोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इस टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या अब 6 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: सुबह के 5:11 और 12 सेकंड। आप जुड़े हैं हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर और इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी। कार्यक्रम शुरू हो चुका है आराधना, भक्ति संगीत पर आधारित हमारी इस नियमित और दैनिक प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत। मैं आपका मित्र रजत, आप सभी आमंत्रित हैं भक्ति से परिपूर्ण इस महफिल में, इस सभा में हमारे साथ, हमारे इसी चैनल पर। नमस्कार। वंदे
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 से 5 तक।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवल्यूशन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
3: अवतार श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

0: भारतीय मनीषी श्री हनुमान जी को 11वें रुद्र का अवतार मानते हैं। रुद्रावतारः संजज्ञे वायुपुत्रः प्रतापवान। अधर्म का विनाश करके धर्म को पुनः स्थापित करना ही इस धरती पर भगवान के अवतार लेने का हेतु होता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जब जब होए धर्म कै हानि, बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग के अंत में जब रावण जैसे असुरों का संहार करने तथा मानव समाज को सेवा धर्म का आदर्श सिखाने के लिए विष्णु भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए रुद्र देह तज नेह बस बानर भे हनुमान। भगवान के रूप से भी अधिक महिमा उनके नाम की है। नाम के आधार पर ही स्वरूप का ज्ञान होता है। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, रूप विशेख नाम बिन जाने, करतल गत न परहि पहचाने। जो व्यक्ति श्री हनुमान जी के 108 नामों से उनकी पूजा करता है या प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री हनुमान जी के 108 नामों का पाठ करता है, उसके ऊपर श्री हनुमान जी की कृपा बनी रहती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं।
1: अथ श्री हनुमत अष्टोत्तर